एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 की भाद्रपद मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 सितंबर सन 2026। श्रोताओं,

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण के मापने योग्य सुधार हो सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकियों को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कल केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में चिन्हित 100 जिलों में योजना में तेजी लाने, योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने और किसानों के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से अगले महीने 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना, चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों में स्थिरता लाना है। नई समय सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यापारी चीनी के भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक नहीं रख सकता और देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया जा रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हित के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक

0: मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत बेल्जियम के बीच आपसी साझेदारी को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन। समय हमारे साथ हर पल रहता है। हम समय को भूल जाते हैं क्योंकि हम सांसारिक काम धंधों में उलझे रहते हैं, लेकिन समय हमें नहीं भूलता। वो बहुत बलवान है। निश्चित समय पर समय हमारा साथ छोड़ देता है। यही मृत्यु है, यही अंत है, यही विनाश भी है। समय का प्रारंभ होता है हमारे जीवन से और अंत होता है हमारे मृत्यु के रूप में। बीच का समय हमें जीवन जीने के लिए मिला है, जिसका हम जैसे चाहें उपयोग कर सकते हैं। समय को सभी जीते हैं, इसका आनंद लेते हैं। कुछ लोग इसी समय का उपयोग करके विशेष उपलब्धियां हासिल करते हैं जो ऐतिहासिक हो जाती हैं। कुछ लोग इसी समय का उपयोग करके डॉक्टर वकील बनते हैं, तो साधक तपस्या करके प्रभु भक्ति करके अपने इष्ट से मिलने का मार्ग खोजता है। कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग इसी समय का दुरुपयोग करके निंदा, खुशामद, चुगली करते हैं और पाप के भागीदार बनते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु भक्ति कभी प्राप्त नहीं होती क्योंकि छल करना उनकी आदतों में शुमार हो जाता है। तो बस ये हमने तय करना है कि समय का सही उपयोग करना है या गलत। जो श्रेष्ठ समय के पलों का इस्तेमाल करते हैं, प्रभु उन पर अपनी कृपा के मेघ बरसाते हैं। चिंतन के बाद लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

दूसरों की कही गई बातों पर यदि हम यकीन करते हैं तो हम रिश्तों में द्वेष और वैर को बढ़ावा देते हैं, और ये वैर शारीरिक और मानसिक शक्ति को क्षीण कर देता है। क्योंकि जब मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है तो उसमें सकारात्मक विचारों को अंदर आने की जगह नहीं बचती। लेकिन प्रभु भक्त के मन में कभी किसी के लिए कोई द्वेष या शंका नहीं होती। अगर कोई पथ भ्रष्ट भी करता है, झूठी कहानियां भी सुनाता है, तब भी उस भक्त के हृदय में नकारात्मक तथ्यों के लिए स्थान होता ही नहीं, क्योंकि जिसके अंदर वो विराट शक्ति विराजमान है, फिर उसके अंदर नकारात्मकता, द्वेष, नफरत, निंदा, चुगली, ये सभी तथ्य शून्य के बराबर हो जाते हैं। वो मन उस स्वच्छ वस्त्र की तरह होता है जिसकी सफेदी पर या चमक पर प्रभु आंच भी नहीं आने देते, उसे दुनिया की कालक से बचा कर रखते हैं।

क्या खूब कहा गया है, उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षड्यते यत्र वर्तते तत्र देव सहायकृत। अर्थात उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति और पराक्रम, जिनमें ये छह गुण होते हैं, उन्हीं को परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त होता है। प्रभु उनकी सहायता के लिए हमेशा आते हैं।

अध्यात्म वेताओं के अनुसार जिस चीज़ से हम डर रहे हैं या हमें कोई चीज़ डरा रही है वह कोई और नहीं बल्कि हमारे अतीत के नकारात्मक कर्मों का परिणाम अर्थात हमारा प्रारब्ध है। हम अकेले में किसी और से नहीं बल्कि स्वयं से डरते हैं। इस डर से बचने के लिए हम अपने मित्र साथी या सहपाठी या घर वालों की ओर दौड़ते हैं। समाज या परिवार की भीड़ में ये यादें दब जाती हैं परंतु समाप्त नहीं होती। भीड़ के शोर में ये गलतियां हम छुपाने की कोशिश करते हैं परंतु सत्य कभी नहीं छुपता। वे उस तीव्र प्रकाश की तरह है ना एक दिन काले बादलों को चीरता हुआ सबके सामने आ जाता है जिसे नकार पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। इसलिए मन में ये प्रण हमें हमेशा करना चाहिए कि हम कभी किसी के साथ कुछ गलत ना करें, किसी के लिए भी अभद्र टिप्पणी ना करें, किसी के मन को चोट लगने वाली बात ना करें, क्योंकि हमारे द्वारा किया हुआ एक एक कार्य हमारे कर्मों के खाते में लगातार लिखा जा रहा है। इसलिए कर्मों की डोर को संभालना बहुत आवश्यक है। यही सच्चे जीवन का मूल मंत्र है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

राम सखा निषाद राज को गले लगाकर भरत ने कुशल क्षेम पूछा। निषाद राज ने कहा, हे प्रभु, कुशल का स्रोत तो आपके चरण हैं, जिनके आज मुझे दर्शन हो गए और आपकी कृपा पाकर मेरी करोड़ों पीढ़ियों का कल्याण और मंगल हो गया। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ, किंतु श्री राम ने मुझ जैसे अधम को अपनाकर विश्व का आभूषण बना दिया है। निषाद राज की प्रीति देख और उनके वचन सुनकर छोटे भाई शत्रुघ्न उनसे मिले। अपने कुल और धाम बताते हुए निषाद राज ने सभी रानियों को प्रणाम निवेदित किया। रानियां उन्हें लाख वर्ष की आयु प्राप्त करने का आशीष देती हैं। ये अद्भुत दृश्य देखने वाले अनायास ही कह उठते हैं कि मनुष्य जीवन धारण करने का वास्तविक लाभ तो निषाद राज ने पाया है। निषाद सेवकों ने घरों, वृक्षों के नीचे, बागीचों तथा आसपास के वन उपवन में भरत जी के पूरे दलबल के विश्राम के लिए समुचित प्रबंध कर दिए। श्रृंगवेरपुर को देख भरत का शरीर प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ गया। गंगा के दर्शन कर सभी यही कामना प्रकट करते हैं कि श्री राम के चरणों में उनका प्रेम कभी कम न हो।

अभी आपने श्री रामचरित मानस गान से भक्तिमय पाठ सुना और आज आपने सुना भाग 197। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। आइए अब सुने आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। पहले 6:55 पर संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे। 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुबह सुहानी। 7:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शुभ्याग। समाचार प्रभात सुबह 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम गाने सुहाने। सुबह 9:00 गीतांजलि कार्यक्रम पेश किया जाएगा जो ईमेल बेस्ड और फेसबुक के मैसेजेस पर आधारित होगा। 9:18 पर प्रादेशिक समाचारों के बाद गीतांजलि कार्यक्रम का शेष भाग 9:30 से 10:00 तक प्रसारित किया जाएगा। गीतों का कारवां ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:00। पहाड़ों के सुर हिमाचली गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुनिए सुबह 10:30 पर। आकाशवाणी शिमला से सुबह 11:00 प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 11:05 पर आज आप सुनेंगे कव्वालियां। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा 11:30। दोपहर 12:00 सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सुनो सखी महिलाओं के लिए कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:00 के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम 1:10 से रिले किए जाएंगे। दोपहर 3:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार और 3:05 पर जिला की चिट्ठी रिले की जाएगी। आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद आप ले पाएंगे 3:10 से शाम 5:00 तक, और शाम 5:00 समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा जिसमें 5:00 हिंदी में समाचार, 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुन पाएंगे। संध्याकालीन भजनों का आनंद लीजिएगा 5:10 पर। 5:30 पर युवा मंच कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे स्पोर्ट्स बीट। शाम 5:55 पर कार्यक्रम विवरण के बाद शाम 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। शाम 6:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमई सांझ। मौजा गराई दिया कार्यक्रम सुनेंगे 6:30 पर। शाम 7:00 के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात 8:00 आकाशवाणी शिमला से विधानसभा समीक्षा रिले की जाएगी। 8:30 पर देशभक्ति गीत प्रसारित किए जाएंगे। समाचार संध्या 8:45 पर रात्रि 9:00 News@9 आकाशवाणी दिल्ली से ही आप सुनेंगे। 9:15 पर आज सुनिएगा एक ही गीतकार और आज के गीतकार हैं अनजान। 9:30 पर चर्चा का विषय है रात 10:00 रूपक आपको सुनवाया जाएगा। 10:30 पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम में पुरानी फिल्मों के सदाबहार गीत प्रसारित किए जाएंगे। सभा के अंत में रात 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे।

0: तो ये तो थी कार्यक्रमों संबंधी रूपरेखा। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शंघाई सहयोग संघटनस्य सदस्य देशानां आह्वानं कृतवान् यत् आतंकवादस्य वित्तपोषणं आतंकवादीनां संघटने प्रवेशः उग्रवादस्य प्रसारः आतंकवादीनां सुरक्षिताश्रयस्थलानि च समाविष्टं संपूर्णं तंत्रं उन्मूलयेत्। ह्यः बिश्केक नगरे आयोजितं शंघाई सहयोग संघटनस्य 26वें शिखर सम्मेलनं संबोधयन् प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् आतंकवादस्य विषये द्विविधवान् मानदण्डानां किमपि स्थानं न भवितुमर्हति। विदेश मंत्रालयस्य पश्चिम विभागस्य सचिवः सीवी जॉर्ज वार्ताहर सम्मेलने अवदत् यत् प्रधानमंत्री विश्वस्य विभिन्नेषु भागेषु प्रवर्तमानानां संघर्षाणां विषये चिन्तां प्रकटितवान्। सदस्य देशानां नेतारः संघटनस्य 25वें वर्षपूर्ति अवसरे बिश्केक घोषणापत्रे हस्ताक्षरम् अपि कृतवन्तः। शिखर सम्मेलनस्य समापनम् आतंकवाद प्रतिरोधः ऊर्जा आपद्व्यवस्थापनम् अंकीय सहकारिता चेति विषयान् समाविश्य 13 प्रमुख परिणामैः सह अभवत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां जलशक्ति मंत्रालयस्य विभागीय शिखर सम्मेलनस्य समापन सत्रं संबोधयिष्यति। ह्यः प्रारब्धमिदं द्विदिवसीयं विभागीय शिखर सम्मेलनं प्रधानमंत्रिणा टीम इंडिया इत्यस्य भावनां सुदृढीकर्तुं सहकारात्मक संघवादं च अधिकं सुदृढीकर्तुं परिकल्पितानां विभागीय शिखर सम्मेलनानां श्रृंखलायाः प्रथमं सम्मेलनमस्ति। अस्मिन् शिखर सम्मेलने केन्द्र राज्य प्रशासनानि महत्वपूर्णानां क्षेत्रीय प्राथमिकतानां विषये विचार विमर्शं करिष्यन्ति अथ समयबद्धाः कार्ययोजनाः च निर्मास्यन्ति। शिखर सम्मेलने चतुर्षु प्रमुख क्षेत्रेषु विशेषं ध्यानं दीयते। तेषु जलसंरचना परियोजनानां समयबद्धं कार्यान्वयनं जलसंचय जनभागीदारी कैच द रेन इत्येतत् पेयजल स्रोतसां स्थायित्वं जल जीवनोपक्रमः च सम्मिलिताः सन्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य छत्तीसगढ़े रायपुरस्य यात्रां करिष्यति। स्वीय यात्रावधौ उपराष्ट्रपतिः रायपुरस्य अखिल भारतीयायुर्विज्ञान संस्थानस्य तृतीये दीक्षांत समारोहे भागं ग्रहीष्यति। बेल्जियम देशस्य प्रधानमंत्री बा डी वेबर अद्यारभ्य भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। यात्रावधौ सः प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां समग्र परिदृश्यस्य परस्पर हित सम्बन्धानां क्षेत्रीय वैश्विक विषयाणां च विषये द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघयोः मुक्त वाणिज्य संधेः संदर्भे आयोजितं व्यावसायिक कार्यक्रममपि संबोधयिष्यति। सः मुंबई नगरमपि गमिष्यति यत्र हीरक क्षेत्रस्य पत्तन व्यवस्थायाः परिवहन आपूर्ति व्यवस्थायाश्च प्रतिनिधिभिः सह विचार विनिमयं करिष्यति। विदेश मंत्रालयस्य अनुसारं एषा यात्रा भारत बेल्जियम देशयोः सहभागितां सुदृढीकर्तुं महत्वपूर्णम् अवसरं प्रदास्यति। सममेव व्यापार विनियोगयोः रक्षायाः सुरक्षायाश्च प्रौद्योगिक्याः नवीकरणीयोर्जायाः सम्पर्कस्य अथ प्रतिजनसम्बन्धानां च क्षेत्रेषु पारस्परिकहितस्य सहयोगमपि वर्धिष्यते। नेपालस्य प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाहः उक्तवान् यत् गतसप्ताहे तिब्बत क्षेत्रात् भोटेकोशी नद्याः मार्गेण रसुवा प्रदेशं प्रविष्टः विनाशकारी जलाप्लावः वायुमण्डल

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पुनः लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता जताई।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे। उन्होंने नागरिकों से देश की प्रगति में योगदान जारी रखने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार की नीतियां और इरादे सही हैं। देश में कच्चे तेल के बाद सोना ही ऐसी दूसरी वस्तु है जिसका सर्वाधिक आयात किया जाता है। सोने की थोक मात्रा में खरीद बंद करने से देश के कुल आयात बिल में भारी कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में मापने योग्य सुधार हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना, चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों में स्थिरता लाना है। चीनी भंडारण की नई समय सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यापारी स्टॉक को प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक नहीं रख सकता है और देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा और इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर तथा दिल्ली एनसीआर में वितरित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कल केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी गई और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के विरुद्ध जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि की ये यात्रा भारत बेल्जियम के बीच आपसी साझेदारी को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष युगल में खेलते नजर आएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra.

0: सुबह सुहानी।
1: सुबह सुहानी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारी ओर से नमस्कार। दो सितंबर का दिन है और बुधवार की इस सुहानी सी सुबह में हम हाजिर हो गए हैं आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। तो चलिए बात करते हैं आज के सुविचार की। जीवन में और ये समय कभी दोबारा वापस नहीं आते, इसलिए इसे दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करने में बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं मनोरंजन की तरफ और अब सुनते हैं एक मीठा सा गीत।

सुबह के 7:16 आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुबह सुहानी। अपने अभिनय, आकर्षक व्यक्तित्व और अनोखी हेयर स्टाइल से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा ने। वो कौन थी? मेरा साया, आरजू और वक्त जैसी फिल्मों में उनके यादगार अभिनय ने उन्हें हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की जानी मानी फिल्म अभिनेत्री साधना की, जिनका आज जन्मदिवस है। वे 2 सितंबर 1941 को कराची, सिंध, ब्रिटिश भारत में पैदा हुई। साधना शिव दासानी 1960 के दशक के मध्य राज खोसला द्वारा निर्देशित 3 सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए उन्हें लोकप्रिय रूप से मिस्ट्री गर्ल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1958 की पहली सिंधी फिल्म अबाणा से की थी। हिंदी सिनेमा में मुख्य अभिनेत्री के रूप में लव इन शिमला से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और उनके हेयर स्टाइल का नाम ही साधना कट बन गया, जो लोगों को बहुत पसंद आया करता था और आज भी लोग इस तरह का हेयर स्टाइल रखते हैं। उनकी फिल्में हैं महफिल, अमानत, गीता मेरा नाम, दिल दौलत दुनिया, आप आए बाहर आए, इश्क पर जोर नहीं, इंतकाम, सच्चाई, अनीता, मेरा साया, गवन, वक्त, वो कौन थी, राजकुमार, दूल्हा दुल्हन, मेरे महबूब, असली नकली, मन मौजी, हम दोनों और पारक। तो चलिए एक गाना उन्हीं की अभिनीत फिल्म में से आपको सुनवाते हैं।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और श्रोताओं हम बात करेंगे विश्व नारियल दिवस के बारे में। आज हम बात करेंगे ऐसे फल की जिसे प्रकृति का बहुमूल्य उपहार कहा जाता है। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं नारियल की, क्योंकि आज हम मना रहे हैं विश्व नारियल दिवस जो 2 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। नारियल हमारे जीवन में केवल एक फल के रूप ही में नहीं, बल्कि भोजन, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में अपनी अलग पहचान रखता है। नारियल पानी गर्मी में ताजगी देता है, जबकि नारियल से तेल, दूध और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ निकाले जाते हैं। भारत दुनिया के प्रमुख नारियल उत्पादक देशों में शामिल है। केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में नारियल की खेती किसानों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। विश्व नारियल दिवस हमें नारियल की उपयोगिता के साथ साथ नारियल की टिकाऊ कृषि के महत्व को समझने का भी अवसर देता है।

0: रहेगा तो।
1: सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शुद्ध स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार का विशेष महत्व होता है। इसी जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण आहार सप्ताह मनाया जाता है। ये दिवस 1 सितंबर यानी पिछले कल से 7 सितंबर तक मनाया जाता है और इस सप्ताह को मनाने का दूसरा दिन है और इसे पहली बार 1982 में शुरू किया गया था। हमारे भोजन में दालें, अनाज, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध और दूध से बने पदार्थ और पर्याप्त पानी को हमें शामिल करना चाहिए। बच्चों और किशोरों के शारीरिक विकास, मानसिक विकास में संतुलित आहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पोषण केवल भरपेट भोजन करने का नाम नहीं बल्कि सही मात्रा में सही पोषक तत्व लेने का नाम है। तो चलिए, ये बात हो गई पोषण की और अब बढ़ते हैं कि संगीत की तरफ।
2: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

थई त थई त थई थई थई झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन धाक दिनक दिन ताक तिनक तिन धा आँख मिल जई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

हमारी हर बार की यही कोशिश होती है कि हमारे श्रोताओं को जानकारियों के साथ भरपूर मनोरंजन गीत संगीत के साथ उनके घर द्वार तक पहुंचे। तो चलिए एक और जोशीला सा गीत सुनवाते हैं, उसके बाद लौटते हैं समाचारों के साथ।

7:35, 103.4 मेगाहर्ट्ज आपने ट्यून इन किया है और अब सुनते हैं आज के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित जल सुरक्षा पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में भाग लेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक के विरोध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़े मामले में दर्ज एफआईआर बंद करने का आदेश दिया है। कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की समीक्षा की। उन्होंने किसानों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने पर जोर दिलाया। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 26वां शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शुरू हुआ। सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है। नेपाल में हाल की विनाशकारी बाढ़ के बाद भारत ने राहत और बचाव प्रयास तेज किए हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 163 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। अब बात करेंगे खेल समाचारों की। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए भारत पुरुष क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। स्क्वैश में भारत के अभय सिंह ने मलेशिया में ट्वांकू मोहरीज ट्रॉफी 2026 का एकल खिताब जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने हांगकांग के हेनरी लेंडिंग को 3-2 से हराया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई है।

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: सुबह सुहानी।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम शोपियां।

शुपया कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत। और कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं अच्युत सिंह परमार और ज्वाला प्रसाद के गाए इस लोकगीत के साथ।

शुपया कार्यक्रम में हिमाचली गीत और लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब लीजिए सुनिए ओम प्रकाश और साथियों को।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने को हैं, अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत ताज।

0: आज शेंजेन में चाइना मास्टर्स सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुपुर्द करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है।
1: 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता बताई।
1: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज, चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए, इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में व्यापक सुधार हो सके। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: संशोधित प्रावधानों के तहत कोई भी चीनी व्यापारी किसी भी भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकता है। चीनी व्यापारी देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता है। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि कोलकाता उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से चीनी खरीदता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित देश के पूर्वी हिस्से को इसकी आपूर्ति करता है, इसलिए कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के लिए 4000 क्विंटल की मौजूदा सीमा को बरकरार रखा गया है। भानु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा और इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर तथा दिल्ली एनसीआर में वितरित किया गया है। 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंचा और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा बाजार स्थितियों और मूल्य रुझानों के आधार पर लगभग 1000 मीट्रिक टन प्याज सड़क मार्ग से प्रमुख उपभोग केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। मंत्रालय ने सूचित किया कि लगभग 3400 प्याज उत्पादक किसानों को 210 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि बफर स्टॉक से प्याज जारी करने से बाजार में उपलब्धता में सुधार हुआ है और बिक्री शुरू होने के अगले दिन से कीमतों में गिरावट आई है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Update rahe, aage rahe. X पर at AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाकर नए सिरे से आक्रमण शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास, होर्मोज, असालवे, ज़िरोफ्ट, केशन द्वीप सहित कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। वहीं अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनकी ओर से ईरानी सेना को निशाना बनाकर किए गए हमले पूरे हो चुके हैं। इस दौरान वायु रक्षा क्षेत्रों, बारूदी सुरंगों की क्षमता वाली जगहों और संचार संबंधी केंद्रों सहित कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीकी हमले में कुहिस्ताक शहर में एक शादी समारोह के दौरान एक घर को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चेतावनी दी है कि ईरान की ओर से इस हमले के जवाब में किसी भी प्रकार की कार्रवाई का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। नेपाल में 19 सदस्यीय भारतीय फोरेंसिक दल ने फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की पहचान में सहायता के लिए डीएनए के नमूनों की जांच शुरू कर दी है। नेपाल में आई बाढ़ में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि कल शाम तक 1068 शव बरामद किए गए, जिनमें से 400 शवों के केवल आंशिक अवशेष ही मिले, जिससे पहचान प्रक्रिया जटिल हो गई। बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए अधिकारियों ने पहचान के प्रयासों में सहायता के लिए कई लावारिस शवों से डीएनए नमूने एकत्र किए हैं। चितवन जिले में अब तक सबसे अधिक शव बरामद हुए हैं। पहचान के लिए डीएनए नमूने एकत्र करने के बाद अधिकारियों ने नदी किनारों पर खुले स्थानों में सैकड़ों शवों को दफना दिया है। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है।
3: गंगा के तेज कटाव के चलते नवगछिया प्रखंड में वर्षों पुराने दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर और करीब 500 मीटर लंबा जमींदारी बांध गंगा में समा गया है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि गंगा की धारा में अप्रत्याशित बदलाव से कटाव गंभीर हो रहा है।
4: भागलपुर में खरीक ब्लॉक का शंकरपुर गाँव है, वहाँ पे गंगा की धारा कुछ बदलने की प्रवृत्ति हो रही है। यह बात सही है कि स्थिति वहाँ पर जो है उससे थोड़ा खतरा बना हुआ है, लेकिन हमारे सभी वरीय पदाधिकारी।
3: इधर सारण, वैशाली, बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद, नवादा और औरंगाबाद में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक मिलकर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और

0: अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच हुई बैठक के बाद इस पर सहमति बनी। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष युगल में खेलते नजर आएंगे। इससे पहले भारत की उन्नति हुड्डा कल टूर्नामेंट से बाहर हो गयी। हुड्डा महिला एकल के पहले दौर में दक्षिण कोरिया के विश्व नंबर 12 किम गांग यून से सीधे गेम में 10-21, 18-21 से हार गयी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, उप कप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा हैं। 13 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा, दूसरा मैच 15 सितंबर को, सीरीज का अंतिम मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। तीनों मैच नई दिल्ली में खेले जाएंगे।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। वैश्विक चुनौतियों के बीच विकास की गति जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया स्वदेशी का मंत्र, एक बार फिर से सोना खरीदारी और विदेश भ्रमण से दूर रहने को कहा। दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के बीच नेपाल में बाढ़ की चेतावनी, जनसत्ता की खबर है। अमर उजाला ने वहां की तस्वीरें प्रकाशित करते हुए लिखा है, नेपाल में जल प्रलय। पत्र ने दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने का समाचार भी दिया है। मौसम का कहर, उत्तराखंड में 11 की मौत, 19 राज्यों में भारी बारिश के आसार। छत पर मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी सरकार, औसत बिजली खपत 400 यूनिट होने पर मिलेगा फायदा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली में घर बैठे ही मोबाइल से संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे। हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, रजिस्ट्री होते हुए दस्तावेज खरीदार के डिजी लॉकर पहुंच जाएंगे। एआई ने बढ़ा दी वेबसाइटों की मुश्किलें, गूगल सर्च नहीं, यूजर्स सीधे एआई से पूछ रहे हैं सवाल। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। जनसत्ता ने नादिया में जन्माष्टमी के त्योहार से पहले भगवान कृष्ण की मूर्ति को अंतिम रूप देते हुए कलाकार की मनमोहक तस्वीर प्रकाशित की है। डिब्बा बंद भोजन का आंत का कैंसर भी बढ़ा रहा है। एम्स के अनुसार हर तीसरे व्यक्ति को गैस्ट्रो की परेशानी, खराब खानपान और जीवन शैली वजह है। हिंदुस्तान में है, पेट को स्वस्थ रखने के लिए पानी का अधिक सेवन और फाइबर युक्त भोजन लेने की दी सलाह।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी की भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मुज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों की पहचान के लिए DNA जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi renews call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. Prime Minister to address valedictory session of departmental summit of Jal Shakti Ministry in New Delhi today. Government reduces stock holding limit of sugar from 4 to 2,000 quintals. US begins fresh strikes on IRGC targets inside Iran, explosions heard in Bandar Abbas and Hormuz. Indian forensic team begins DNA analysis to identify flash flood victims in Nepal.

उदित नारायण और साथियों का गाया गदर फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे। उत्तम सिंह का संगीत इस गाने में था। गाने सुहा

कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। ए आर रहमान के संगीत निर्देशन में अब सुनिए नायक फिल्म का ये गीत।

0: सुबह के 8:42 हुए हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गाने सुहाने।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
3: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
2: RBI कहता है जानकार बनिए,
3: सतर्क रहिए।
1: जान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: सावधान, उच्च रक्तचाप एक खामोश खतरा। क्या आपको बार बार सिर दर्द, सीने में दर्द या चक्कर आते हैं? ये हाई बीपी के संकेत हो सकते हैं। अगर रोका न गया तो हो सकता है दिल का दौरा, लकवा या किडनी फेल।
2: घबराए नहीं, सरकार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बीपी की जांच और दवाइयां मुफ्त मिलती हैं।
1: आज ही अपना बीपी चेक कराए, नमक कम खाए, रोज टहले, तनाव से दूर रहे और हाई बीपी को कहे अलविदा।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: स्वस्थ हिमाचल, मजबूत हिमाचल।
4: गाने सुहाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। पापा कहते हैं, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत उदित नारायण की आवाज़ में। धुन तैयार की है राजेश रोशन ने।

पॉप फिल्म के इसी गीत के साथ आज का गाने सुहाने कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 9 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम गीतांजलि।

खूबसूरत है वो हाथ जो मुश्किल के वक्त किसी का सहारा बने, खूबसूरत है वो जज्बात जो दूसरों की भावनाओं को समझ पाएं, खूबसूरत है वो आँखें जिनमें हम सुंदर स्वप्न सजाएं, खूबसूरत है वो दिल जो किसी के दुख में काम आए। सभी श्रोताओं का स्वागत कार्यक्रम गीतांजलि में। जी हाँ,

ख्वाहिश हमें भेज सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं फेसबुक मैसेजेस से, और हमें जो मैसेजेस मिले हैं उसमें से सबसे पहला मैसेज हम ले रहे हैं फैज़ल इमाम का। आन मिलो सजना फिल्म से गाना ये सुनना चाहते हैं, हयात कलोनी अरिया बिहार से लिख रहे हैं। फैज़ल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण और जुहानुल हुदा। राधे श्याम शर्मा जी लिख रहे हैं गांव हांडी खेड़ा ज़िला सिरसा से। राधे श्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और पालकी फिल्म का गाना ये सुनना चाहते हैं, भरी महफिल में किधर जाऊं या उधर जाऊं। प्रकाश जी लिख रहे हैं कि बेटा बेटी, बेटी बेटे फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, अगर तेरी और जलवा नुआई ना होती, शायद यही गाना है। और मोहम्मद रफ़ी सुमन कल्याणपुर का ये गाना है, संगीत शंकर जयकिशन का, बोल शैलेंद्र जी के, और कास्ट सुनील दत्त, सरोजा देवी, डायरेक्टर एलवी प्रसाद, कर्नाटका स्टेट चिन्ना त्रिपति से प्रकाश श्यामला, और साथी में शुक्रिया जी लिख रहे हैं और नमस्ते लिख रहे हैं। बहुत डिटेल में इन्होंने हमें मैसेज भेजा है और पूरे गाने के बारे में, फिल्म के बारे में, किसने ये कास्ट की है, डायरेक्ट की है, उसके बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी लिखी है। शुभचंद्र बजाज जी लिख रहे हैं रैना बीती जाए शाम नाए, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। इसी के साथ हम एक मेल पढ़ रहे हैं, मेल हमें भेजी है हीरामणि वर्मा ने। सबसे पहले लिख रहे हैं सर प्रेम नमस्कार, उनको भी हमारा नमस्कार, और पसंद करता है दत्तरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, और फरमाइश का गीत जो वो सुनना चाहते हैं संगीत फिल्म से, और बोल लिखे हैं सुन ओ हसीना काजल वाली। जी बिल्कुल, गाना हम इनको सुनवा रहे हैं और कार्यक्रम में आगे हम फरमाइशों का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन श्रोता, आपको बता दें कि मैसेजेस बहुत सारे हैं और कुछ ही श्रोताओं की फरमाइश इसमें पूरी की जाएगी, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका नाम इस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल किया जाए।

गीतांजलि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और अगला मेल हम पढ़ रहे हैं लाल गिरी जी का। लिख रहे हैं, जी नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन आपको भी। और दो रास्ते फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत के बोल हैं, ये रेशमी जुल्फ़ें। रघुनाथपुरा ज़िला श्रीगंगानगर राजस्थान से लिख रहे हैं। और लालगिरी गोस्वामी जी के साथ लिख रहे हैं हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी।

अगला मेल हमें भेजा है नाना लामसे ने और लिख रहे हैं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बरेठी से। मीना लामसे, तेजस लामसे, जय लामसे, हर्षिता लामसे कोई भी गीत प्रोग्राम में ये शामिल करने के लिए कह रहे हैं।

बाबू शिवा जी लिख रहे हैं हमें मैसेज, और इसी के साथ हमें एक और मैसेज हमें मिला है सुदर्शन शाह जी का। यादों की बारात फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं लेकर हम दीवाना दिल। आशा भोंसले किशोर कुमार की आवाज़ है। पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से ये लिख रहे हैं। इनके साथ मैसेज हमें भेजा है प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। और इसी के साथ फेसबुक पर एक और मैसेज है बमखेड़ा बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू का। पारस मणि फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। रोशन तुम ही से दुनिया, और गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो चलिए इसी गीत को सुनते हैं

ईमेल बेस्ड और फेसबुक मैसेजेस पर आधारित कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से कार्यक्रम है गीतांजलि और राजेश कुमार वर्मा का मैसेज हम ले रहे हैं। अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दें और ये लिख रहे हैं गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस माउथ नगर भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा, पीहू स्वर्णकार और आपका धन्यवाद जी ये लिख रहे हैं। और इसके बाद है मुकेश कश्यप जी, नमस्कार जी आपको और हमारे भी नमस्कार। जिला पीतल नगरी ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं, इनके साथ लिख रहे हैं शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानव, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतक, ऋतिक, बलवीर सिंह, किसी भी गीत में शामिल हमें करें जी। जी बिल्कुल करेंगे। और गीतांजलि कार्यक्रम में आरजी को सप्रेम प्यार भरा नमस्कार और ये नमस्कार लिख रहे हैं नारायण लाल साहू, माँ बमलेशपुरी धाम सांकरा सोमनी जिला रजनंदा गांव छत्तीसगढ़, नारायण लाल साहू, कुलवंत सिंह साहू, देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू। सफ़र फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं नदिया चले चले रे धारा तुझको चलना होगा। जूनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से इसी में मैसेज हमें डाला है सुरीत रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र किशन, सुनीता रिस्वीन, नीलकंठ चंद्रहास, हीरेंद्र संजीवन साहू का। और एक मैसेज हम मेल में से ले रहे हैं, ये है संबलपुर कांकेर से लिख रहे हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और इनके फरमाइश है जंगली फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं दिन सारा गुजारा तोरे अंगना। शिवा गोप लिख रहे हैं गीतांजलि कार्यक्रम में सभी श्रोताओं को नमस्कार, चने के खेत में ये गाना सुनना चाहते हैं अंजाम फिल्म से, पूर्णिमा जी गायक हैं इसकी, गीतकार समीर, संगीतकार आनंद मिलिंद। जिला पश्चिम सिंहभूमि चाईबासा झारखंड से लिख रहे हैं और शिवा गोप के साथ प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपांकर गोप ये गाना सुनना चाहते हैं। तो चलिए गाना सुनते हैं चने के खेत में।

फेसबुक मैसेजेस और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। 9:18 होने को हैं और हम हाजिर होंगे 9:30 पर, क्योंकि अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी शिमला के स्टूडियोज। 9:30 से हम आपके फेसबुक मैसेजेस और ईमेल मैसेजेस पढ़ने शुरू करेंगे।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
1: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने व सोने की अनावश्यक खरीद न करने का किया आह्वान। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में मुख्यमंत्री आज पेश करेंगे 3 अहम बिल। रोजगार की गारंटी पर शुरू हुई चर्चा का जवाब भी देगी सरकार। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा, हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध करवाना है समृद्ध व विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला। सिरमौर जिले के रुण नदी में फंसे 2 लोगों का कल रात 9 बजे हुआ सफल रेस्क्यू। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट किया जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार पुनः लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश में लोगों से कहा कि वे विदेशों में छुट्टियां मनाने, दूसरे देशों में जाकर

0: ब्याह करने और आवश्यक न हो तो सोने की खरीदारी करने से परहेज करें। उन्होंने देशवासियों को 7.8% आर्थिक विकास दर हासिल करने पर बधाई दी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने व स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता बताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। उन्होंने अपने आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में कुछ लोग निराशा के माहौल में डूबे हुए हैं और हर तरफ झूठ फैला रहे हैं। प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र की आज 9वीं बैठक है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। अधिक ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी।
1: मॉनसून सत्र की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी, जिसमें विधायकों द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 3 अहम बिलों को सदन में विचार और पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे, जिनमें हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026, शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए लोक सुरक्षा व सुविधा संशोधन विधेयक सहित माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। इसके साथ ही नाबार्ड सड़कों में देरी और की कमी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सदन में आज विधायक पवन कुमार काजल व चंद्रशेखर सड़क व पुल के निर्माण में हो रहे विलंब व बसों की कमी से लोगों को हो रही असुविधा पर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। सदन में नियम 130 के तहत रोजगार की गारंटी पर आगे चर्चा शुरू होगी, जिसका सरकार की तरफ से आज भी जवाब दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं प्रियंका ठाकुर।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में स्थापित 150 CBSE स्कूलों में शिक्षकों की 3 बार उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की जाएगी, जिसके तहत स्कूल दिवस के दौरान 3 चरणों में सुबह स्कूल पहुंचने के समय, दोपहर लंच ब्रेक के दौरान और स्कूल से छुट्टी के समय उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। शिमला में शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इन CBSE स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए अलग अलग ड्रेस कोड निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड इस वर्ष 1 अक्टूबर से निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की स्कूल वर्दी के संबंध में निर्णय अगले 1 सप्ताह के भीतर लिया जाएगा। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध करवाना सशक्त, समृद्ध व विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है। हमीरपुर में एक से श्रेष्ठ पहल के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश की वास्तविक शक्ति उसके बच्चों में निहित है और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि सहित भौगोलिक स्थिति से परे हर बच्चे को शिक्षा, कौशल और अपनी प्रतिभा निखारने के लिए पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस नीति से समग्र, समावेशी व ज्ञान आधारित शिक्षा व्यवस्था की दिशा में परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि एक विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में खेल महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और खेल से जहां विद्यार्थी का शारीरिक विकास होता है, वहीं मानसिक विकास में भी बढ़ोतरी होती है। वे शिमला जिले में मशोबरा विकासखंड के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नीन में जोनल स्तरीय छात्रा वर्ग की अंडर 19 खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की छात्राएं विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में देश प्रदेश का नाम रोशन कर हिमाचल को गौरवान्वित कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को खेलों से जोड़ने व उन्हें नशे से दूर रखने के लिए सरकार ने जमीनी स्तर पर कई अहम कदम उठाए हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
2: सावधान, उच्च रक्तचाप एक खामोश खतरा। क्या आपको बार बार सिर दर्द, सीने में दर्द या चक्कर आते हैं? ये हाई बीपी के संकेत हो सकते हैं। अगर रोका न गया तो हो सकता है दिल का दौरा, लकवा या किडनी फेल।
3: घबराएं नहीं, सरकार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बीपी की जांच और दवाइयां मुफ्त मिलती हैं।
2: आज ही अपना बीपी चेक कराए, नमक कम खाए, रोज टहले, तनाव से दूर रहे और हाई बीपी को कहे अलविदा।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: स्वस्थ हिमाचल, मजबूत हिमाचल।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सिरमौर जिले के नाहन विधानसभा क्षेत्र के तहत वर्मा पापड़ी की रुण नदी में फंसे 2 लोगों का कल रात करीब 9 बजे सफल रेस्क्यू किया गया। 5 घंटे के इस

0: रेस्क्यू ऑपरेशन में वायुसेना के हेलीकॉप्टर के अलावा एनडीआरएफ और होमगार्ड के जवानों ने विशेष भूमिका निभाई। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
1: दरअसल यहाँ एक व्यक्ति भैंसों को बचाने के लिए नदी में उतरा और पानी के तेज बहाव में फंस गया। इसी दौरान एक स्थानीय युवक भी इन्हें बचाने के लिए नदी में उतरा और वो भी बीच नदी में ही फंस गया, जिसके बाद प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचित किया, जिसके बाद सेना का हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचा और दोनों लोगों का रेस्क्यू किया जा सका। करीब 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसके बाद दोनों लोगों को बचाया जा सका। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल भी रुण नदी में फंसे दो लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन के पूर्ण होने तक मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से आग्रह करने के बाद सेना का हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाया गया और दोनों लोगों की जान बच पाई। राजीव बिंदल ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों की सराहना भी की। कुल्लू शहर में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर सकारात्मक बदलाव सामने आया है। शहर की एमआरएफ साइट अब कचरे से मुक्त हो गई है, जिसके चलते लोगों को बढ़ती बीमारियों और बदबू से राहत मिली है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
2: बीते कई सालों से इस साइट के इर्द गिर्द रहने वाले लोग यहां से आती बदबू से काफी परेशान थे तथा सीनियर सिटीजन संस्था समेत अन्य कई लोगों ने कई बार ये मुद्दा प्रशासन के समक्ष भी उठाया था। वहीं नई नगर परिषद ने कार्यभार संभालते ही इस समस्या को सुलझाया तथा यही नहीं बल्कि पूरे शहर में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बेहतर दिशा देने का काम किया है। एमआरएफ साइट के कचरा मुक्त होने से शहर में स्वच्छता को लेकर सकारात्मक संदेश गया है तथा लोगों ने राहत की सांस ली है। नगर परिषद की प्रधान आशा ठाकुर का कहना है कि परिषद शहर में सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है तथा उन्होंने लोगों से अपने घरों और दुकानों से निकलने वाले कचरे का उचित निपटारा करने तथा शहर को साफ सुथरा रखने में सहयोग की अपील की है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। मॉनसून की वर्षा के चलते प्रदेश में अभी भी 60 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध है, जिन्हें खोलने के प्रयास जारी है। इसके अलावा 11 बिजली ट्रांसफार्मर और 39 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने विधानसभा सत्र से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है, सभी 6 विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती अब राज्य लोक सेवा आयोग से होगी। पंजाब केसरी लिखता है, सभी विभागों में तैनात मल्टी टास्क वर्कर के लिए बनेगी एक संयुक्त पॉलिसी। दिव्य हिमाचल व दैनिक जागरण की एक खबर है, सीबीएसई स्कूलों में दिन में 3 बार लगेगी हाजिरी। कालका शिमला ट्रैक पर 13 सितंबर तक नहीं चलेंगी ट्रेन शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है, गुम्मन रेलवे स्टेशन के पास रेल ट्रैक के नीचे करीब 20 फुट हिस्सा बहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने व सोने की अनावश्यक खरीद न करने का किया आह्वान। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में मुख्यमंत्री आज पेश करेंगे 3 अहम बिल। रोजगार की गारंटी पर शुरू हुई चर्चा का जवाब भी देगी सरकार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध करवाना है समृद्ध व विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला। सिरमौर जिले के रुण नदी में फंसे 2 लोगों का कल रात 9 बजे हुआ सफल रेस्क्यू। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11 बजे। नमस्कार।
3: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
4: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
3: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
4: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 और 56 सेकंड हुए हैं। लीजिए सुनिए गीतांजलि कार्यक्रम का शेष भाग।
6: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
7: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ।

0: और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
3: जी श्रोता, आप इस प्रोग्राम में ईमेल कर सकते हैं और हमारा मेल आईडी है musicmail@gmail.com और फेसबुक पर भी जाकर आप हमें मैसेजेस टाइप कर सकते हैं और अपनी फरमाइश का, अपनी पसंद का कोई भी गाना सुन सकते हैं। एक मेल पढ़ रहे हैं, ये मेल हमें आई है नाना लामसे से, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बरेली से ये लिखने वाले हैं। इनके साथ लिख रहे हैं मीना लामसे, तेजस लामसे, जय लामसे, हर्षिता लामसे, और इन्होंने लिखा है कि प्रोग्राम में कोई भी गीत में हमें शामिल करें।

आर कुमार जी लिख रहे हैं, नमस्कार, उनको भी हमारा नमस्कार। और बडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा भी ये मैसेज हमें कर रहे हैं, किसी भी गाने को ये सुनना चाहते हैं। फेसबुक मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं तो अगला मैसेज है मीका विर का, कोई भी गाना सुनना चाहते हैं। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से लिख रहे हैं हरदेव मीका, बलविंदर विर्क, जय तेग विर्क, मीका विर्क। राजपाल राजी लिख रहे हैं, रेस्पेक्टेड होस्ट जी नमस्ते, एनी सॉन्ग प्लीज, थैंक्स। आदर्श नगर मलौत पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा और मैंडी शर्मा। फिल्म राजकुमार का गाना ये सुनना चाहते हैं और लिख रहे हैं कमल शानवे, और गाना है आई आजा आई बहार। आज सुबह ही हमने ये गाना सुनवाया था। नागपुर महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कमल साहनी, डॉक्टर हाजी अफजल मलिक, संदीप, रामगढ़ कैंट झारखंड से निपी साहनी। बालक्राम वर्मा लिख रहे हैं गीतांजलि कार्यक्रम में दिल तुझको दिया ये गाना सुनना चाहते हैं। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, निधि निखिल वर्मा। उमेश कुमार गौर लिख रहे हैं कोई भी गाना सुनवा दीजिए, बुलंदशहर से उमेश कुमार गौड़ रानी गौड़। अजीत कसना जी लिख रहे हैं राम राम सीताराम, उनको भी सीताराम। फिल्म का नाम बताया है जख्म, उसमें से कोई भी गाना सुनना चाहते हैं। अजीत कसाना के साथ लिख रहे हैं माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, लदवाली जिला मुरादाबाद से ये लिख रहे हैं हमें। धर्मेंद्र शिंपा जी लिख रहे हैं आपको हार्दिक नमस्कार, बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोग्राम, बेहतरीन प्रस्तुतिकरण, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिल्म लिख रहे हैं ये नसीब का गाना सुनना चाहते हैं और जिंदगी इम्तिहान लेती है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र शिंपा के साथ लिख रहे हैं कपिल शिंपा, ईशान शिंपा, पूजा परिहार। तो चलिए इनकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, नसीब फिल्म का गाना सभी श्रोताओं को सुनवा रहे हैं। और श्रोता हम आपको बता दें कि ये प्रोग्राम ईमेल और फेसबुक मैसेजेस पर आधारित है। बहुत सारे फेसबुक मैसेजेस और मेल्स हमें मिली हैं लेकिन सबकी फरमाइश इस प्रोग्राम में पूरी नहीं हो पाएगी। हमारी हमेशा की तरह कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नाम हम इस कार्यक्रम में ले सकें और जो उनमें से कुछ चुनिंदा श्रोताओं के गाने, उनकी पसंद के गाने आप तक पहुँचा पाएँ।

गीतांजलि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और रजक मोहम्मद जी लिख रहे हैं, दिलवाली फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, कितना हसीन चेहरा। प्यार भरा नमस्कार लिखा है, इनको भी नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से रजक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जैशिन खान मैसेज हमें भेज रहे हैं। इसके साथ हमें मैसेज आया है, गीतांजलि कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जी को जय श्री राम। हमारा भी जय श्री राम। छत्तीसगढ़ कोदवा राजा से राम स्वरूप गुप्ता, विवेक गुप्ता, एचडी गुप्ता, रामेश्वर नगर, भनपुरी रायपुर से प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता, शशांक गुप्ता, पंचमुखी हनुमान मंदिर दुर्ग से अनंत जैन, हंसित जैन, प्रीति जैन, फिल्म आप आई बाहर है का ये गाना सुनना चाहते हैं, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। और विष्णु टेलर लिख रहे हैं, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, यादों की बारात फिल्म से ये गाना सुनना चाहते हैं। हमारा नाम है विष्णु मिस्किन रितिका आरोही वाणी, मिस्किन परिवार, हमारा पता दयानंद कॉलेज, भवानी पेठ, सोलापुर, महाराष्ट्र। चलिए अगला मैसेज है, लव स्टोरी फिल्म के लिए कोई भी गीत सुना दीजिए। ज़िला किशन नगर बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी हमें मैसेज भेज रही हैं। राधा नामदेव लिख रही है, नमस्कार, कतर मूवी का गाना सुनना चाहती हैं, मेरा रूप रंग मोरा अंग ले ले। और सराहनपुर से राधा नामदेव के साथ अर्पणा नामदेव, अभिषेक नामदेव ये मैसेज हमें भेज रहे हैं। देवेंद्र कुमार गुप्ता जी लिख रहे हैं, नमस्कार जी, सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना सुनवा दीजिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। कस्बा उदेती वदयू से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता, कार्तिक गुप्ता, निर्भय गुप्ता। इसी के साथ इन्होंने धन्यवाद लिखा है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैसेज करने के लिए। संजय ढींगिया जी लिख रहे हैं, सादर नमस्कार जी, बिल्कुल नमस्कार, मेरा साया फिल्म का गाना ये सुनना चाहते हैं, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। एक फूल दो माली फिल्म का गाना ये लिख रहे हैं, सैया लेगी जे या। इन्होंने दो फरमाइशें भेजी हैं, इसमें से कोई भी ये पूरी करवाना चाहते हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। तो चलिए इनको गाना सुनवाते हैं, झुमका गिरा रे।

गीतांजलि कार्यक्रम श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और हम अगला ईमेल पढ़ रहे हैं सुल्तान सिंह का। ये लिख रहे हैं हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से सुल्तान सिंह तरार, कृष्ण मुकेश तरार, रामचंद्र कपिल देव तरार, कांता चौधरी, प्रिया नैना झक्कर।

अगला मेल आया है मुकेश भट्टा का, लिख रहे हैं हाय प्ले प्लीज़ प्ले एनी सॉन्ग, और कनेरा मोहल्ला पटियाला से लिख रहे हैं रिगार्ड्स लिखा है। चलिए गाना तो हम सुनवा ही रहे हैं और अगला मैसेज हम फेसबुक से ले रहे हैं। आरजू फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं नंद किशोर घटे जी, और गीत के बोल लिखे हैं बिदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, पसंद कर रहे हैं बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर।

घटे संगीता घटे साक्षी घटे जय श्री महेत्री अंजलि करवा बाला साहेब कारवा। और अगला आरिफ अहमान अहमद जी का मैसेज हम ले रहे हैं, आदाब लिख रहे हैं, आपको भी हमारा आदाब। सरगम फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, कोयल बोली दुनिया डोली। नासिक शहर से मोहम्मद आरिफ बहादुरपुरी लिख रहे हैं, और साथ ही में इन्होंने शुक्रिया भी हमें लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मैसेज हमें करने के लिए। अब्दुल गफर जी लिख रहे हैं, किसी भी गीत में हमें शामिल करें, आपकी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। नागचुन रोड संजय कॉलोनी से खांडवा से लिख रहे हैं अब्दुल गफर डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर जियाउल हक डावर भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी। और राजकुमार दोदी लिख रहे हैं, गांव फारसी ज़िला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी इन्हीं के साथ मैसेज हमें कर रहे हैं, कोई भी गीत ये सुनना चाहते हैं। सत्यानंद मंदूरकर जी लिख रहे हैं, प्रसारक जी की सेवा में नमस्कार। जी बिल्कुल, हमारा भी नमस्कार। चोर मचाई शोर फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, एक डाल पर तोता बोले, स्वर मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर। डबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सत्यानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, और धन्यवाद इन्होंने लिखा है। तो चलिए, इतने सारे लोगों के मैसेजेस हमने पढ़ लिए हैं, गाना सुनते हैं चोर मचाए शोर फिल्म का, एक डाल पर तोता बोले।

जी, हमारा श्रोताओं से अनुरोध रहेगा जो हमें फेसबुक पर मैसेजेस करते हैं वो हमें मेल ना करें, और जो मेल करते हैं वो फेसबुक पर मैसेजेस ना करें, क्योंकि गलती की संभावना तो होती ही है, क्योंकि कई बार हम सेम ही मैसेज दो बार पढ़ देते हैं। अगला मैसेज हम ले रहे हैं बबलेश पनवर जी का। आरजे जी को नमस्कार लिखा है और हमारा भी नमस्कार। फिल्म आया सावन झूम के इस फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं।

साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार अनिल बख्शी, पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब से ये लिख रहे हैं। गांधी चौक बाड़मेरा राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल। और अगला मैसेज हम ले रहे हैं वीरेंद्र भयान जी का। सप्रेम नमस्कार लिख रहे हैं, बिच्छू फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, प्यार तू दिल तू, आवाज़ विनोद राठौर की। जेवरा हिसार से वीरेंद्र भयान के साथ लिख रहे हैं सुरेंद्र भयान, शमशेर भयान, मनोज भयान। जसवीर सिंह लिख रहे हैं, आदरणीय प्रसारक महोदय जी सप्रेम नमस्कार, हमारा भी नमस्कार, बेताब फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, बादल यूं गरजता है सुनवाएं। धन्यवाद भी लिखा है डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा हमें ये मैसेज भेज रहे हैं। मोहम्मद यासिन अनजान जी लिख रहे हैं, पुरखलोस आदाब कबूल करें, बिल्कुल कबूल हमने कर ली है। महबूबा फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, मेरे नैना सावन भादो। दादा बाबू रोड गिरडी ही झारखंड से लिख रहे हैं साइमन नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज़, बेबी चाहत और सादिया, और साथ ही में शुक्रिया इन्होंने लिखा है। जकीर मंसूरी लिख रहे हैं, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता जी को नमस्कार, मेरा साया फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं आशा भोसले की आवाज़ में, झुमका गिरा रे, ये भी हमने गाना बिल्कुल सुनवा दिया था। और इसके बाद रामचंद्र मखीजा जी लिख रहे हैं, वंदे मातरम जी, बिल्कुल वंदे मातरम सभी को। बनियापारा धमतारी छत्तीसगढ़ राज्य से रामचंद्र मखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता मखीजा, बेबी स्वाति मखीजा, हीरा लाल, सुंदर लाल, घन शानी, माही पूजा, छुटकी, शरद कुमार डोडवानी और समस्त खमीजा कुटुंब सद लिख रहे हैं और सहृदय आभार ये हमें भेज रहे हैं लिख के। सप्रेम नमस्कार जोहार ये लिखने वाले हैं मुकेश गोस्वामी जी, इज्जत फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, ये दिल तुम बिन नहीं लगता, ये गाना बिल्कुल सुनवाएंगे। उच्च भट्टी विलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी के साथ लिख रहे हैं मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी। तो चलिए ये गाना सभी श्रोताओं की नज़र पेश करते हैं।

0: बहुत सारे श्रोताओं ने हमें मेल्स और मैसेजेस भेजे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों के मैसेजेस इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाए उनके लिए हम बहुत माफ़ी चाहते हैं। और फिर बिल्कुल निराश ना हो, अगली बार भी वो सोमवार और बुधवार के प्रोग्राम के लिए हमें फेसबुक पर मैसेजेस कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है musicmail@gmail.com।
1: है इस दुनिया में अपने भी।
0: उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। बहुत सारे लोगों के नाम हमने इस प्रोग्राम में शामिल करने की पूरी पूरी कोशिश की है और इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग रहा विपिन कुमार का, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह।
1: जाने
0: आज के प्रोग्राम में मैं थी आपके साथ पवन शर्मा। बस जाते जाते यही कहना चाहूंगी, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुनते रहें FM धर्मशाला।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 10 बजने के हैं और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों का कारवां। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अनुराधा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं फिल्म बरसात के इस गीत के साथ, जिसे गाया है कुमार सानू ने।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: कार्यक्रम गीतों का कारवां इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में फिल्म रंग का ये गीत। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक, कुमार सानू और नदीम श्रवण।

बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: अनजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों का कारवां, और कार्यक्रम का अगला गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में, फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों का कारवा। श्रोताओं, समय हो रहा है 10:30। आइए अब मिलकर सुनते हैं पहाड़ों के सुर।

श्रोताओं, कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आप सुन रहे थे देवी चंद और साथियों की आवाज़ में। आइए अब मिलकर सुनते हैं दुर्गा दत्त को अगले लोकगीत में।

अभी आपने सुना श्रुति कपूर को इस प्यारे से लोकगीत में। आइए श्रोताओं, अगला लोकगीत सुनते हैं ओम प्रकाश की आवाज में।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और सुनते हैं वर्षा कटोच की आवाज में ये अगला लोकगीत।

103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 11 बजने को हैं। आइए श्रोताओं, अब आकाशवाणी शिमला से सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र की आज 9वीं बैठक है। मॉनसून सत्र की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी, जिसमें विधायकों द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 3 अहम बिलों को सदन में विचार और पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे, जिनमें हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026, शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों व पैदल चलने वालों के लिए लोक सुरक्षा व सुविधा संशोधन विधेयक और माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। सदन में आज विधायक पवन कुमार काजल व चंद्रशेखर सड़क व पुल के निर्माण में हो रहे विलंब व बसों की कमी से लोगों को हो रही असुविधा पर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। सदन में नियम 130 के तहत रोजगार की गारंटी पर आगे चर्चा शुरू होगी, जिसका सरकार की तरफ से आज भी जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में स्थापित 150 CBSE स्कूलों में शिक्षकों की 3 बार उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की जाएगी, जिसके तहत स्कूल दिवस के दौरान 3 चरणों में सुबह स्कूल पहुंचने के समय, दोपहर लंच ब्रेक के दौरान और स्कूल से छुट्टी के समय उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। शिमला में शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इन CBSE स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए अलग अलग ड्रेस कोड निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड इस वर्ष 1 अक्टूबर से निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की स्कूल वर्दी के संबंध में निर्णय अगले 1 सप्ताह के भीतर लिया जाएगा। सिरमौर जिले के नाहन विधानसभा क्षेत्र के तहत वर्मा पापड़ी की रुण नदी में फंसे 2 लोगों का कल रात करीब 9 बजे

0: किया जा सका। करीब 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसके बाद दोनों लोगों को बचाया जा सका। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
1: राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध करवाना सशक्त, समृद्ध व विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है। हमीरपुर में एक से श्रेष्ठ पहल के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश की वास्तविक शक्ति उसके बच्चों में निहित है और सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि सहित भौगोलिक स्थिति से परे हर बच्चे को शिक्षा, कौशल और अपनी प्रतिभा निखारने के लिए पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस नीति से समग्र, समावेशी व ज्ञान आधारित शिक्षा व्यवस्था की दिशा में परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। कुल्लू शहर में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर सकारात्मक बदलाव सामने आया है। शहर की एमआरएफ साइट अब कचरे से मुक्त हो गई है, जिसके चलते लोगों को बढ़ती बीमारियों और बदबू से राहत मिली है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
2: बीते कई सालों से इस साइट के इर्द गिर्द रहने वाले लोग यहां से आती बदबू से काफी परेशान थे तथा सीनियर सिटीजन संस्था समेत अन्य कई लोगों ने कई बार ये मुद्दा प्रशासन के समक्ष भी उठाया था। वहीं नई नगर परिषद ने कार्यभार संभालते ही इस समस्या को सुलझाया तथा यही नहीं बल्कि पूरे शहर में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बेहतर दिशा देने का काम किया है। एमआरएफ साइट के कचरा मुक्त होने से शहर में स्वच्छता को लेकर सकारात्मक संदेश गया है तथा लोगों ने राहत की सांस ली है। नगर परिषद की प्रधान आशा ठाकुर का कहना है कि परिषद शहर में सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है तथा उन्होंने लोगों से अपने घरों और दुकानों से निकलने वाले कचरे का उचित निपटारा करने तथा शहर को साफ सुथरा रखने में सहयोग की अपील की है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
1: प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। मॉनसून की वर्षा के चलते प्रदेश में अभी भी कई सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध है, जिन्हें खोलने के प्रयास जारी है। इसके अलावा प्रभावित हुए बिजली ट्रांसफार्मर और पेयजल योजनाओं को भी बहाल करने का कार्य किया जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
3: एक 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब मिलकर सुनते हैं कव्वालियां।

कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आप सुन रहे हैं फिल्म बजरंगी भाईजान से, जिसमें आवाज दी है अदनान सामी ने।

0: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं हिना फिल्म में सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर को।

मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV

0: संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सिर्फ तुमसे ये कव्वाली। आइए अब मिलकर सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले एक सुंदर विचार। इसे भेजने वाले हैं माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और दीपक पटेल जी।
2: लिखते हैं, हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। बीते कल की चिंता छोड़कर आज को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि छोटी छोटी अच्छी कोशिशें ही बड़ी सफलता की राह बनाती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर और प्रेरणादायी संदेश के लिए। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: नोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर।
1: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी लिखते हैं,
2: खूबसूरत तस्वीरें नेगेटिव से तैयार होती हैं, वो भी अंधेरे में। इसलिए जब भी आपके जीवन में अंधकार नजर आए तो समझ लीजिए कि कोई आपके भविष्य की सुंदर सी तस्वीर का निर्माण कर रहा है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। लेकिन एक बार फिर से हमारा निवेदन है कि सुविचार जरूर भेजें, पर उससे कहीं अधिक कार्यक्रमों पर लिखें, प्रतिक्रिया भेजें और प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
2: एक बार ऐसा करके देखिए, सचमुच आपको बहुत आनंद आएगा।
1: जी हाँ, सच में बहुत आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए। तो श्रोताओं, ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। साथियों, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई मजेदार और प्रेरक अनूठी जानकारी। तो विमलेश जी, क्या है वो मजेदार अनूठी बात जो हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं?
2: अजीत जी, बात तो सचमुच बड़ी प्रेरक है। हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो बेशक सुनने में बहुत मामूली सी लगती है, लेकिन ये हमारे जीवन के दृष्टिकोण को बदल देने की क्षमता रखती है। तो श्रोता मित्रों, जरा कल्पना कीजिए कि किसी फैक्ट्री में एक मशीन

0: ने 20 या 30 वर्षों तक लगातार काम किया।
1: उस मशीन ने लाखों वस्तुएं बनाई, वस्तुएं बाजारों में गई, उनके कारण व्यवसाय हुआ, यानी उस मशीन ने हजारों परिवारों की रोजी रोटी में योगदान दिया। मगर अब वो पुरानी हो चुकी है और उसकी जगह नई मशीन आने वाली है
0: जी।
1: आप कहेंगे ये ठीक भी है क्योंकि बदलती तकनीक के साथ मशीनें तो बदलती हैं।
0: श्रोताओं, ऐसा अक्सर होता है ना कि कई जगहों पर पुरानी मशीन को कबाड़ समझकर हटा दिया जाता है। आज हम बात करेंगे जापान में प्रचलित एक अनूठी संस्कृति के बारे में। जापान में कुछ कंपनियां और कर्मचारी उस पुरानी मशीन को हटाने या रिटायर करने से पहले खास काम करते हैं।
1: श्रोताओं, हटाए जाने से पहले उस दिन वहां के कर्मचारी मशीन के पास जमा होते हैं
0: जी।
1: वे याद करते हैं कि किस प्रकार इस मशीन ने उनका परिवार चलाया, रोजी रोटी चलाई और बच्चों को पाला। वे याद करते हैं कि किस प्रकार उस मशीन ने देश की अर्थव्यवस्था और उस देश की प्रगति में योगदान दिया।
0: थोड़ी देर वे इस बात पर भी कृतज्ञता से चर्चा करते हैं, फिर वे मशीन के सामने खड़े होकर सर झुकाते हैं और उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वे कुछ क्षण रुकते हैं और कहते हैं,
1: धन्यवाद, तुमने वर्षों तक हमारा साथ दिया, तुमने पेट पालने में हमारी सहायता की। श्रोताओं, आपको विशेष रूप से बता दें कि ऐसा करना कोई सरकारी नियम नहीं है
0: जी।
1: लेकिन यह जापान में मशीनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की संस्कृति का हिस्सा है।
0: साथियों, ये बात बहुत गहरा चिंतन और दृष्टिकोण लेकर हमारे सामने आती है। आइए जरा हम सब सोचें, अगर एक निर्जीव मशीन के प्रति इतना सम्मान हो सकता है तो उन जीवित लोगों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन में कभी न कभी योगदान दिया है।
1: जी हाँ श्रोताओ, क्या हमने कभी अपने स्कूल के उस शिक्षक को धन्यवाद के साथ याद किया जिसने कभी हमें पढ़ाया था?
0: जी,
1: माता पिता भी इस सूची में शामिल होते हैं। श्रोताओ, कड़वी सच्चाई तो ये है कि हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो चुपचाप हमारी जिंदगी को आसान बनाते रहते हैं
0: जी।
1: और महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, हम उनके प्रति कई बार कृतज्ञ नहीं रह पाते।
0: जी हाँ श्रोताओ, कृतज्ञता केवल धन्यवाद कह देना ही नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है। ये स्वीकार करना है कि मेरी सफलता समृद्धि में अनेक लोगों का योगदान है।
1: जी श्रोताओ, एक बात और, आइए जरा अपने घर के चारों ओर नजर दौड़ाकर देखें। वो पुरानी कुर्सी, वो पुरानी टेबल, शायद वो हमारा पुराना कंप्यूटर
0: जी,
1: शायद वो पुरानी किताब जिसने हमें अपने जीवन का रास्ता दिखाया, क्या वे सभी हमारी आभार के पात्र नहीं है? वे सभी हमारे आभार के पात्र हैं। इस्तेमाल की हुई वस्तुएं भी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, मशीनों को रिटायर करने की जापान की ये छोटी सी प्यारी सी परंपरा हमें याद दिलाती है कि जिन निर्जीव वस्तुओं से हमारा जीवन चलता है उन्हें हमेशा सम्मान मिलना ही चाहिए।
1: तो श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि यदि आपके जीवन में कोई पुरानी वस्तु जो अब उपयोग में नहीं आने वाली है तो उसे भी सम्मान पूर्वक विदा कीजिए
0: जी,
1: क्योंकि उसने भी कभी न कभी आपकी सेवा की है।
0: याद रखिए, महानता इस बात में नहीं कि हमारे पास कितना है, महानता इस बात में है कि जो कुछ हमारे पास रहा है उसके प्रति हम कितने आभारी हैं।
1: श्रोताओ, हमारे देश में भी मशीनों का सम्मान विशेष अवसरों और त्योहारों पर किया जाता है जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।
0: जी, आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
1: और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्यपुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए, वहाँ आपको कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
0: जी, तो प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम द स्मार्ट मंकी।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया है और बताया गया है कि कूड़ा इधर उधर न फेंकना और उसका उचित स्थान पर निपटान करना हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: CIET NCERT presents द प्रोग्राम द स्मार्ट मंकी।

0: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। और उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
1: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए सुनते हैं एक और कार्यक्रम, शीर्षक है कालीबाई बंगा।
3: ये कार्यक्रम राजस्थान की वीर बालिका कालीबाई बंगा के बारे में जानकारी देते हुए उल्लेख करता है कि किस प्रकार उसने भारत के स्वाधीनता के आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाया और अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते हुए अपना जीवन भारत माता के लिए उत्सर्ग कर दिया।
4: नमस्कार साथियों।
5: मेरा भी नमस्कार।
4: साथियों, राजस्थान की भूमि रण बांकुरों की भूमि है। यहाँ की माटी ने बहुत से वीरों, वीरांगनाओं और शहीदों को जन्म दिया है। आज हम सुनने जा रहे हैं इसी राजस्थान की भूमि की एक वीर गाथा।
5: तो आइए चलते हैं सन 1947 के पहले के राजस्थान के डूंगरपुर जिले में और पलटते हैं वहाँ के समृद्ध इतिहास के गौरवशाली पन्नों को।
4: और जब उन पन्नों को हम पलटते चले जाएंगे तो हमारी उंगलियां ठहर जाएंगी बहुत से सुनहरे पन्नों के बीच एक ऐसे पन्ने पर, जिस पर लिखी है एक बालिका के रक्त रंजित जीवन उत्सर्ग और बलिदान की गौरव गाथा।
5: आप पूछेंगे कौन थी ये बालिका, क्या है इसका परिचय, ऐसा क्या किया था इसने कि आज पूरा राष्ट्र उसे सम्मान के साथ याद करता है, क्या है इसका नाम जिसकी कीर्ति में आज अरावली की पहाड़ियों में लोकगीत गूंजते हैं और कृतज्ञ राष्ट्र उसे श्रद्धा के साथ नमन करता है।
4: तो चलिए हम बताए देते हैं, वह बालिका थी कालीबाई कलसुआ, जिसकी उम्र थी 13 वर्ष। कालीबाई कलसुआ भील जनजाति की बालिका थी।
5: आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले का एक गांव है रास्तापाल। भारत की आजादी के पहले तक यहां कोई सरकारी स्कूल नहीं था, लेकिन एक सामुदायिक स्कूल जरूर था जिसे स्थानीय प्रजामंडल चलाता था।
4: इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी, और इन्हीं बालिकाओं में से एक थी कालीबाई कलसुआ। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खाट, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे।
5: इसी पाठशाला में एक शिक्षक थे श्री सेंगा भाई रोत, जो पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाते थे। शिक्षक सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों के बारे में बताते थे तो कभी उन अंग्रेजों के चाटुकार अत्याचारी सामंतों की कहानी सुनाते थे।
4: ये बात उन दिनों की है जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था।
6: अंग्रेजों, भारत छोड़ो, अंग्रेजों, भारत छोड़ो, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
4: आजादी की उत्कंठा सारे देश में हिलोरें ले रही थी, तो भला राजस्थान इसमें पीछे क्यों रहता। डूंगरपुर का प्रजामंडल इन पाठशालाओं

0: की मदद से आजादी का विचार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा था। शिक्षक श्री सेंगाभाई रोत बच्चों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर रहे थे।
1: कालीबाई इन कहानियों को ध्यान से सुनती थी। सुनते सुनते उसका खून खौल उठता था। सेंगाभाई उनके लिए परम आदरणीय थे। कालीबाई अपने गुरु की परम भक्त थी। जैसा कि हमने सुना था कि इस विद्यालय का संचालन प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता था। प्रजामंडल के सदस्य नहीं चाहते थे कि इस विद्यालय में अंग्रेजों के विरुद्ध बात हो और देश प्रेम की चर्चा हो।
0: प्रजामंडल के सदस्य चाहते थे कि इस विद्यालय को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस विद्यालय में देश प्रेम की चर्चा होती थी। प्रजामंडल के लोगों ने पाठशाला बंद करवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में पाठशाला के संरक्षक नाना भाई भी उपस्थित थे। नाना भाई ने इस बैठक में प्रण किया कि मैं किसी भी हाल में अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा।
1: वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना जगे। परंतु ये बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। वो नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रचार हो।
0: नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को समझाया और समझाने के परिणाम स्वरूप एक भी व्यक्ति ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो वो जागीरदार झल्ला उठा। उसने सारी घटना नमक मिर्च लगाकर सामंत को कह डाली।
1: और जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल गांव की पाठशाला बंद नहीं की गई, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने के लिए वहां आ पहुंचे।
0: वो दिन था 19 जून 1947 का। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत में गई हुई थी।
1: पाठशाला में उस समय नाना भाई और सेंगा भाई दोनों उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने नाना भाई और सेंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दे दो। इस पर सेंगा भाई ने बड़ी नम्रता के साथ कहा,
0: न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं। बच्चों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है, आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं? यह तो बच्चों के साथ अन्याय है।
1: जिला न्यायाधीश ये बात सुनकर आग बबूला हो गए और बोले,
2: तुम मुझे न्याय की सीख दे रहे हो? अपनी औकात पहले देखो। अभी बताता हूँ तुमको, सिपाहियों इसे ट्रक से बांधकर घसीटो।
1: इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले,
0: साहब ये पाठशाला तो प्रजामंडल के आदेश से ही तो चल रही है, आपके आदेश से नहीं। हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे बच्चों का ही भला होगा।
1: पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर भला कैसे सहन कर पाता। वो क्रोध से आग बबूला हो गया। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े और उन्होंने नाना भाई की जमकर पिटाई की।
0: इससे वे बुरी तरह घायल हो गए और इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह देखा नहीं गया, वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे।
1: किसी तरह नाना भाई उठे और सेंगा भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की,
0: लेकिन तभी उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे।
1: उनके प्राण पखेरु उड़ गए।
0: उधर सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था।
1: धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव और आसपास के गांवों में फैल गई।
0: पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन

0: हर कोई बेबस था। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर सेंगा भाई को बचा सके।
1: कालीबाई उस समय खेत से पशु चारा के लिए घास काटकर आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था, उसके हाथ में हसिया था।
0: जब उसने अपने गुरुजी सेंगा भाई को ट्रक द्वारा घसीटे जाते देखा तो उससे ऐसा देखा नहीं गया। उसने आओ देखा ना ताओ घास का गट्ठर वहीं जमीन पर डालकर उसने ललकार कर कहा,
1: ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहां ले जा रहे हो।
0: ये कहते हुए कालीबाई बिजली की गति से उस ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हसिये से एक झटके से काट दिया।
1: सेंगा भाई मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस सिपाहियों ने कालीबाई को उसी समय गोलियों से भून दिया।
0: उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भाग कर आई, उन पर भी निर्मम पुलिस ने लाठियां बरसाई।
1: एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ लहू से लथपथ कालीबाई।
0: थोड़ी देर में अरावली की पहाड़ियों में भील जनजाति के लोगों द्वारा शोक प्रकट करने का मारू ढोल गूंज उठा। भारी भीड़ जमा होने लगी, लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा, मरो या मारो वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। इस विकट स्थिति को समझकर कातिल वहां से भाग खड़े हुए
1: और बेहद जख्मी हालत में कालीबाई को डूंगरपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
0: लगभग 40 घंटे बेहोश रहने के बाद 20 जून 1947 को राजस्थान की इस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, लेकिन अपने गुरुजी को बचाकर उसने अपनी अखंड गुरु भक्ति का परिचय तो दिया ही,
1: साथ ही उसने जनजातीय लोगों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में आजादी की मशाल जला दी।
0: आज भी रास्तापाल गांव में कालीबाई की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है और वहीं के एक पार्क में कालीबाई की मूर्ति भी लगी हुई है।
1: राष्ट्र इस त्याग की प्रतिमूर्ति नन्ही आदिवासी वीरांगना कालीबाई को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
0: कालीबाई, तुम्हें हमारा
1: सलाम।
2: कालीबाई भारत की एक जनजातीय वीरांगना। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण जगबंधु जाना,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
4: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम कालीबाई बंगा।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और अब हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, क्योंकि उमंग कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, कुसुमलता, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर।
4: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
5: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। हाजिर हैं फिल्म संगीत के इस सुहाने सफर के साथ और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अनुराधा। श्रोताओं, कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं फिल्म शक्ति के इस गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

सैनिक भाइयों कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए फिल्म ईमान धर्म का ये गीत। गायक कलाकार हैं आशा भोंसले, महेंद्र कपूर और मुकेश, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

सैनिक भाइयों कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म परवाना का ये गीत। संगीतकार हैं मदन मोहन और गीतकार कैफी आसमी।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सत्ते पे सत्ता का ये गीत। भूपेंद्र सिंह, किशोर कुमार, आशा भोंसले, सपन चक्रवर्ती और आर डी बर्मन की आवाज़ों में।

दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, गौर से देखा जाए तो बस है पते पे पता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता।

0: कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता,
1: कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता।
2: दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, और से देखा जाए तो बच्चे पे पत्ता,
1: कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता।

अकेले कोई फर्क नहीं, अलबत्ता

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुनो सखी।

श्रोता सखियों, आप सभी को प्रवेश की प्यार भरी नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम सुनो सखी में। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम करते हैं आपसे दिल की बातें, बातें आपके घर की, आपके परिवार की, आपकी खुशियों की और सबसे बढ़कर आपकी सेहत की। सखियों, हमारी ज़िंदगी कितनी भागदौड़ भरी हो गई है ना। सुबह आँख खुलते ही घर परिवार की जिम्मेदारियाँ हमारा इंतज़ार कर रही होती हैं। बच्चों का नाश्ता, घर का काम, परिवार की ज़रूरतें, सबका ध्यान रखते रखते कई बार हम खुद के लिए तो समय निकालना ही भूल जाती हैं। लेकिन सखियों, आज ज़रा ठहर कर अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या हम अपने शरीर को वो पोषण दे रही हैं जिसकी उसे सच में ज़रूरत है। सखियों, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता। खाना हमारे शरीर की ऊर्जा है, हमारी ताकत है और हमारे स्वस्थ जीवन की बुनियाद भी है। और साथ ही जब भोजन में शरीर के लिए जितने भी ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं वो भी सही मात्रा में शामिल हों तो तभी सही मायने में जो है संतुलित आहार कहा जाता है। सखियों, लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है और ये सप्ताह हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य केवल दवाइयों से नहीं बल्कि हमारे रोज के खान पान से भी जुड़ा हुआ है। सखियों, हमारे रसोई में ऐसी कितनी ही चीज़ें मौजूद हैं जो स्वाद के साथ साथ पोषण से भी भरपूर होती हैं। दालें, चना, राजमा, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, दही, मोटे अनाज और दूसरे जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, अगर इन्हें सही मात्रा में और सही तरीके से हम अपने भोजन में शामिल करें तो हमारी थाली और हमारा स्वास्थ्य दोनों ही बेहतर हो सकता है। और सखियों, पोषण की ज़रूरत सिर्फ बच्चों को ही नहीं होती, हर उम्र और हर व्यक्ति के लिए संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है, खासकर महिलाओं के लिए जो पूरे परिवार की सेहत का ध्यान रखती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि परिवार की थाली सजाते समय अपनी थाली को अंदर नज़रअंदाज जो है ना

आपको हरगिज़ भी नहीं करना है। तो आइए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के इस अवसर पर हम एक छोटी सी शुरुआत करें, अपनी थाली को थोड़ा और संतुलित बनाएं, खाने में विविधताएं लाएं और स्वाद के साथ पोषण को भी महत्व दें। क्योंकि सखियों, खुश रहने के लिए सिर्फ मुस्कुराहट जरूरी नहीं है, शरीर का स्वस्थ होना भी जरूरी है। तो इन्हीं खूबसूरत बातों के साथ अब करते हैं आपका मनोरंजन एक मधुर से गीत के साथ। गीत के बाद होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: एक बार फिर से स्वागत है श्रोता सखियों का हमारे आज के अंक सुनो सखी में। सखियों, जरा आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखिए। क्या आपको लगता है कि सुंदर दिखने के लिए सिर्फ महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट, महंगे फेशियल और ढेर सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही काफ़ी हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की हमारी बातचीत के लिए एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी सीख मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि असली सुंदरता केवल चेहरे पर नहीं होती, असली सुंदरता उस चेहरे की चमक में होती है जो अंदर से स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन से आती है। और इसीलिए आज सुनो सखी में हम बात करेंगे सुंदर और स्वस्थ दिखने के लिए ले पौष्टिक आहार पर। सखियों, हम अक्सर कहते हैं कि चेहरा बुझा बुझा क्यों लग रहा है, बाल इतने रूखे क्यों हो गए हैं, त्वचा पर चमक क्यों नहीं आ रही, हर समय थकान क्यों महसूस होती है। इन सवालों का जवाब कई बार हमारे भोजन की थाली में छिपा होता है। हमारे शरीर को सिर्फ पेट भरने के लिए खाना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा भोजन चाहिए जो शरीर को ऊर्जा दे, त्वचा को पोषण दे, बालों को मजबूती दे और हमें अंदर से स्वस्थ बनाए। यानी सुंदर दिखने की शुरुआत हमारी रसोई से ही होती है। तो सखियों, सबसे पहले बात करते हैं उस थाली की जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ चेहरे पर भी प्राकृतिक निखार ला सकती है। हमारे भोजन

0: में हरी पत्तेदार सब्जियों को ज़रूर शामिल करें, यह हमारे शरीर को पोषण से भर देती हैं। कच्ची सब्जियां और सभी फ्रूट्स भी जो हैं वो हमारी डाइट को पौष्टिक बनाते हैं। तो इसलिए सखियों, शरीर को मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप दालें, दूध, दही, पनीर या और भी जिससे भी आपको प्रोटीन मिल सके वो अपने खाने में ज़रूर ही शामिल करें। सखियों, एक बात हमेशा याद रखें, स्वस्थ शरीर ही सुंदरता की पहली सीढ़ी होती है। अगर शरीर स्वस्थ है तो चेहरे पर अपने आप रौनक दिखाई देती है। और अब हम आते हैं पानी पर। कई बार हम काम में इतने बिजी हो जाते हैं ना सखियों कि पानी पीना भूल ही जाती हैं, लेकिन पानी शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए प्यास लगने का आप इंतज़ार मत करें, दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहें। और हाँ, चाय, कॉफ़ी या जो भी ये मीठे पेय पदार्थ होते हैं ना, उन्हें आप पानी का विकल्प हरगिज़ ना समझें। सखियों, सिर्फ भोजन में क्या शामिल करना है यही ज़रूरी नहीं है, क्या कम करना है ये भी उतना ही ज़रूरी है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा तला भुना, ज़्यादा नमकीन या अत्यधिक मीठा या फिर बार बार जंक फूड को भी आप अवॉइड करें। आप अपने पसंद का खा सकते हैं लेकिन बैलेंस बनाकर। सखियों, पौष्टिक आहार के साथ पर्याप्त नींद पी लें। और एक खूबसूरत बात, तनाव यानी स्ट्रेस भी आपकी सेहत और चेहरे की रौनक पर असर डाल सकती है। इसलिए अपने लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें, मनपसंद संगीत सुने, परिवार के साथ हंसिए, दोस्तों के साथ बातें कीजिए, योगा करें, बुक्स पढ़ें। याद रखिए, जिस चेहरे पर सुकून होता है उस चेहरे की खूबसूरती जो है वो अलग ही नज़र आती है। सखियों, खूबसूरत दिखना अच्छी बात है, लेकिन स्वस्थ रहकर खूबसूरत दिखना उससे भी बेहतर होता है। जी हाँ सखियों, आपकी सबसे खूबसूरत पहचान है आपकी स्वस्थ मुस्कान। श्रोताओं, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: इतनी रात में SMS, KYC अपडेट कीजिए, नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
2: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: सखियों, ब्रेक से पहले हमने बात की सुंदर और स्वस्थ दिखने के लिए ले पौष्टिक आहार पर। अब बात करते हैं विश्व नारियल दिवस की। श्रोताओं, नारियल एक ऐसा फल है जिसे प्रकृति का अनमोल उपहार कहा जाता है, तो शायद ये कहना भाई गलत भी नहीं होगा। ऊपर से सख्त लेकिन अंदर से मीठा और गुणों से भरपूर नारियल हमारे खान पान से लेकर सौंदर्य और स्वास्थ्य तक हर जगह अपनी खास पहचान रखता है। नारियल पानी शरीर को ताजगी देता है। तो सखियों, नारियल पानी से लेकर गिरी तेल तक हर हिस्सा अपने आप में उपयोगी होता है, और यही वजह है कि नारियल को यूं ही प्रकृति का कल्पवृक्ष नहीं कहा जाता। इसके फल का शायद ही कोई हिस्सा हो जिसका यूज़ ना किया जाता हो। तो विश्व नारियल दिवस पर आइए इस बहुगुणी फल को सिर्फ खाने की चीज़ ना समझे, बल्कि प्रकृति की उस खूबसूरत देन के रूप में देखें जो हमारी सेहत और सौंदर्य के साथ जुड़ा हुआ है और खूबसूरती को चार चांद लगाती है आपकी ये प्यारी सी मुस्कान। तो आइए अब मिलकर मुस्कुराते हैं और सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: इतनी रात में SMS? KYC अपडेट कीजिए, नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
1: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सखियों गीत को गुनगुनाते हुए पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में, जहां बात होती है खाने खजाने की। तो क्यों ना आज बनाया जाए ऐसा सलाद जो देखने में रंग बिरंगा, खाने में चटपटा और सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हो। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं अंकुरित मूंग दाल का स्वादिष्ट सलाद। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप अंकुरित मूंग दाल, 1 छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 छोटा खीरा बारीक कटा हुआ, 1 छोटा प्याज वो भी बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा धनिया, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 नींबू, नमक आप स्वाद अनुसार ले सकती हैं, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, और हाँ, इसमें आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब इसे बनाने की विधि सुनिए। सबसे पहले अंकुरित मूंग दाल को अच्छी तरह से धो लें। अब सखियों, इसमें कटे हुए टमाटर, खीरा, प्याज, हरी धनिया, इन सबको डाल दें। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक, भुना जीरा और थोड़ा सा चाट मसाला डालकर इसे फिर से मिला लें। आखिर में डालें नींबू का ताज़ा रस और एक बार फिर से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। बस तैयार है हमारा चटपटा और स्वादिष्ट अंकुरित मूंग का सलाद। सखियों, इसे आप नाश्ते में या फिर शाम के हल्के खाने में ले सकती हैं। अंकुरित मूंग दाल प्रोटीन और फाइबर का एक बढ़िया सोर्स है। अगर आप चाहें तो इसमें कच्ची सब्जियां भी यूज़ की जा सकती हैं। तो अब अगर अगली बार मन करे कुछ लाइट और टेस्टी के साथ हेल्दी खाने का, तो बाज़ार के पैकेट वाले स्नैक्स की जगह याद रखिएगा 1 कटोरी अंकुरित मूंग दाल का सलाद। फिलहाल सखियों, समय है आपको चलते चलते एक और गीत सुनवाने का।

तो सखियों, इसी प्यारे से गीत के साथ आज के सुनो सखी कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाज़त। कार्यक्रम को आपके रेडियो सेट तक पहुंचाने में हमें सहयोग दिया विपिन कुमार ने, प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह। फिर होगी मुलाकात एक नए विषय, नई जानकारी और ढेर सारी प्यारी बातों के साथ। प्रवेश को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर का 1 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और 1:05 पर
1: समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में वर्तमान 7-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्डिस दोम्ब्रोस्किस से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। भारत का 5वां विमान आज राहत और बचाव सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में 11 सदस्यों के बचाव दल, विशेष उपकरणों और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव मदद कर रहा है। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ प्रभावित 11 पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े 983 लापता लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के 3रे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने का आह्वान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
2: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को

0: जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
1: प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टा

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1% की गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 76,396 पर, जबकि निफ्टी 203 अंक गिरकर 23,852 पर पहुंच गया। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। उधर बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दुश्मन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हमारे साथी कह रहे हैं कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। हालांकि इस गीत के बारे में देखते हैं ये गीत आपकी और हमारी लिस्ट में मैच करता है या नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है। और हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि धन तो माया ही है जो हमारे ध्यान के पथ से भटकाते हुए संसार में बांधे रखने का कार्य करते हुए अपने गुणित अनुपात में बढ़ता ही जाता है। प्रक्रिया धन के वास्तविक स्वरूप के कारण ही संभव है, लेकिन अब देखना ये होता है कि हम धन के इस गुणित अनुपात को धन या ध्यान के क्षेत्र में विकसित कर रहे हैं क्या। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि धन जीवन की सांसें चलाने के लिए ज़रूरी तो है, पर दिल को मुस्कुराने की वजह सिर्फ वही दे ये मुमकिन नहीं। सिक्कों की खनक जेब को तो भारी कर सकती है, लेकिन आत्मा की खाली जगह को नहीं भर सकती। असली खुशी किसी तिजोरी की मोहताज नहीं, वो तो मन के किसी सुकून भरे कोने में रिश्तों की गर्मजोशी और एक सादे पल में चुपके से मुस्कुरा देती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मालिक इतना दीजिए, उन्होंने वो बात याद की है, मालिक माई साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये एक बहुत ही अच्छी बात है और ध्यान में रखने वाली बात है कि इतना धन तो ज़रूर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए कि वो किसी के आदर सत्कार कर सके और ख़ुद भी खा सके। लेकिन बहुत ज़्यादा की बात सोचना, वहाँ हम ये सोच सकते हैं कि एक अलग तरह का लालच अपने मन में ना लाएं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं, अलग अलग बातें हमारे साथी हमें बता रहे हैं। और हमारे साथियों का कहना है कि आज की बात, बिना मनी के यानी कि बिना धन के तो कोई जीवन नहीं है, लेकिन सब चीज़ों को एक संतुलन बनाए रखा जा सकता है, ऐसा इनका कहना है। और इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ये विश्व नारियल दिवस के मौके पर ये तो नारियल पानी पी रहे हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि धन संपत्ति को ध्यान में रखकर जो रिश्ते बनाए जाते हैं वो रिश्ते ज़्यादा टिक नहीं पाते, जब तक दमड़ी तब तक ही है संगी साथी। तो इस तरह से बात नहीं होनी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम तो बस इतना ही कहेंगे, पैसा इतना ज़रूर हो कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाए और कभी किसी का काम भी आ सके। ज़्यादा की चाहना रखी ही नहीं, ना ही फिर भी परमात्मा ने सब कुछ दिया है। असली धन दौलत तो परिवार होता है, दोस्त होते हैं और कुछ अपनों का साथ होता है, और सबसे बड़ा ईश्वर का हाथ, गुरु का हाथ हमारे सिर पर होता है और एक सच्चा साथी विविध भारती। अब देखो ना, इसमें कोई बहुत दिन तक नहीं आता तो उसको याद करते हैं, और अगर नहीं सुन पाते तो बेचैनी सी लगती है, पर आज कब से लग रहा था हमने इबारत ही नहीं देखी। तो ये भी किसी दौलत से कम नहीं, वाकई ये दौलत भी, आप लोगों का जो ये प्यार है वो तो किसी भी दौलत से अनमोल है हमारे लिए। और आपका ये प्यार हमें मिलता ही रहता है, विविध भारती को मिलता रहता है पूरे वक्त। हमारे बहुत से साथी हैं वो अलग अलग बातें लिख रहे हैं। और हमारे एक साथी ने उस गीत को जो शुरुआत में हमने गीत सुनवाया था काला बाजार का, उसमें कहा कि गीता दत्त की आवाज़ तो उन्हें पहचान आ रही है, दूसरी आवाज़ पहचान नहीं आ रही, पर हमारे दूसरे साथियों ने तो ये जवाब दे दिया था। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि तिजोरियां तो भर गई पर रूह भूखी रह गई, सच्ची खुशी तो मन के भीतर ही कहीं सोई रह गई। मन भागता है उम्र भर जिस मृग तृष्णा के पीछे।

सुख नहीं बस इच्छाओं का एक अंतहीन सिसकन है। तो बातें तो बड़ी हो गई, लेकिन कभी कभी तो ऐसा मन में आता है कि लॉटरी लग जाए हमारी और ढेर सारे पैसे एक साथ हमारे पास आ जाएं। क्या आपको भी ऐसा लगता है, हमें बताइए। और क्या कभी आपको इस तरह से कोई धन मिला जब आपको लगा कि भई ये तो बोनस हो गया, इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था, हमें बताइए। और बताइए कि किस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं।

चोरी चोरी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। और हम आपसे ये पूछ रहे थे कि क्या आपकी कभी लॉटरी लगी, तो ऐसा कोई कमेंट अब तक तो हमारे सामने नहीं आया। और अगर कभी लॉटरी लगी या

ये ऐसा लगा कि किसी तरह से बहुत सारे पैसे मिल जाएं। अगर मिल जाएं तो क्या करेंगे आप, ये भी हमें बताइएगा। ये तो ठीक है कि पैसों पर लालच नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें तो अपनी जगह सही हैं, लेकिन सोचने में क्या जाता है? अगर आप सोचें कि आपके हाथ लग जाए ढेर सारा पैसा, बहुत सारा नहीं, लाखों ना सही, हजारों में ही लग जाए मान लीजिए, तो क्या करेंगे आप? जितना आप चाहते हैं कुछ अगर मिल जाए तो क्या करेंगे आप, हमें बताइएगा। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ज़िंदगी की ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती, एक चीज़ मिलती है तो दूसरी की चाह जाग जाती है, कभी कभी थोड़ा सा धन, थोड़ा सा अपनापन और ढेर सारा संतोष ही ज़िंदगी को खूबसूरत बना देता है, लेकिन धन दौलत के बिना मान सम्मान सुख सुविधा नहीं होती है, इसलिए धन दौलत बहुत कमाना चाहिए, दौलत के पीछे इतना भी नहीं दौड़ना चाहिए कि खुशियों को दांव पर लगाना पड़े, दोनों का संतुलन जरूरी है। मन में हमेशा तो यही गीत चलते रहता है कि मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, यानी कि ये एक संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम ये सोचें कि नहीं धन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, हमें कमाने की इस तरह से ज़रूरत नहीं है, जो भी मिल रहा है छोटा मोटा उस पर हम संतोष करें, तो ये भी एक मुश्किल घड़ी पैदा कर सकता है। तो अपनी आवश्यकता अनुसार तो कमाने की कोशिश करना ही चाहिए और साथ ही साथ कुछ बचत भी करें, और ऐसा ना करें कि हर वक्त धन के पीछे भागें, लेकिन कहीं ना कहीं एक संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है, जो हमारे साथी ने कहा। हमारे एक साथी कह रहे हैं, उन्होंने अंग्रेज़ी में अपना कमेंट लिखा है जिसे हम हिंदी में पढ़कर आपको सुना रहे हैं। उन्हें कहा कि सभी को अपने अंदर बचत करने की आदत डालनी चाहिए। मेरे भाई, मेरे माता पिता ने मुझे एक, हमें एक गुल्लक लाकर दिया था दोनों के लिए, और जो भी पैसे हमें मिलते थे गिफ्ट में, जो भी लोग आते थे या त्योहारों के समय जो भी पैसे मिला करते थे, उसे हम इसमें जमा करते थे और कुछ समय के बाद उसे खोलते थे। वो जब भी खोलते थे तो हम देखते थे कि उसका क्या परिणाम होता है। तो जब भी जो बचत का परिणाम देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है और ऐसा लगता है कि और भी बचाना चाहिए। वहीं हमारे का साथी कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी अमीरी बैंक खातों में जमा अंकों से नहीं बल्कि मन के संतोष से तय होती है। संत कबीरदास जी का ये दोहा केवल दो पंक्तियां नहीं बल्कि इंसानियत, करुणा और मर्यादा का सबसे खूबसूरत आईना है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चाणक्य की नीति के अनुसार कह सकते हैं कि पुस्तकस्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या ना तद्धनम। सरल हिंदी अर्थ है, विद्या यदि केवल पुस्तकों में रखी रहे यानी कंठस्थ ना हो तो उपयोग में ना लाई जाए, और धन यदि दूसरों के हाथों में चला जाए तो ज़रूरत पड़ने पर ना वो विद्या किसी काम की रहती है ना ही वो धन। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैसे की कमी के कारण मुझे कॉलेज पढ़ाई के दौरान ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था। मुझे याद है पहले ट्यूशन 1978 में 10 रुपये माह में शुरू कर दिया था। उच्च शिक्षा तो नहीं पा सका किंतु बच्चों को उच्च शिक्षित कर इंजीनियर बनाकर वो सपना पूरा किया। तो कई बार हमें इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, पर यकीन मानिए जब हम ऐसे अपने पैसे खुद कमाते हैं, अपनी पढ़ाई खुद करते हैं, तो जो आत्मविश्वास हमारे अंदर आता है वो एक अलग किस्म का आत्मविश्वास होता है जो सभी के पास नहीं होता। तो अब हमारे साथी ने चाय पर भी एक कहानी लिख भेजी है, लेकिन फिलहाल हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत, और इसको किस फिल्म से हमने लिया ये बताइएगा, क्योंकि जिस फिल्म का जो नाम है उस पर भी बात करेंगे हम इस गीत के बाद।

कर्ज। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और हमने कहा था कि इस फिल्म के नाम से कुछ तो बात करनी है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जब पैसे कम होते हैं और ज़रूरत नहीं भी होती है तो भी बहुत से लोगों की आदत होती है कि कर्ज लेकर, उधार लेकर अपने मतलब बहुत ही अच्छी तरह से जीवन जीते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं। उन्हें परवाह नहीं होती कि जितने पैसे हैं उसके हिसाब से वो खर्च करें। तो उधार लेने की आदत तो बड़ी ही ख़तरनाक होती है, ऐसा कहा जाता है। और उधार देने की आदत में भी कई बार हम फंस जाते हैं। तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ हो तो आप हमें बता सकते हैं कि कर्ज आपने दिया हो और उसे वसूलना बड़ा मुश्किल हुआ हो, या आप कभी खुद कर्ज लिए हों और आपको देना मुश्किल पड़ा हो। वैसे हमारी एक साथी ने चाय की कहानी लिखी है कि एक महाशय रोज अपने दोस्त से घर पर चाय पी लेते, ठीक चाय के समय आते, बेचारे शिष्टाचार वश उन्हें चाय भी देते। रोज उन्होंने अपनी आदत बना ली। एक दिन चाय पत्ती चीनी में कुछ कमी थी, चाय थोड़ी बनी थी और पत्नी खींची हुई थी। उसमें धीरे से अपने पति को बुलाकर चाय पिला दी और परिवार के सदस्य बारी बारी से उठकर अंदर जाकर चाय पी लिए थे और पीकर बाहर आ जाते तो महानुभाव समझ गए कि आज चाय मिलने के आसार नहीं है। वो भी उतने ही ढीठ बोले, भाभी जी मुझे भी भीतर से बुलाकर कुछ बातें कर लीजिए, तो बातें पूछ लीजिए। तो वो शर्मा गई और उन्हें पता चल गया कि भाई इन्हें तो चाय पिलानी ही पड़ेगी। तो कई बार ऐसे भी हो जाता है। हमारे साथी कह रहे हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है मगर पैसा बहुत कुछ है। वहीं एक साथी का कहना है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, यही आशा, इसी आशा से अपने मन को संतुष्ट कर लेता हूं, क्योंकि धन से तो कभी मन संतुष्ट नहीं होता। जितना धन होता होगा उतनी बेचैनी होती है। सुकून उसी में है जो उसके पास है, उसमें ही उसे खुश रहना चाहिए। छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना ही सुकून का सबसे बड़ा धन माना जाता है। तो वाकई एक सुकून का धन तो एक अलग ही चीज़ होती है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि पैसा कम हो तो दिक्कत, ज़्यादा हो तो और दिक्कत, बस मन में संतुष्टि होनी चाहिए और कोई अंत नहीं है इस चीज़ का, बस खुशी भरा अपनों का साथ होना चाहिए। और एक साथी कह रहे हैं कि आध्यात्मिक रूप से भले ही धन को माया या मिथ्या कहा जाए लेकिन सांसारिक धरातल पर ये बहुत ज़रूरी है। मन, मैं तो संतोषी लेडी हूँ, ऐसा हमारे एक साथी कह रही हैं कि पैसे आज के टाइम पर बहुत ज़रूरी हैं। हम तो पूरी

बचत करते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ खर्च करते हैं, पैसा कमाना मुश्किल भी है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि महमूद जी की फिल्म सबसे बड़ा रुपया आई थी, उसमें यही दिखाया गया था कि पैसे की कीमत क्या होती है। विलेन का रोल महमूद जी ने ज़रूर किया, लेकिन एक सबक देने का प्रयास किया है। और एक साथी कहते हैं कि धन बढ़ाने के ऊपर मेरी अपनी निजी राय ये है कि धन हर कोई बचा सकता है, लेकिन रिश्ते बचाना बहुत बड़ी बात होती है। धन आ जाएगा, कल चला जाएगा, लेकिन रिश्ते आपके हमेशा आपका साथ देंगे और आपके साथ रहेंगे। आपके जाने के बाद भी आपको याद किया जाएगा। धन से आप बहुत कुछ ले सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन धन से आप सब कुछ नहीं ले सकते। रिश्ते जिसके बच्चे हैं अच्छे हैं, वही सबसे बड़ा बचत है, वही सबसे बड़ा धन है। और एक और साथी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसे की अहमियत सब समझ में आती है जब कोई बीमार होता है, तब पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, या कहें कि जब पैसा होता है तो इलाज के लिए हम पानी की तरह पैसे बहा सकते हैं। तो चलिए, ये तो बड़ी गंभीर बातें हो गई, तो कुछ एक बात ऐसी करते हैं जो काफ़ी दिनों से की नहीं, यानी कि आपको सुनवाते हैं एक गीत का शुरुआती अंश। आपको पहचानना है गीत, तो पहले ध्यान से सुनिए ये अंश।

0: हद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा तेरा अंजाम क्या।
1: तो आपको ये बताना है कि किस गीत का शुरुआती अंश है ये, और तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत, और हमें बताइए किसकी आवाज़ में ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, और साथ ही ये भी बताइए कि किस फिल्म का है।

रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता फी न मिलती अगर, तू माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। जो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे

आया ये हॉकी फ्रॉम वेयर दिस इंग्लिश मैन। आज कहां का नेशन काहे की धरती मैया, द होल थिंग इज दैट भैया सत्य।

सबसे बड़ा रुपया फिल्म का गीत आपने सुना महमूद और साथियों की आवाज में, और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी लिख रहे हैं कि जो गीत हमने शुरुआती अंश सुनवाया था आपने बिल्कुल सही पहचाना, लावारिस फिल्म का गीत काहे पैसे पे इतना गुरूर करी है। ये गीत तो आपको सुनवाएंगे, लेकिन हमारे एक साथी कह रहे हैं कि तिजोरियां तो भर गई पर रूह भूखी रह गई, और ये आगे की बातें तो हमने पढ़ ली है। वैसे हमारे साथी कह रहे हैं कि पैसा सब कुछ नहीं हो सकता, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। और एक और साथी का कहना है कि वाकई दोस्तों पैसा खुदा नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। और हमारे एक और साथी का कहना है, क्या कह रहे हैं वो कहते हैं कि मुझे रोड पे 15,000 रुपये मिला था एक पर्स में, मैं उसे मोबाइल नंबर खोज कर दिया, जब मैंने फ़ोन किया तो वो मुझे अपशब्द कह रहे थे, लेकिन जब पैसे की बात की तो भाई बाप कहने लगे। तो यानी उनकी पूछ उन्होंने की अगर उनके पास पैसे थे, और पैसे गिरने पर वो बड़े परेशान थे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पैसा दोस्ती प्यार और खुशियाँ नहीं खरीद सकता, लेकिन ये वो चीज़ें खरीद सकता है जिससे हमें खुशी मिल सकती है। और इसका पैसे को बचाने के लिए हमें, मतलब सीक्रेट इज़ टू आइडेंटिफाई दोज थिंग, तो हमें का ये सीक्रेट है कि हम उन चीज़ों की पहचान करें। और कुछ चीज़ें तो हमें फ्री में भी मिल जाती हैं, जैसे कि लिसनिंग टू एयर विविध भारती, ऐसा इनका कहना है। अंग्रेज़ी में इन्होंने अपना कमेंट लिखा जिसे हमने हिंदी में सुनाया, और विविध भारती को सुनना तो फ्री में हो जाता है ऐसा इनका कहना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इस तरह से सुनते हैं, हालांकि इंटरनेट पैक तो लगता ही होगा इसके लिए, लेकिन फिर भी आपके लिए जो ये मनोरंजन का खजाना है हम बिल्कुल मुफ्त में लाना चाहते हैं और लाते भी हैं। और आप भी हमसे जुड़ते हैं उसी मित्रता से, अपनत्व से, जो कि हमारे लिए अनमोल पूंजी है, जो हमें मिल जाती है मुफ्त में ही, लेकिन आप सभी हमसे जुड़े हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। पर लावारिस फिल्म का गीत क्यों ना सुने इस वक्त, सुनते हैं, और आपको ये बताना है कि संगीत किसका है इस गीत में।

लावारिस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। कल्याण जी आनंद जी ने संगीत से सजाया इस गीत को, यही हमारे सवाल का सही जवाब था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हम लोग जब छोटे थे तब मेले में और भी सामान के साथ मिट्टी के गुल्लक लाते थे और समय समय पर मिलने वाले पैसे उसमें डाल देते थे। कुछ समय बाद तीज त्यौहार पर खोल कर उन पैसों से मनचाही चीज़ें खरीद लेते थे। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि पैसे की पावर कोरोना काल में सबने देख ली, पैसा ज़रूरी नहीं, स्वास्थ्य ज़रूरी है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मर जाने के बाद कोई रुपया पैसा साथ लेकर नहीं जाता, बात तो 16 आने सच है मगर जीते जी यही पैसा दुनिया का हालचाल बता जाता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि धन जीवन की सांसें चलाने के लिए ज़रूरी तो नहीं, ज़रूरी तो है पर दिल को मुस्कुराने की वजह सिर्फ वही दे ये मुमकिन नहीं। सिक्कों की खनक जेब को भारी तो करती है लेकिन आत्मा को खाली नहीं करती, वहीं हमारे आत्मा की खाली जगह को नहीं भरती, ऐसा कह रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सुबह की चाय के लिए दूध, चाय पत्ती, शक्कर रोज़ कमा कर रोज़ दुकान से लाते थे, उसके बाद चाय बनती थी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जितना भी हो सके कर्ज़ा नहीं लेना चाहिए, थोड़ा कम खाएं पर उधार नहीं लेना चाहिए, फालतू के खर्चे ना करें, हमारा ये मानना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आजकल तो ये सिस्टम चल रहा है कि चीज़ें पहले ले लो और धीरे धीरे करके पैसे चुकाते रहो। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई लॉटरी तो छोड़िए, मुझे कभी रास्ते में पड़ा रुपया भी नहीं मिला, मुफ्त का पैसा मेरे पास कभी टिका ही नहीं। इस संबंध में मेरा अनुभव हास्यास्पद रहा है। एक बार हम झांसी से ग्वालियर आए तो वहाँ सासू माँ ने 100 रुपये दिए और मौसी सास ने भी 100 रुपये दिए। वहाँ से हमें आगरा जाना था, देर हो रही थी, टिकट ले लिए लेकिन सुपरफास्ट की टिकट खिड़की से उठाना भूल गया। ट्रेन जैसे ही आगरा पहुंची तभी टिकट चेकर आ गया, टिकट तो ठीक थे पर सुपरफास्ट के सप्लीमेंट्री टिकट न होने के कारण 220 रुपये पेनल्टी देनी पड़ी। इस तरह से मुफ्त में मिले नेक के 200 रुपये ग्वालियर से आगरा 2 घंटे भी नहीं टिके। भाई ये तो बड़ी ही अचंभत करने वाली बात है कि आपके पास इतनी जल्दी जो भी पैसे ऐसे मिलते हैं वो यूं ही उड़ जाते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरे पास यदि लाखों रुपये आ जाएं, ये हमने ही पूछा था कि भाई अगर आपके पास लाखों रुपए आ जाए, लाखों तो नहीं कहा था कि जितने आपको मर्जी हो उतने पैसे अगर आ जाएं तो क्या करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि अगर लाखों रुपए आ जाएं तो सबसे पहले आलीशान घर बनवाऊंगा, उसके बाद एक लग्जरी कार खरीदूंगा, बस दिन भर इधर उधर घूमूंगा, जो दुखिया रहे हैं उनको थोड़ी मदद दूंगा। जिस गांव में यदि पानी की व्यवस्था नहीं होगी उस गांव में सबसे पहले पानी की टंकी और पानी की व्यवस्था करूंगा, जिस गांव में अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही उस गांव में एक स्कूल बनवाऊंगा, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मान सम्मान की बात निराली, खाली जेब तो दुनिया खाली। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि धन बचा

अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छी बचत है अपने पूरे जीवन में कितने रिश्ते आप बचा पाए। अगर अपने रिश्ते ज़्यादा बचा पाए तो वही सबसे बड़ी बचत है। धन तो आएगा चला जाएगा, लेकिन जो अपने रिश्ते, लोगों की भावनाएं बची, वही सबसे बड़ी बचत है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैसा कम हो तो दिक्कत, ज़्यादा हो तो दिक्कत, मन में संतुष्टि होनी चाहिए। एक और साथी कह रहे हैं कि जब वो काम करते थे तब उन्होंने, इनका कमेंट अंग्रेजी में है, हम हिंदी में पढ़कर सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वो काम करते थे तो उन्होंने कुछ पैसे इस तरह से बचत कर दिए थे, इन्वेस्ट कर दिए थे किसी स्कीम में, और उसके बाद वो उसे भूल गए और अपने काम में बिजी रहते थे तो भूल गए। और जब वो रिटायर हुए तो उन्हें एक लेटर आया और उसमें लिखा था कि कुछ अमाउंट पेंडिंग है उनके लिए। और जब उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज उसकी निभा दी तो उन्हें पेपर वर्क करने के लिए बुलाया गया, और पेपर वर्क के बाद उन्हें जो पैसे मिले वो 10 गुना ज़्यादा थे। जितने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए थे उससे 10 गुना ज़्यादा थे, और इन्हें उस वक्त लगा कि उनकी तो लॉटरी लग गई। तो भाई ऐसी लॉटरी भी होती है जिसके लिए हमने ही मेहनत की होती है, लेकिन जब भूल जाते हैं और पैसे मिलते हैं तो बड़ा आनंद आता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पर्स में या जेब में पैसे रख के भूल गए और बहुत दिनों के बाद जब आपने उसे निकाला और पहना और वो पैसे आपको मिले तो कितना आनंद मिलता है। ऐसा कुछ हुआ तो हमसे साझा कीजिए, और ये भी बताइए कि किस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: राजेंद्र, जय जय जय हो जय राजेंद्र।
1: हम
0: जगत नारायण के छोड़ के संतो, नगद नारायण के सब हैं।

0: बच्चे किशोर कुमार बम बम को बम बम को बम बम को बम बम को बम बम को।
1: आंसू और मुस्कान फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमारे साथी कह रहे हैं कि ऊपर वाले ने उस समय समय समय पर

उनका साथ हमेशा दिया है। श्रीमती कॉलेज में प्राध्यापक रह चुकी हैं, हम दोनों को पेंशन मिलती है, मेरा लड़का सीए और अच्छे पोस्ट पर कार्यरत है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि उनका लिखा गीत तो नहीं आया अब तक, हम तुम और वो, ऐसा हमारे साथी ने फिल्म का नाम बताया, लेकिन आंसू और मुस्कान फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया। और हमारे साथी कह रहे हैं कि मेरी लॉटरी लग जाने वाली है, ये गीत भी बड़ा ही अच्छा है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं सच्चा झूठा फिल्म का गीत, उन्होंने कहा लेकिन ये तो नहीं है। दीवार फिल्म का संवाद एक अंगल की जुबानी, मेरा लड़का तो ऐसा नहीं था, शायद हमारी भूख देखी नहीं गई होगी, मगर देखा जाए तो देश में लाखों लोग भूखे मरते हैं, तो क्या सभी चोर बन जाएं? पैसे की नैतिक शिक्षा का पूर्व उदाहरण है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कल दोपहर से हमारे प्रांत में बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश, सावन नहीं बरस रहा है, भादो बरस रहा है। और हमारे कह रहे हैं कि काली घटाओं और बारिश की बात आज नहीं हुई, पैसों की बारिश की बात यहाँ हो रही है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं मोबाइल डिस्प्ले पर वीडियो और चला करें साथ में तो अच्छा रहेगा, पूरा गाना देखा भी करो, विविध भारती के स्टूडियो को देखते रहो, अपना कमेंट करते रहो। भाई ये तो कह सकते हैं कि जो इच्छाएं हैं, चाहत है, उनका तो कोई सानी नहीं है, उनका ना कोई अंत है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, एक पैसा दो वो 10 लाख देगा, ऐसा उनका कहना है। गीत उन्होंने बताया ये। और हमारे एक साथी कह रहे हैं घर मुझे मिल जाए एक कप चाय और ना रखे जाए मेरे सामने ढेरों तरह के पकवान, तो मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगा, और अगर मेरे सामने ढेरों पकवान रखे जाए और एक कप चाय ना पिलाया जाए तो मैं कभी भी खुश नहीं होऊंगा। तो चाय वाला गीत तो सुनवाना ही पड़ेगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कल्याण जी आनंद जी इस के संगीतकार हैं, जो कि हमारा सवाल का सही जवाब है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं मेरे गुरुदेव किशोर कुमार की आवाज़ जैसा किसी की आवाज़ नहीं है। हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं अलग अलग बातें हमारे साथी बता रहे हैं। हमारे एक साथी ने लिख भेजा है कि हमारे एक रिश्तेदार मुसीबत में थे, रिश्ता ऐसा कि 25 लाख की मदद की, फिर क्या था, समय बदला, जब रुपए देने का समय आया तो लालच मन में आ गया, पहले टालते रहे, बाद में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, रुपए तो आज तक नहीं दिया पर भरोसा और रिश्ता खो दिया, अब हम किसी को हेल्प करने के पहले कई बार सोचते हैं। ये बात तो होती ही है। तो चलिए कार्यक्रम का अगला गीत सुन लेते हैं, क्योंकि ऐसी बातें जब होती हैं तो मन को शांति देने के लिए एक गीत तो सुन ही लेना चाहिए। आपको ये बताना है कि ये गीत किस फिल्म का है।

0: हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम के दौरान 1:20 को समाचार आते हैं और उस दौरान के गीत और बातें सुनने नहीं मिलती, प्रोग्राम का मजाक किरकिरा होता है। तो हम आपको कहेंगे कि आप सुन सकते हैं निर्विघ्न ये कार्यक्रम ऐप के जरिए, न्यूज ऑन AIR ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और इससे आप सुन सकते हैं लगातार कार्यक्रम जो भी हैं बिना समाचार के, जो एक बीच में आपको लगता है कार्यक्रम के दौरान जो आता है उसे आप इस तरह से टाल सकते हैं और पूरा कार्यक्रम एक साथ सुन सकते हैं। तो ये ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा आप, और बड़ा ही आसान है इसे हैंडल करना या इसे चलाना, आप खुद ही समझ जाएंगे बहुत ही आसानी से। लेकिन अब आपको तो ये समझना है कि जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो कौन से फिल्म का गीत है।
1: क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज।

दे दनादन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, हालांकि उन्होंने अपना जवाब शायद के साथ लिखा, पर शायद नहीं, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पैसों के बारे में क्या कहना, मैं तो अपने पैसों को ऐसे पुराने कपड़ों में भी छुपा कर रखती हूँ। एक बार मैंने पूरे पुराने कपड़ों की बैग एक लड़की को देख कर कहा कि इसको बेच कर आज यहाँ जिसको पहनना है दे देना। थोड़ी देर में वो वापस आ गई, मुझे लगा सारे कपड़े बिक गए, लेकिन कुछ पैसे उसने लाकर मेरी हथेली पर रख दिए कि ये आपके उस बैग से मिले हैं। कपड़ों के बीच में मैं इतना खुश हो गई उन पैसों को देखकर, जैसे मानो मेरे हाथों में खजाना लग गया हो। तो पुराने कपड़ों के बैग में कुछ चीज़ें दी थी इन्होंने और इस तरह से इन्हें वो मिल गई। और ख़जाना तो इस तरह से मिलता ही रहता है, जैसे आपके प्यार का ख़जाना हम तक पहुँचता रहता है। और हमारे कुछ साथियों का कहना है कि बहुत से गीत उनकी पसंद के तो आज सुनाए नहीं गए, और बहुत से साथियों का ये भी कहना है कि उनके लिस्ट के गीत शामिल हुए। तो भाई ऐसा होना तो संभव है, क्योंकि एक घंटे के कार्यक्रम में सभी की पसंद या सारे गीत शामिल करना तो मुश्किल है। लेकिन आप सुनते रहिए विविध भारती, क्योंकि विविध भारती पर आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपकी पसंद के गीत जरूर सुनने मिलेंगे। तो आज के सुरीला सफर कार्यक्रम से अब लेते हैं इजाजत।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आरती श्रीवास्तव। आज की त्रिवेणी आधारित है स्वर पर। स्वर केवल कंठ से निकलने वाली ध्वनि भर नहीं है, ये मन के भावों का वो सेतु है जो भीतर की दुनिया को बाहर की दुनिया से जोड़ता है। कभी यही स्वर खुशी के पलों में खिलखिलाहट बन जाता है, कभी पीड़ा में सिसकी, और कभी उम्मीद की किरण बनकर किसी उदास मन को सहारा देता है। शब्द भले ही मौन हो जाएं, लेकिन स्वर अक्सर दिल की कहानी कह देता है। संगीत में स्वर सुरों का आधार है, तो जीवन में स्वर हमारे व्यक्तित्व की

किसी की मधुर आवाज सुनकर मन में अपनापन उतर आता है और किसी के कठोर स्वर से रिश्तों में दूरी पैदा हो सकती है। इसलिए स्वर की मिठास केवल संगीत में नहीं, हमारे व्यवहार में भी उतनी ही आवश्यक है। एक माँ की पुकार में ममता का स्वर होता है, पिता की आवाज में विश्वास और शिक्षक के स्वर में मार्गदर्शन। प्रकृति भी अपने अनगिनत स्वरों में जीवन का संगीत रचती है। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों का कलरव, बहती नदी की कलकल और वर्षा की रिमझिम, हर ध्वनि अपने भीतर एक अलग अनुभूति समेटे हुए है।

केवल कान नहीं, संवेदनशील मन भी चाहिए। हमारे जीवन में भी अनेक स्वर साथ साथ चलते हैं। सफलता का स्वर, संघर्ष का स्वर, उम्मीद का स्वर और कभी कभी मौन का स्वर भी। मौन भले ही निशब्द हो, लेकिन उसमें छिपे भावों का स्वर बहुत गहरा होता है। स्वर भावनाओं की भाषा है, रिश्तों की गर्माहट है और जीवन के संगीत की पहली धुन है। जब हमारे शब्दों में संवेदना और स्वर में मिठास होती है, तब साधारण सी बातचीत भी किसी सुंदर कविता की तरह मन में उतर आती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन न करने का आह्वान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने सभी स्नातक विद्यार्थियों को बधाई दी और विद्यार्थियों को पदक तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए। भारत का 5वां विमान आज राहत और बचाव सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में 11 सदस्यों का बचाव दल, विशेष उपकरण और 5.5 टन दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ प्रभावित 11 जल पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े 983 लापता लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में 7-8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं।
2: भारत विकास के उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां से वो अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा कर सकता है। भारत के डिजिटल

0: पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार से लेकर बैंक खातों और अब खेती बाड़ी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों से दूसरे देश भी सीख सकते हैं और इसलिए 2047 तक भारत जिस बड़े आकार की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है वो न केवल अपनी वृद्धि दर से संभव होगा बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व राजनीति में भारत की जो अहमियत है उससे भी संभव होगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भारत को अगले 15 वर्षों में जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसके लिए ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
1: प्राइम मिनिस्टर वांट्स इंडिया टू गो इन द कमिंग 15 इयर्स।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत विश्व बैंक समूह साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान अवसंरचना क्षेत्र में ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आधारित दृष्टिकोण पर भी विचार किया गया। श्रीमती सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारत की बदलती विकास गति पर चर्चा की। वित्त मंत्री सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्दिस दोम्ब्रोस्किस से भी मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। ये समाचार हमारे News on AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहें। X@AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग मजबूत करने और आगे की कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें सीमा शुल्क और संबंधित आंकड़ों के आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाना, दवा और कृषि क्षेत्र में नियामकीय सहयोग, व्यापार संपर्क बेहतर करना तथा निवेश और व्यावसायिक संपर्क को बढ़ावा देना शामिल है। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्री और हवाई मार्गों की स्वतंत्रता, वैध व्यापार तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। श्री मार्गरेटा ने कल पलाऊ के कोरोर में आयोजित 55वें प्रशांत द्वीप समूह फोरम नेताओं के सत्र को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कल से 3 दिन की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री रादोस्वाफ शिरोस्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने डाकघर आधुनिकीकरण योजना के तहत तैयार अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं एक ही जगह मिलेंगी। विदेश और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्घाटन करगिल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे जिले तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरी मैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे

0: ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्स पर @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर तेज बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। बिहार के विभिन्न जिलों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि नेपाल और पड़ोसी राज्यों के साथ ही प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है।
2: बिहार में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से वाल्मीकि नगर, कोसी, वीरपुर, सोन, इंद्रपुरी बराज से जलाश्रय में बढ़ोतरी से संबंधित जिलों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। भागलपुर, औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर, पटना, खगड़िया, वैशाली और जहानाबाद के बाद कैमूर जिले में भी बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। जिला प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश और दुर्गावती जलाशय से पानी छोड़े जाने के बाद फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की ओर से नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर झारखंड में पिछले 3 दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है।
3: मौसम विभाग रांची के अनुसार पिछले 3 दिनों से झारखंड में हो रही भारी बारिश के कारण भैरवी, दामोदर, स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। रांची में लगातार बारिश के कारण काके और गेतलसू डैम के साथ साथ तेनू घाट और चांडिल डैम से पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस बीच पिछले 3 दिनों की बारिश में राज्य भर में कई पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के कई गांवों का प्रखंड और जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हुआ है। लोहरदगा जिला से अधिक प्रभावित रहा है, जहां कई पुल क्षतिग्रस्त या बह गए हैं, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने आज सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और गढ़वा में रेड अलर्ट, जबकि लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम अगले 36 घंटे में झारखंड के पश्चिमी हिस्सों से होकर आगे बढ़ेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पंजाब सरकार ने राज्य में धान की पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए डिजिटल तथा मल्टीमीडिया माध्यमों से बहुस्तरीय सूचना और जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता फैलाने की योजना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पराली प्रबंधन रणनीति पर कल हुई बैठक में ये बात कही। बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के शुरुआती मैच में चीनी ताइपे के ची यूनजेन को हराया। पुरुष सिंगल्स के एक अन्य मुकाबले में लक्ष्य सेन कनाडा के विक्टर लाई से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। महिला सिंगल्स के पहले दौर के मुकाबले में भारत की तन्वी ने डेनमार्क की अमाली चुल्स को कड़े मुकाबले में लगातार सेटों से हराया। भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो ने भी थाईलैंड के तोन्नाकोन साहिंग और तोनिचा साहिंग को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के रमित टंडन ने कतर के अब्दुल्ला अल तमीमी को हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 516 अंक गिरकर 76,428 पर, जबकि निफ्टी 183 अंक गिरकर 23,873 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की

0: दीक्षा और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नकमे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
2: मिला है किसी का झुमका।

मुबारक। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, सलील चौधरी का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर

0: हम दोनों फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, जयदेव का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गड्डी ले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

तुमसा नहीं देखा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, ओपी नैयर ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: किशोर कुमार की आवाज में मुसाफिर फिल्म से गीत आपने सुना, शैलेंद्र के बोल सलिल चौधरी का संगीत। टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुँचना।

0: मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: फागुन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में, कमर जलाल आबादी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब

0: बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत, ओपी नैयर की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल, गीता दत्त, माफ कीजिएगा, ओपी नैयर का संगीत है, कमर जलालाबादी की बोल है, गीता दत्त की आवाज, और ये आपको सुनवा रहे हैं दूसरा एक गीत जिसमें मोहम्मद रफ़ी भी गीता दत्त के साथ, 12 o'clock फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, 103.4 MHz पर दिन के 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने का आह्वान किया है। उन्होंने 7.8% आर्थिक विकास दर हासिल करने पर देशवासियों को बधाई दी और कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में कुछ लोग निराशा के माहौल में डूबे हुए हैं और हर तरफ झूठ फैला रहे हैं।
2: भारत के भीतर निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज, चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए, इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल में रोपवे सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन इनकी लागत बहुत अधिक होने के कारण कई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में दिक्कत आ रही है। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक संजय अवस्थी के मूल सवाल और विधायक हंसराज, राकेश कालिया, केवल सिंह पठानिया व सुधीर शर्मा के रोपवे संबंधी अनुपूरक सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार PPP और EAP मोड पर रोपवे बनाने के लिए तैयार है और निजी निवेशकों का स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला में रोपवे लगाने के लिए टेंडर के आकलन में इसकी लागत करीब 2700 करोड़ रुपए आई और अधिक लागत के कारण इन परियोजनाओं को रद्द कर दिया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि रोपवे की ट्रॉली खाली चलने की स्थिति में भी 3-4 यात्रियों के खर्च का भार सरकार को उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था करने पर विचार कर रही है जिसमें रोपवे के PPP मोड की अवधि 30 से 35 साल तक सीमित की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पास करीब 1200 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है और निजी निवेशकों को शिमला आने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि रोपवे के माध्यम से प्रदेश के उन क्षेत्रों को जोड़ा जाए जहां अभी पहुंच सीमित है। पर्यटन की दृष्टि से अनछुए क्षेत्रों को रोपवे से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दुनिया के कई हिस्सों की तुलना में बड़ा स्नोबाउंड क्षेत्र है और यदि वन संरक्षण अधिनियम यानी FCA की मंजूरी के कारण परियोजनाओं में देरी हो रही है तो सरकार इस प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास करेगी। इससे पहले मूल सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्राप्त ऋण और मदद से प्रदेश में कोई रोपवे परियोजना स्वीकृत या निर्माणाधीन नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में PPP मोड के तहत 6 रोपवे परियोजनाएं हैं। प्रदेश सरकार द्वारा लॉटरी शुरू करने के फैसले के खिलाफ आज भाजपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार का यह फैसला प्रदेश की नई पीढ़ी को बर्बाद करेगा और इसे तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर राजस्व के नाम पर नए कर लगा रही है और अब लॉटरी भी शुरू कर दी है।
3: हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुत बेतुका तर्क जो है वो हमारे सामने रखा है कि हिमाचल आर्थिक कठिनाई के दौर में से गुजर रहा है। ऐसे में हमको अपने रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़े। पहले टैक्सेस का दौर शुरू हुआ, लेकिन एक फैसला और बहुत अटपटा फैसला लिया गया, वो फैसला कि हिमाचल प्रदेश में हम लॉटरी शुरू करेंगे और लॉटरी के लिए तर्क ये दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इससे किसी को आदत नहीं पड़ेगी, ये तो भाग्य का खेल। और सब लोग इस बात को लेकर के हैरान है कि मुख्यमंत्री जो तर्क दे रहे हैं, इससे बड़ी मजाक की बात कोई और हो नहीं सकती। नई जनरेशन को बर्बाद करने की दिशा में यह कदम साबित होगा।
1: नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि कर्मचारी हितैषी होने का दावा करने वाली सुक्खू सरकार के कर्मचारी और पेंशनर प्रतिदिन धरने पर बैठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की कारगुजारी और नीतियों से हर वर्ग निराश है।
3: जी कह रहे हैं कि हम कर्मचारी हितैषी हैं, हर रोज कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, OPS पर बहुत सारी बातें कही, आज OPS के बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो अभी तक OPS से वंचित है।

0: प्रादेशिक समाचारों के बाद आकाशवाणी शिमला से लीजिए प्रस्तुत है सामयिक चर्चा। विषय है सकल घरेलू उत्पादन में भारत की प्रभावशाली प्रदर्शन। वाचक हैं राकेश शर्मा।
1: 2026-27 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की शुरुआत मजबूती के साथ हुई, जिसमें विनिर्माण और सेवाओं के अच्छे प्रदर्शन के साथ पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी में 7.8% तक वृद्धि हुई, जबकि वास्तविक सकल मूल्य वृद्धि में 8.2% बढ़ोतरी हुई। भारत ने लगातार भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार को लेकर अनिश्चितता के बीच 2026-27 में प्रवेश किया। इन बाहरी दबावों के बावजूद पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 7.8% बढ़ी। ये परिणाम 2023-24 से 2026-27 तक 4 वर्षों की अवधि के दौरान पहली तिमाही में दर्ज वास्तविक जीडीपी की उच्चतम वृद्धि को रेखांकित करता है। घरेलू मांग में तेजी और विनिर्माण और सेवाओं में लाभ से इसे समर्थन मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका का उल्लेख किया है। जुलाई 2026 में इसमें भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक और वैश्विक विकास का प्रमुख इंजन बताया। 2026-27 की पहली तिमाही में आर्थिक विकास मजबूत हुआ। ये परिणाम इस तिमाही के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के 7.0% के अनुमान को पार कर गया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी या स्थिर कीमतों पर जीडीपी 81.36 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। नॉमिनल जीडीपी या वर्तमान कीमतों पर जीडीपी 88.27 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसने विगत वर्ष के 8.1% की तुलना में 10.3% की वृद्धि दर्ज की। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक लेखांकन अवधि में घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। वास्तविक सकल मूल्य वृद्धि 73.82 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। विगत 3 वित्त वर्षों के लिए वास्तविक जीडीपी को बढ़ाकर संशोधित किया गया है। संशोधनों से पता चलता है कि पहली तिमाही का प्रदर्शन पूर्ववर्ती अनुमानों की तुलना में मजबूत विकास पथ का अनुसरण करता है। पहली तिमाही में आर्थिक गतिविधियों को निवेश में तीव्र वृद्धि, घरेलू खपत में मजबूती और निर्यात में बढ़ोतरी का समर्थन मिला। प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत उत्पादन के समर्थन से विनिर्माण में 9.2% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत से वस्तुओं और सेवाओं का कुल मिलाकर किया जाने वाला निर्यात जुलाई 2026 में अनुमानित 80.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। विनिर्माण, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश तथा कृषि के क्षेत्रों तक 2026 के दौरान शुरू किए गए नीतिगत उपायों ने इन आर्थिक रुझानों को और मजबूत किया है। मोबाइल फोन निर्माण योजना का परिव्यय 2030-31 तक 62,500 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य उत्पादन का और विस्तार करना, बेहतर मूल्यवर्धन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना है। जुलाई 2026 में स्वीकृत भव्य रसायन योजना का परिव्यय वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 3,030 करोड़ रुपए है। ये देश भर में 3 समर्पित रासायनिक पार्कों की स्थापना में सहायता करेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान को वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ स्वीकृति दी गई है। ये योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT प्रणाली के माध्यम से पात्र किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करती है। सरकार ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 14 खरीफ फसलों के लिए MSP में वृद्धि की। मई 2026 में स्वीकृत कपास उत्पादकता मिशन का परिव्यय 2026-27 से 2030-31 के लिए लगभग 5,700 करोड़ रुपए है। ये कपास किसानों को आधुनिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों से जोड़ता है, कीट जोखिम को कम करता है और उत्पादन प्रणालियों और कृषि व्यापार को मजबूत करता है। यूरिया 2026 के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति का उद्देश्य गैस आधारित यूरिया विनिर्माण इकाइयों में नए निवेश को बढ़ावा देना है। ये उच्च घरेलू उत्पादन और यूरिया में आत्मनिर्भरता के भारत के लक्ष्य का समर्थन करता है। इसके साथ ही ये सामयिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।
0: आकाशवाणी शिमला से प्रसारित की जा रही थी।

0: हमारी अगली उद्घोषणा कुछ ही देर बाद।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
2: ये सभी राज्य जितने भी हैं ना, इनमें बड़ी मात्रा में नारियल की खेती की जाती है। इन क्षेत्रों में लाखों किसान नारियल की खेती से अपना जो जीवन चलाते हैं।
3: और नारियल हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी है। नारियल पानी गर्मी में शरीर को तरोताज़ा रखने में मदद करता है। नारियल की गिरी से तेल और कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। नारियल तेल का इस्तेमाल खाना बनाने के साथ साथ बालों और त्वचा की देखभाल के लिए भी किया जाता है।
2: नारियल की खास बात यह है कि इसका लगभग हर हिस्सा काम में आता है सोनाली, है ना। नारियल के छिलके और उसके जो जटा से रस्सियां, चटाइयां, है ना, कई सारी उपयोगी चीजें बनती है। यहाँ तक कि सुंदर डेकोरेटिव आइटम्स भी बनते हैं। इसके खोल से सजावटी सामान बनते हैं। घरेलू वस्तु भी तैयार की जाती है। और नारियल किसानों के लिए आय का एक अच्छा साधन है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी मदद करता है।
3: साथ ही दीपा, नारियल का पेड़ पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर समुद्र के किनारे और तटीय क्षेत्रों में नारियल के पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। ये पेड़ हमारे आसपास की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता को भी बढ़ाते हैं।
2: जी, और
3: ये दिवस जो है ना, हमें याद दिलाता है कि प्रकृति ने हमें कितने अनमोल संसाधन दिए हैं। ज़रूरत है तो बस उन्हें समझने, बचाने और सही तरीके से उपयोग करने की है। नारियल वास्तव में प्रकृति का एक ऐसा उपहार है जो हमें पोषण भी देता है और रोज़गार भी देता है।
2: बिल्कुल। और इस विश्व नारियल दिवस पर सखियों, हम नारियल की उपयोगिता को समझना चाहिए हमें, और नारियल की खेती करने वाले किसानों का सम्मान करना चाहिए और प्रकृति के इस अनमोल उपहार को सहेजने का संकल्प लेना चाहिए। तो देखिए ना, नारियल सिर्फ एक फल नहीं है बल्कि स्वास्थ्य, रोजगार और प्रकृति तीनों का साथी है।
3: एक हमारे साथी ने लिखा है, देखो, ले लो रे बाबू, पी लो नारियल पानी, 1 रुपया दाम है, हजारों का काम है। सैकड़ों बीमारियों की दवा है, पिलाओ तो मिलेगी आपको दुआ। आज विश्व नारियल दिवस है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी। हमारे यहाँ गुजरात में भावनगर जिले के महुआ शहर में, जिसे मिनी कश्मीर कहा जाता है, वहाँ नारियल का विशाल उत्पादन हो रहा है। कच्चे नारियल को गुजराती में त्रोफा कहा जाता है, जिसका पानी स्वास्थ्यवर्धक होता है। बीमार लोगों को अक्सर पिलाया जाता है। पक्के नारियल पूजा पाठ के अलावा भगवान के चरणों में भी धराया जाता है। पक्के नारियल से निकले खोपरा से खोपरा पाक जैसी विविध स्वादिष्ट पौष्टिक मिठाइयाँ भी बनती हैं।
2: बिल्कुल। और ये जो मिठाई होती है खोपरा पाक, ये तो बेहद पसंद आती है कई घरों में, कई लोगों को। और इसी तरह से एक सखी ने लिख भेजा है कि कौन नारियल के पानी में जादू सा कर जाता है, बंद कटोरी में मीठा जल चुपके से भर जाता है। क्या खूब है। तो ये प्रकृति की सुंदरता है ना, कि पता ही नहीं चलता अंदर पानी कैसे आ जाता है।
3: हम कितने समृद्ध है ना इस प्रकृति के साथ। एक साथ ही लिखते हैं, इस पेड़ को ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में से श्रीफल यानी देवताओं का फल माना जाता है। नारियल का छिलका इतना हल्का और वाटरप्रूफ होता है कि समुद्र की लहरों पर 100 दिनों तक तैरने के बाद भी जीवित रह सकता है और किनारे पर पहुंचकर नया पौधा उगा सकता है। इतिहास में दुनिया के कुछ हिस्सों में नारियल का इस्तेमाल सामान खरीदने, व्यापार करने, यहाँ तक कि टैक्स चुकाने के लिए करेंसी के यानी मुद्रा के रूप में किया जाता था। दुनिया के कुल नारियल उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा केवल 5 एशियाई देशों जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत से आता है।
2: और एक हमारे साथी ने लिखा है कि नारियल दिवस, इसके स्वास्थ्य वर्धक लाभ और उसके महत्व और नारियल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। साथ में ये भी बताते हैं कि 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी ICC, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी शुरुआत की थी। और ये बात तो एक और हमारे जो साथी, उन्होंने भी लिखा है कि इसे ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं।
3: और आप गाना सुन ले।
2: चलिए।

0: दीपा, अगर कोई हमें साड़ी गिफ्ट कर दे तो हम भी झूमने लगते हैं
1: शायद, फिर उसको पहन के कुछ इसी तरह से गाएंगे ना, ये वादे ये पत्ते ये फूल ये हवाएं। और साड़ी के गिफ्ट की तो हमेशा चाहत होती है हर महिलाओं को, है ना? सखी आप भी बताइएगा चाहत होती है या नहीं, सही कह रहे हैं या नहीं।
0: हाँ बिल्कुल, लिखकर बताइए कि अगर आपको किसी ने साड़ी गिफ्ट करी तो आपको कैसे लगता है, या फिर कुछ कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है दीपा जिन्हें ऐसा लगता है अरे ये इस तरह के तो हम नहीं पहनते, इतनी भारी भरकम तो हम नहीं पहनते, या फिर ये कलर तो हम कभी नहीं पहनते, ये तो हमें जचता ही नहीं है, पर मुझे तो अच्छा लगता है अगर कोई गिफ्ट करे तो। और आपको?
1: बिल्कुल, हमें क्यों नहीं पसंद आएगा, बिल्कुल पसंद आता है।
0: तो चलिए फिर हम एक दूसरे को गिफ्ट कर देंगे। क्योंकि खुशी है ना उसी से मिलती है ना।
1: सही बात है, बिल्कुल सही कहा। और भाई ये गिफ्टिंग का तो दौर चलता रहेगा, आंध्र प्रदेश चलते हैं क्योंकि वहां से लेनी है मंगलगिरी साड़ी।
0: मंगलगिरी साड़ी भारत की प्रसिद्ध और सुंदर पारंपरिक हथकरघा साड़ियों में से एक है। साड़ी आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी शहर से संबंधित है और मंगलगिरी आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध नगर है जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह क्षेत्र लंबे समय से हथकरघा उद्योग से जुड़ा हुआ है। यहाँ अनेक पीढ़ियाँ

0: बुनाई के कार्य से जुड़े हुए हैं। उनके हाथों की कला और वर्षों का अनुभव मंगलगिरी की साड़ियों को विशेष पहचान प्रदान करते हैं।
1: मंगलगिरी साड़ियाँ जो खास तौर पे हथकरघा यानी हैंडलूम्स पर बुनी होती हैं, बुनकर बहुत बारीकी और धैर्य के साथ धागों को जोड़कर साड़ी तैयार करते हैं। इस कार्य में सिर्फ तकनीक नहीं हो लगती है बल्कि अनुभव और कलात्मक दृष्टि की भी आवश्यकता होती है सोनाली। और इन साड़ियों की एक विशेषता है, ये पहचान इसमें होती है कि साड़ी का मुख्य भाग अक्सर एकदम सरल डिजाइन वाला होता है और इसके विपरीत बॉर्डर और पल्लू पर भरपूर डिजाइन होते हैं, जरी का काम किया जाता है और यही जो बैलेंस है, ये जो संतुलन है ना, मंगलगिरी साड़ी को एक सरल और बहुत ही अट्रैक्टिव यानी आकर्षक साड़ी बनाता है। फिर मंगलगिरी साड़ी की सबसे बड़ी खूबी उसकी सादगी है, इसमें बहुत अधिक भारी कढ़ाई या चमक दमक नहीं होती है, तो किसी को कोई अगर एलिगेंट साड़ी पहनना पसंद हो ना तो मंगलगिरी साड़ी बिल्कुल वो सखी खरीद सकती है। और ये बहुत आकर्षक लगते हैं ये बिल्कुल कम चमक दमक वाली साड़ियाँ, और इन महिलाओं के लिए विशेष पसंद है जिन्हें एकदम जो बात हम कह रहे थे ना कि शालीन और पारंपरिक पहनावा अगर आपको पसंद आता है कि मैं सोबर कलर सोबर डिजाइन सोबर साड़ी पहनना पसंद करती हूँ, तो वो मंगलगिरी साड़ी को बिल्कुल खरीद सकती हैं।
0: और इन साड़ियों के बॉर्डर बहुत सुंदर होते हैं। कई मंगलगिरी साड़ियों में जरी के बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है, कुछ में चौड़े बॉर्डर होते हैं जबकि कुछ में पतले और आकर्षक किनारे बनाए जाते हैं, और साड़ी का पल्लू भी इसकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। रंगों और पारंपरिक डिजाइन के सुंदर मेल से पल्लू को आकर्षक बनाया जाता है।
1: मंगलगिरी साड़ियाँ हल्की और आरामदायक होती हैं, गर्म मौसम में इन्हें पहनना बहुत सुविधाजनक होता है और इसीलिए ये साड़ी आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी पहन सकते हैं। साथ साथ में जब खास अगर आपके घर में कोई ख़ास प्रोग्राम हो रहा है, कोई त्यौहार सा है, तो बिल्कुल पहन सकते हैं। और मंगलगिरी साड़ियाँ अलग अलग प्रकार के कपड़ों से बनाई जाती है, कॉटन की भी बनती है जो कि बहुत एकदम कम्फर्टेबल होती है, सरल होती है, और सिल्क या सिल्क कॉटन वाला जो मिश्रण वाला जो फैब्रिक होता है वो साड़ियाँ दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना बहुत हैवी हमें नहीं खरीदनी क्या करेंगे इतना पैसा लगा के, तो सिल्क कॉटन वाला जो मिक्स वाले जो फैब्रिक होती है वो वाली साड़ी भी आप ले सकते हैं। और मंगलगिरी साड़ियों के रंगों की भी विशेष भूमिका होती है, पारंपरिक रंगों के साथ साथ इसमें आधुनिक हल्के रंगों का भी प्रयोग होता है। पारंपरिक हो गए जैसे कि लाल हरा पीला नीला गुलाबी सफ़ेद जैसे रंग, और इसके साथ साथ में कुछ वेस्टर्न और ईस्टर्न कलर भी ऐसे होते हैं जैसे कि भूरा भी कलर आने लग गया है, अब तो कथई कलर भी आने लग गया है आजकल, ये अपना बैंगनी और मोफ जो हल्का जामुनी कलर होता है ना वो भी चल रहा है बहुत ज़्यादा इन दिनों, तो वो कलर में भी ये साड़ियाँ उपलब्ध है। फिर इन साड़ियों की खासियत ये है कि इनका रंग और बॉर्डर एक दूसरे के साथ सुंदर संतुलन बनाए रखते हैं, इसलिए साड़ी पहनने वाले व्यक्तित्व में सादगी और गरिमा दोनों जोड़ देती है। अब अनेक अवसरों पर उपयुक्त तो मानी जाती है, जैसे सोनाली
0: जैसे त्योहारों में पहन सकते हैं, पारिवारिक समारोह में पहन सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहन सकते हैं, और हल्की कॉटन मंगलगिरी साड़ी दिन के कार्यक्रमों के लिए बहुत अच्छी लगती है, जबकि जरिया सिल्क वाली मंगलगिरी साड़ी विशेष अवसरों पर पहनने के लिए उपयुक्त होती है। मंगलगिरी साड़ी केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं होती, इसके पीछे अनेक बुनकरों की मेहनत धैर्य और वर्षों पुरानी कला छिपी होती है। हथकरघे पर तैयार होने वाली प्रत्येक साड़ी में हाथों की मेहनत और परंपरा का स्पर्श होता है।
1: बिल्कुल, अब आज का जैसे जमाना हो गया ना कि मशीनों पे भी कपड़े बनते, ऐसे में अगर आपको हैंडलूम की साड़ियाँ पसंद है और भारतीय कारीगरों की कला और उनके महत्व को अगर आप याद करके रखना चाहते हैं तो मंगलगिरी साड़ी बिल्कुल वैसी ही है। और इन साड़ियों को अपनाना केवल सुंदर पहनावे को चुनना नहीं है, ये हमारे देश की हस्तकला और बुनकर की परंपरा को सम्मान देना भी होता है।
0: यानी मंगलगिरी साड़ी केवल धागों से नहीं बनती, उसमें बुनकरों के हाथों की मेहनत, पीढ़ियों की कला और आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत भी बुनी होती है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी ये साड़ी लगती है और एक बार पहन के जरूर देखिएगा।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनाली, हमारी एक सखी का ये मैसेज आया है कि जो नारियल है, नारियल दिवस के बारे में उन्हें याद आ रहा है कि मुझे तो बहुत पसंद है कच्चा नारियल, और चटनी भी बनाती हूँ और खूब मज़े में हमारे घर में खाते हैं। इसका पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है पेट के लिए, खासकर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। और उनके शहर में एक डिश है भुट्टे का किस, उसके ऊपर कच्चे नारियल को डालकर सजाया जाता है जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है। व्रत में भी नारियल पानी मैं पीती हूँ, ऐसा हमारी सखी ने लिखकर भेजा है। एक हमारे सखा, जब हमने पूछा ना कि आप क्या क्या करते हैं सुबह, किस तरह से अपने सेहत का ध्यान रख रहे हैं, तो एक हमारे श्रोता भाई ने लिखा है कि हर जनवरी में और अगस्त में मैं टेस्ट करवाता हूँ, फुल बॉडी चेकअप, जिसमें बिल्कुल हमारा नॉर्मल आया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और डॉक्टर कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो, बिल्कुल भाई, लेकिन बस अपने जो है खाने का कंट्रोल कहीं बाहर ना रह जाए ये ध्यान रखिएगा। और हर दिन 60 मिनट तक वॉक करना का पालन करता हूँ, और 60 साल की उम्र में 60 मिनट का वॉक, तो ये तो भाई बहुत ही अच्छी बात है कि आप इस तरह से अपने सेहत का ध्यान रख रहे हैं। एक हमारे श्रोता का भी मैसेज है, वो कहती है कि मैं हर दिन सुबह 5 बजे रोज़ उठता हूँ।

0: ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली। और दीपा, कहाँ खो गई हो आप?
1: मैं तो हमारे जो श्रोता और सखियां हैं उनके संदेशों में खो गई थी कि क्या क्या संदेश आए, वो चुन रही थी। तो चलिए, आज भाई संदेश पढ़ना है तो ये भी तो बताना होगा कि किस बारे में हम बात करेंगे।
0: खाद्य पैकेट्स पर लिखी जानकारी, जो हम अक्सर ऐसा होता है ना कि हम आँख मूंद के उन पैकेट को खोलते हैं और खा लेते हैं उसकी चीज़ें बिना देखे, अक्सर होता है।
1: बिल्कुल,
0: ये ने कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसे हम लोगों को ऐसा विश्वास होता है कि पैकेट बना हुआ है तो ये अच्छा ही होगा।
1: अच्छा ही होगा। और जब सफर में जाते हैं तो देखो ना, एक ने पैकेट खोला तो सभी लोग खा लेते हैं। फिर भले हम कहते हैं कि अरे हम घर में नहीं खाते, बस ये तो क्या बाहर निकले ना तो खा लिया, लेकिन क्या खा रहे हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है।
0: तो आजकल बाजार में मिलने वाले अधिकांश खाद्य पैकेट जो होते हैं बंद होते हैं, जैसे बिस्किट है, चिप्स है, नमकीन, दूध, जूस, मसाले। इन खाद्य पदार्थों को खरीदते समय केवल पैकेट का रंग, आकर्षक चित्र या विज्ञापन देखकर खरीदना उचित नहीं, बल्कि पैकेट पर लिखी जानकारी को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है।
1: क्योंकि इनमें से इससे हमें उस खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता, पोषण और सुरक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले जानना क्या ज़रूरी है कि उसमें पैकेट पे नाम क्या लिखा होता है। इससे हमें पता चलता है कि पैकेट के अंदर वस्तु कौन सी है। फिर ये जानकारी उसमें दी जाती है कि खाद्य पदार्थ कब बनाया गया है, या कब बनाया या कब पैक किया गया है। इससे हमें उसकी ताजगी का पता चलता है। फिर एक होता है पैकेट पर एक्सपायरी डेट या बेस्ट बिफोर लिखा होता है, तो इसमें समाप्ति तिथि के बाद खाद्य पदार्थ का सेवन करना सुरक्षित नहीं होता है, इसलिए खरीदने से पहले उसकी जांच अवश्य करनी चाहिए।
0: साथ ही पैकेट पर लिखा होता है खाद्य पदार्थ को बनाने में किन किन चीज़ों का उपयोग किया गया है, जैसे आटा, चीनी, नमक, तेल, मसाले आदि। जिन लोगों को किसी खाद्य पदार्थ की एलर्जी होती है उसके लिए जानकारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। साथ ही पोषण संबंधी जानकारी के पैकेट पर कैलोरीज लिखी होती है, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, वसा कितना है, चीनी और नमक की मात्रा लिखी होती है। इससे हमें पता चलता है कि खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा है भी या नहीं भी।
1: बिल्कुल। अच्छा, शुद्ध वजन या मात्रा, उसमें कितना वजन है वो भी लिखा होता है कि 100 ग्राम है, 500 ग्राम है या 1 किलोग्राम है। इससे वस्तु की हमें सही मात्रा पता चलती है। और इसके अलावा हर पैकेट पर उसका अधिकतम मूल्य लिखा होता है। दुकानदार को इससे अधिक कीमत नहीं लेनी चाहिए और इसलिए खरीदते समय MRP हमें देखना जरूर चाहिए।
0: साथ ही उस पर दो चिन्ह होते हैं दीपा। खाद्य पैकेट पर अगर हरे रंग का चिन्ह है तो ये शाकाहारी खाद्य पदार्थ है, और अगर लाल रंग का चिन्ह है तो ये मांसाहारी खाद्य पदार्थ हो सकता है। इससे उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार खाद्य पदार्थ चुन सकते हैं।
1: बिल्कुल। इसके अलावा पैकेट पर कंपनी जिसने बनाई है उसका नाम और पता भी दिया जाता है, इससे आवश्यकता पड़ने पर कंपनी से संपर्क किया जा सकता है। फिर कुछ खाद्य पदार्थों में ठंडी और सूखी जगह पर रखना आवश्यक होता है, ऐसा लिखा रहता है, जबकि कुछ वस्तुओं को फ्रिज में रखना पड़ता है। पैकेट पर दी गई भंडारण संबंधी जानकारी का हमें पालन करना चाहिए।
0: एक हमारे साथी कहते हैं कि फूड पैकेट्स पर लिखी जानकारी पढ़ना ज़रूरी। बिल्कुल ताज़ा किस्सा बताना चाहूँगा। मेरी धर्मपत्नी का पीहर अजमेर में ही है और हम रक्षाबंधन के दिन मेरे ससुराल गए थे। धर्मपत्नी की भाभी ने मिठाई के साथ दो कुकीज़ के पैकेट भी कॉलोनी के किसी दुकानदार से मंगवा कर दिए थे। मेरी नज़र कुकीज़ के पैकेट पर पड़ी और मैंने देखा था उस पर यूज़ बाय डेट 26 अगस्त 2026, इन एक्सपायर डेट के कुकीज़ थे। हाथों हाथ हमने दुकानदार को वापस भिजवाए। दुकानदार ने कहा गलती हो गई, सतर्कता से एक्सपायर्ड कुकीज़ उपयोग करने से हम बच गए। कितनी ये जागरूकता हर किसी को ज़रूरी है,
1: बहुत ज़रूरी है। और एक संदेश आया है कि क्योंकि इसमें भले बुरे की पहचान होती है, सब जो सारी जानकारी लिखी होती है, फिर खाए जाने वाले पैकेट्स की जानकारी तो और भी अधिक आवश्यक है। तो इससे उसकी गुणवत्ता का ज्ञान होता है। वैसे पैकेट्स की जगह प्रकृति पद्धत ताज़े पदार्थ का सेवन किया जाए तो अधिक सेहतमंद होता है और सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। भाई वो तो है, लेकिन अब स्कूल से निकलकर बच्चा अगर अटक ही जाए कि हमें तो ये खाना ही है, ये आलू के चिप्स हम लेके ही रहेंगे, तो अब क्या कीजिएगा, बच्चे मानते नहीं हैं। तो हर बार हमें उन्हें कभी कभी, भले चाहे आप कहिए कि 10-20 बार में से एक बार हमें दिलाना पड़ता है, लेकिन फिर भी पैकेट कितना स्वास्थ्यवर्धक है और कितना हानिकारक है, बच्चों को इसकी पूरी जानकारी देकर कि आप खरीदें।
0: कितनी भी जिद करें उसमें एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। हाँ, उसके अंदर के कंटेंट्स ठीक है कि बाद में चेक कर सकते हैं, पर एक्सपायरी डेट पहले चेक करना जरूरी है। एक हमारे सखी ने लिखा है कि फूड पैकेट पर लिखी हुई जानकारी पढ़ना बेहद जरूरी है। हम सभी को घर में व्रत में राजगिरा के लड्डू खाए थे, एक ब्रांडेड कंपनी से रामदाना, हम राजगिरा को पूर्ण रामदाना कहते हैं, जो जागरी गुड़ से बना हुआ था, सभी ने खाया। पर जब पैकेट में पढ़ा गया उसमें सोडियम की भी मात्रा थी। हमारे घरों में व्रत में नमक नहीं खाते, व्रत में तो ये गलती हो गई, उसका निदान भी किया गया, पर मन में कहीं लग रहा था पैकेट पढ़कर ही खाना चाहिए। इसलिए फलाहार का भी पैकेट आप देख लीजिए इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं।
1: हाँ, बहुत सही जानकारी, कितना सही जानकारी कि अगर आप व्रत में हैं और अगर इस तरह की चीजें हैं तो फिर हमारे मन में एक भ्रांति आ जाती है कि देखिए हम नहीं खाना चाहते फिर भी नमक चला गया। अच्छा, इसके अलावा नूडल्स, सूप या रेडी टू ईट भोजन, ये सारे जो पैकेट होते हैं उन्हें बनाने का या उपयोग करने की विधि भी उस पर लिखी होती है जो पैकेट से उन पर, इससे खाद्य पदार्थ को सही तरीके से तैयार किया जा सकता है और खाद्य पैकेट पर लिखी जानकारी हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सोनाली, हमें किसी भी खाद्य पदार्थ को खरीदने से पहले उसके निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, सामग्री, पोषण संबंधी जानकारी, वजन और मूल्य अवश्य जांचना चाहिए।
0: एक हमारे साथी कहते हैं कि भाई चिप्स के पैकेट भूख लगने पर सभी बच्चे बड़े सभी खा लेते हैं, ये बहुत अच्छा है, पैकेट पर सब कुछ लिखा रहता है, आपको इसमें कितनी कैलोरी मिल रही है, कितना फैट मिल रहा है, कितना ट्रांस फैट है, कितना अनसैचुरेटेड है और कितना इसमें सोडियम और पोटेशियम की मात्रा है। कुछ विदेशी ब्रांड के चॉकलेट और बिस्किट पर वैसे खाद्य तेल रहते हैं जिसे हम खाना नहीं चाहते, तो उसके बारे में भी स्कैन करके सब जानकारी मिल जाती है। तो खाने का सामान और डेट जरूर चेक कर लेना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए?
1: एक गाना तो सुनना चाहिए। बस एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं कि एक जागरूक उपभोक्ता वही है जो आकर्षक पैकेट के बजाय उसकी सही जानकारी को पढ़कर सोच समझकर उस चीज़ को खरीदता है।

0: दीपा, इस गाने को सुनकर मुस्कुरा रही थी या मुस्कुराहट का कोई और कारण है?
1: जब ये गाना सुन रही थी तो अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं ना। सखियों, याद आते हैं कि नहीं, जब हम अपना घर बनाते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, कहीं पे किसी ने अपना इंडिपेंडेंट घर बनाया हुआ है, कहीं किसी ने फ्लैट खरीदा है, तो जिस तरह से सजाते हैं, तो नहीं गीत सुन करके हमारे अपने पुराने दिन याद आते हैं और फिर देखिए चेहरे पर एक प्रसन्नता यानी एक मुस्कान आ ही जाती है।
0: फिर वो छोटी छोटी खुशियों में भी क्यों ना हो, किसी ने कुछ साड़ी खरीद दी, हाँ, या फिर किसी ने कुछ खाने का सामान ही दे दिया। यानी जो लोग छोटी छोटी खुशियों में खुश रहते हैं ना, वो सचमुच जिंदा दिल होते हैं।
1: ये बात छोटी खुशी की बोल रही हो सुनाली, हमें पता है साड़ी लेकर ही रहोगी, है ना? भाई साड़ी तो लेकर रहेगी, सुनाली को दिलवानी पड़ेगी साड़ी।
0: हमारे एक साथी लिखते हैं, प्रसन्नता का अर्थ केवल किसी विशेष उपलब्धि या स्थिति तक पहुंचने में नहीं, देखिए श्रोता भी कह रहे हैं, बल्कि जीवन के हर क्षण में आनंद और संतोष का अनुभव करना है। ये विचार हमें सिखाता है कि प्रसन्नता कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि ये आनंद का क्षण है जिसे प्राप्त किया जा सके, बल्कि एक जीवन शैली है। प्रसन्नता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक स्थिति है, हमारे मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, ना कि भौतिक उपलब्धियों पर।
1: बिल्कुल, और अपने आसपास या परिवार में या हमारे परिजनों में देखा होगा, कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको हमेशा चेहरे पर स्माइल रहती है, और अगर उनके स्थितियों को देखो, परिस्थितियों को देखो, तो बहुत कठिनाइयां चल रही है, लेकिन एक सतत एक हमेशा मंद मुस्कान उनकी बनी रहती है, और फिर हम कहते हैं भाई जीना है तो इनकी तरह ही जीना चाहिए।
0: मेरे लिए तो नहीं कह रही आप।
1: शायद हो भी सकता है।
0: वास्तव में प्रसन्नता के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वभाव की बात है। यदि आप खुश नहीं है तो बेहतर होगा कि आप इसके बारे में चिंता करना बंद कर दीजिए, पर होता इसके विपरीत है। प्रसन्न रहने के लिए कुछ बातों पर विचार करना आवश्यक है। भविष्य की चिंता भविष्य पर ही छोड़ देनी चाहिए। ये आवश्यक नहीं कि भविष्य की चिंता में वर्तमान को ही पीड़ा दे। किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हर प्राणी स्वयं में प्रकृति की विशिष्ट पहचान है। बहुत सुंदर बात,
1: बहुत सुंदर बात की है कि भविष्य की चिंता नहीं, उस पर सोच और समझ रखनी चाहिए कि भाई हमें करना है क्या नहीं करना है। चिंतित हो करके हमारे बालों को सफेद कर लें और फिर चेहरे पे हमेशा एक उदासी उदासी लिए रहे ना, तो लोगों को लगने लग जाता है, परिवार को लगने लग जाता है, हमेशा ये इतना दुखी क्यों रहते हैं,
0: और इनसे दूर ही भागते लोग।
1: हाँ, ऐसा भी होता है। और देखो एक और संदेश है, ये कहता है कि प्रसन्नता का पैमाना न धन है न पद, उसका पैमाना है कि रात को नींद कितनी गहरी आती है, सुबह मन कितना हल्का उठता है, और किसी दूसरे की खुशी देखकर आपके भीतर जलन नहीं बल्कि एक सच्ची मुस्कान आती है। जब छोटी छोटी बातों में भी दिल कहे कि जो है बहुत है और कल की चिंता आज की शांति को नहीं छीन पाती, तो समझिए आप सच में प्रसन्न हैं। भाई ये तो इतना प्यारा संदेश है, इसको तो ऐसा लगता है 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए, है ना,
0: या फिर अपने पास रख लेना चाहिए।
1: हाँ, इसको सेव करके रखा जा सकता है। बिल्कुल,
0: एक साथी कहते हैं प्रसन्नता बांटने से नहीं बढ़ती, सॉरी प्रसन्नता बांटने से बढ़ती है। प्रसन्नता केवल हंसने का नाम नहीं बल्कि मन के भीतर की वो शांति है जो छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सिखा।

0: आती है। जब अपेक्षाएं कम और कृतज्ञता अधिक होती है तो साधारण सा दिन भी खास लगने लगता है। ये संदेश भी कितना सुंदर है,
1: बहुत सुंदर
0: जी।
1: एक संदेश कहता है कि खुश रहना, प्रसन्नता, प्रसन्न रहना जीवन का वो आंतरिक आनंद है जो बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण और संतोष पर निर्भर करता है। प्रसन्न रहना जीवन जीने का एक खूबसूरत तरीका है। ये तो हमारे मन के भीतर की भीतर ही निवास करती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे बाहर ढूंढते रहते हैं। जो व्यक्ति आज में जीना सीख लेता है वही असली मायनों में प्रसन्न रहता है। अपनी मुस्कान की वजह खुद बनिए, किसी और का इंतजार मत करिए।
0: और अपनी खुशी अपने हाथ में रखिए। किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बस जैसे है वैसे रहे, बस खुश रहे, मस्त रहे और गीत सुनते रहे।

0: तो दीपा कहाँ खो गई थी? व्यंजन में?
1: व्यंजन में बिल्कुल। तो आप पढ़ रही हैं? मैं पढ़ रही हूँ
0: जी। हमारे एक साथी ने नारियल का मैसूर पाक लिखने की रेसिपी लिखकर भेजी है। कहते हैं कि पानी वाला नारियल, शक्कर और घी, नारियल का कल वाला हिस्सा निकालकर सफ़ेद वाले हिस्से को मिक्सी में डालकर बिना पानी के अच्छे से ग्राइंड कर ले। नारियल का बुरादा को कटोरी में भरकर नाप ले। अगर कटोरी नारियल का बुरादा है तो पौना कटोरी शक्कर और एक कटोरी घी लगेगा। तीनों को मिलाकर कढ़ाई को मध्यम आंच पर एक ही डायरेक्शन में चलाते रहे। धीरे धीरे शक्कर घूमेगी और फिर घी बाहर आएगा। इस वक्त अपने हाथों को बचाकर रखना होगा क्योंकि घी उड़ता है। लगातार एक ही डायरेक्शन पर चलाते रहना है और कढ़ाई पर जब हल्का गुलाबी

0: सा रंग दिखे तो इसमें पहले ही तैयार स्टील की छन्नी और इसके नीचे एक बर्तन रख दे, मिश्रण को इस पर फैला दे, घी पूरा नीचे आ जाएगा और जब ठंडा हो जाएगा तो टुकड़े कर ले, बहुत स्वादिष्ट लगता है।
1: बिल्कुल, और ये एक रेसिपी है नारियल की बर्फी। तो उसके लिए आपको नारियल का बुरादा लेना है 2 कप और चीनी 1.5 कप, दूध 1 कप या मावा भी ले सकते हैं यानी कि खोया 3/4 कप, देसी घी 1 बड़ा चम्मच, इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच और कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो थाली को चिकना कर लें पहले और एक थाली या ट्रे में थोड़ा सा देसी घी लगाकर अच्छी तरह चिकना कर लें। फिर एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच घी गर्म करें, इसमें दूध और चीनी डालकर धीमी आँच पर चीनी घुलने तक पकाएं, और यदि आप मावा मिला रहे हैं तो इसे भी इसी समय दूध चीनी के साथ कढ़ाई में डाल दें। फिर इसमें अब नारियल का बुरादा, इलायची पाउडर और लगातार चलाते रहें डालने के बाद, और जब ये मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो कढ़ाई में न छोड़ने लगे ऐसा देखना चाहिए आपको, और फिर आप इसको जो थाली आपने तैयार करी घी लगी उस पर बर्फी बना के बर्फी के लिए जमा सकते हैं, और बाद में जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो बर्फी के शेप में काट लीजिए
0: और खा लीजिए।
1: बिल्कुल।

0: अब मीठा हो गया तो एक नमकीन भी बनना चाहिए ना, तो दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं और एक बेहद स्वादिष्ट और खूब खुशबूदार डिश बनाते हैं, नारियली चावल। इसके लिए सामग्री आपको लेना है बासमती चावल 1 कप, नारियल का दूध लेना है 1 कप, पानी 1 कप, और बघार यानी छोंक के लिए लेना है राई, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, घी और काजू। बनाने की विधि कैसे होगी, कुकर में घी गरम करें, उसमें राई, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची और काजू डाल के भून लीजिए, जो धुली हुई बासमती चावल है वो डाल दीजिए, 1 मिनट तक चलाएं। अब इसमें 1 कप पानी और 1 कप नारियल का दूध मिला करके डालें और बाद में बिल्कुल आखिर में नमक डालें। कुकर का ढक्कन बंद करें, धीमी आँच पर 2 सीटी आने तक पकाएं। आपके ये जो खिले खिले नारियल चावल हैं वो तैयार।
1: तो मैं तो आज घर में ये सारी रेसिपीज बनाने वाली हूं।
0: मैं भी यही सोच रही थी।
1: आप गाना सुन ले,
0: चलिए।

0: तो श्रोताओं को धन्यवाद कहते हैं, इतने सुंदर सुंदर श्रोताओं ने कमेंट्स लिखे, उनके कारण कार्यक्रम में बहुत बहुत हमें मजा आया।
1: बिल्कुल,
0: और ऐसा और लग रहा था कि हमारे सारे श्रोता हमारे साथ में हैं।
1: और पौष्टिक जो आपने व्यंजन विधियां भेजी उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और अब लेते हैं इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं और इस समय आप सुन रहे हैं हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं लेखिका ज्योति जैन से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है साहित्यकार ज्योति जैन जी को, जो इंदौर से आई हैं। विविध भारती के स्टूडियो में ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये बताइए कि रेडियो में आज आकर आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि रेडियो से आपका बड़ा गहरा नाता रहा है। कैजुअल अनाउंसर रही हैं और फिर परमानेंट अनाउंसर के लिए कॉल लेटर आया था जो ज्वाइन नहीं किया, तो क्या कहानी है ये बताइए आप।
2: जी ममता जी, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं जहां बैठी हूं, ये जगह मेरे लिए अपरिचित नहीं है। क्योंकि आज से 40 बरस पूर्व जब मैंने कैजुअल अनाउंसर के तौर पर काम किया, तो स्टूडियो का वातावरण मेरे लिए बिल्कुल सुपरिचित रहता है। मैंने कैजुअल अनाउंसर के तौर पर 3 वर्ष काम किया पढ़ाई के साथ साथ, फिर परमानेंट के लिए एग्ज़ाम दी और जब उसका रिजल्ट आया तो मेरी नियुक्ति होने वाली थी। लेकिन उन्हीं दिनों मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रपोज़ किया।
1: अच्छा।
2: और दरअसल उस वक्त क्या होता है, जब आप प्रेम में होते हैं ना, तो प्रेम के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता।
1: जी जी बिल्कुल।
2: तो और चूंकि मैं जिस परिवार में आ रही थी वहाँ थोड़ा सा मारवाड़ी कल्चर है, तो नौकरी पेशा, और उस समय 40 साल पहले लड़कियाँ इतनी नौकरी नहीं करती थी बहुत ज़्यादा, और ये मेरा निर्णय था कि नहीं, मुझे दोनों में से अगर किसी को चुनना है तो मैंने निश्चित रूप से अपने प्रेम को चुना।
1: जी।
2: और इस तरह से बस शादी हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों तक मैंने अपने दाम्पत्य और मातृत्व का आनंद लिया, और उसके बाद मैं आकाशवाणी इंदौर से अभी भी जुड़ी हूँ, कविताओं के माध्यम से, कहानी के माध्यम से या वार्ताओं के माध्यम से।
1: जी।
2: और कुछ प्ले में भी मैंने अपने स्वर दिए हैं।
1: क्या बात है।
2: जी जी।
1: तो बात कविताओं की चली है और इधर आप बता रही थी कि आपके पतिदेव ने प्रपोज किया तो कोई प्रेम कविता उनके लिए लिखी है?
2: हाँ, उनके लिए दरअसल जिस समय हम कोर्टशिप में थे तो बड़ी सारी कविताएं खूब लिखी। जब आप प्रेम में होते हैं ना ममता जी, तो
1: शब्द फूटते हैं, बहुत सारे
2: शब्द फूटते हैं, से झरना फूट पड़ता है शब्दों का। और प्रकृति में प्रेम ही प्रेम नजर आता है, तितलियों में प्रेम, फूलों में प्रेम, हर जगह प्रेम नजर आता है। और जो संवेदनाएं थी वो शब्दों में अभिव्यक्त हो गई।
1: जी।
2: और उस समय तो खूब सारी कविताएं लिखी, बाद में जब वो कविताएं पढ़ती थी तो लगता था अरे क्या लिखा है, ऐसी अनगढ़ कविताएं हुआ करती थी।
1: जी जी।
2: लेकिन बाद में, और शरद जी पर तो मैंने खूब प्रेम कविताएं लिखी। एक दफा,
1: शरद जी नहीं, आपके पतिदेव।
2: जी जी, मेरे पतिदेव। एक बार जनवरी में हमारी शादी की सालगिरह होती है और वैलेंटाइन डे फरवरी में आता है, तो उस समय मैंने उनके लिए कविता लिखी थी कि संत वैलेंटाइन क्या सचमुच होते हैं? हाँ, देखा है मैंने।
1: क्या बात।
2: मेरी कमजोरियों को थामते, मेरी भावनाओं को तराशते, सत्य शिव और सुंदरम की शाश्वत अभिव्यक्ति, हाँ वही है मेरी बेटियों के पिता।
1: क्या बात है।
2: जी, इस तरह से एक पूरी कविता शरद जी को समर्पित की थी। जी।
1: तो बात कविता की चली है और पतिदेव की चली है, तो मुझे लगता है कि पतिदेव के लिए कोई गाना बनता है यहाँ पर। कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे?
2: पहला गाना मैं जो सुनवाना चाहूंगी, चूंकि आपने बात पतिदेव की कही है, तो जिस समय शरद जी ने मुझे प्रपोज किया, उस समय दरअसल कैसेट्स का जमाना था, है ना, तो कैसेट में बड़े गाने भर भर के दिए जाते
1: और
2: थे,
1: ऑर्डर देके भरवाते थे। हाँ, कि ये वाला गाना,
2: ऑर्डर लिस्ट होती थी एक छोटे से।
1: हाँ।
2: तो शरद जी ने जो मुझे

0: आप सुना है कि सिंथेसाइजर भी बजाया करती थी, और श्रोताओं को बता दें कि ज्योति जी के पास गुणों का खजाना है, उनके गुणों की चर्चा हम करते रहेंगे पूरे प्रोग्राम में। तो सिंथेसाइजर वाली बात बताइए, कब कहाँ से सीखा और कहाँ से विचार आया?
1: नहीं, दरअसल जब भी मेरी बेटियां छोटी थी, शिखा चानी, दोनों जब बच्ची छोटी थी, तो पहले एक छोटा सा सिंथेसाइजर हुआ करता था, कुछ 1 फुट का होता था वो, बहुत
0: जी
1: बड़ा नहीं होता था। तो वो हमने बच्चों को ला करके दिया और बच्चे बजाते थे।
0: जी
1: मेरी जो बड़ी बेटी है वो बड़ी अच्छी धुनें निकाल लेती थी मन से, कहीं विधिवत सीखा नहीं,
0: जी
1: तो मैं भी थोड़ा बहुत उस पर अपना ऐसे हाथ आजमा लिया करती थी।
0: जी
1: बाद में बच्चियां बड़ी हुई,

0: मैं भी थोड़ा सा फुर्सत पाई तो बच्चों ने मदर्स डे पर एक बड़ा सारा सिंथेसाइजर ला के दिया। मुझे लगता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और मुझे ये भी महसूस होता है कि जब तक जीवन है तब तक आप सीखना चाहें तो सीखते रह सकते हैं। सीखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई कमी नहीं है। तो मुझे चूंकि संगीत का शौक है तो मैंने उस सिंथेसाइजर पर धुनें निकालना शुरू की, और बगैर सीखे जो पसंदीदा गीत होते हैं तो वो मैंने उस पे अपने आप से निकालना शुरू किया,
1: जी
0: और इस तरह से दो दो चार चार लाइनें बजा लेती हूँ शौकिया।
1: जी तो ज्योति जी, सिंथेसाइजर की बातें हुई और अब आपके लेखन की दुनिया में हम छलांग लगाना चाहते हैं, फिर बीच
0: जी
1: बीच में यादों के गलियारों में भी सैर करवाते रहेंगे।
0: जी
1: बताइए
0: बिल्कुल।
1: कि आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से प्रेरणा मिली?
0: जी, लेखन की शुरुआत मैं कहूँगी कि जब मैं चौथी पांचवी या छठी क्लास में थी। हम लोग मंदसौर से हैं मूलतः, मेरा जन्म स्थान जो है वो मंदसौर है, मालवा का एक छोटा सा कस्बा है,
1: जी
0: इंदौर से करीब 4 घंटे का रास्ता होगा।
1: जी जी
0: तो चूंकि मेरे माता पिता दोनों नौकरी पेशा थे,
1: जी
0: और जिस जगह हम रहते थे वहाँ पर मेरी जो माँ है वो सबसे पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा महिला थी।
1: क्या बात है,
0: हाँ जी, तो
1: क्या काम करती
0: हमारे
1: थी?
0: मम्मी, मेरी माँ नर्स रही हैं, श्रीमती अन्नपूर्णा तिवारी। और मैं यहाँ आपको एक लगे हाथों तो एक बात और बता दूँ कि मेरी माँ नर्स रही और उन्हें अपनी नर्सिंग सेवाओं के लिए आदरणीय APJ अब्दुल कलाम साहब के हाथों वो सम्मानित भी हुई
1: क्या
0: हैं।
1: बात है भाई,
0: हाँ जी,
1: बहुत बढ़िया।
0: तो चूंकि घर में वातावरण ऐसा था, बाऊजी भी साहित्य प्रेमी थे, तो हमारे घर में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका और अखंड ज्योति, ये चार पत्रिकाएं मुझे ध्यान है नियमित आती थी।
1: जी
0: और उसके थोड़े समय बाद बाऊजी को लगा कि ये पढ़ने की शौकीन है, तो हमारे यहाँ बाऊजी खरीद कर चंदा मामा, चंपक, नंदन, पराग, ये चार, देवकीनंदन जी उस समय शायद पराग देखते थे, तो
1: जी
0: ये पत्रिकाएं हमारे यहाँ आई। तो मैं पढ़ाई में बहुत एवरेज स्टूडेंट रही, लेकिन घर में साहित्यिक पत्रिकाएं आती थी तो मैं वो ज़रूर पढ़ती थी।
1: जी
0: मुझे याद है कि मालती जोशी की धारावाहिक कहानियां इस तरह से धर्मयुग में लगातार आती थी, और हम
1: साप्ताहिक हिंदुस्तान में भी छपी
0: साप्ताहिक
1: थी।
0: हिंदुस्तान
1: जी
0: में, तो
1: बिल्कुल,
0: हम, मतलब मैं पढ़ती और फिर वो वहाँ क्रमशः में आती तो उत्सुकता रहती थी कि आगे
1: आगे
0: क्या
1: क्या
0: हुआ।
1: होगा, क्या बात
0: तो
1: है।
0: मुझे लगता है लेखन का बीज वहाँ पढ़ने से शुरू हुआ, वहाँ ये बीज पड़ा, और फिर धीरे धीरे और अधिक, जहाँ जिन घरों में मैंने देखा है वाचन संस्कृति होती, वाचिक परंपरा जहाँ है वहाँ पर लेखन का बीज पढ़ने की संभावनाएं रहती हैं।
1: जी
0: तो बस इस तरह से वो पुस्तकें पढ़ने के बाद, और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि अखंड ज्योति जो पत्रिका थी, और उन दिनों सारिका भी लघु कथाएं छापने लगी थी, तो अखंड ज्योति में छोटे छोटे प्रेरक प्रसंग आया करते थे, तो शायद उन प्रेरक प्रसंगों को पढ़ पढ़ करके मेरे अंदर कहीं लघु कथा का बीज पनपा,
1: जी
0: छोटा छोटा लिखना शुरू किया। फिर जब मैं हायर सेकेंडरी में आई तो हमारे गुरु थे श्री राम ताम्रकर सर,
1: जी
0: तो जब उन्होंने मुझे एंकरिंग दिया कि उनको लगा कि इसके अंदर कुछ लेखन क्षमता है, तो उन्होंने कहा ज्योति एंकरिंग करोगी? मैंने कहा जी सर बिल्कुल करूँगी। तो उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम दे दिया, तो प्रोग्राम आपको प्रस्तुत करना है तो लिखना पड़ेगा,
1: जी
0: है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया, दो दो लाइनें ऐसे तुकबंदी की, तो सर ने मुझे कविराज कहना शुरू कर दिया कि अरे, तो बस वो एक कच्चा कच्ची, एक्चुअली बोलते कि वो एक पगडंडी थी कच्ची, सड़क पे आने में देर थी, लेकिन वो पगडंडी पे वहाँ चलना शुरू कर दिया था, यात्रा वहाँ से शुरू हो गई थी।
1: जी,
0: जी
1: तो या वो जो यात्रा शुरू हुई और यात्रा का पड़ाव जो सड़क पर पहुंची पगडंडी से, तो सड़क वाली यात्रा को याद कीजिए और कोई कविता सुनाइए हमारे श्रोताओं को।
0: मुझे लगता है कि शादी के बाद मैंने फिर, मुझे लगता है कि विधिवत वापस से लिखना शुरू किया।
1: एक संग्रह हमें याद आ रहा है, दुनिया काठ की।
0: हाँ जी, हाँ
1: तो
0: जी,
1: क्या इस संग्रह से कोई कविता सुनाएंगे?
0: हाँ हाँ बिल्कुल। मैं आपको बता दूँ, आपने दुनिया काठकी का जिक्र किया है,
1: हाँ
0: तो दुनिया काठकी का विचार ऐसे मन में आया कि एक बुजुर्ग को मैंने देखा कि उनको चौखट से ठोकर लग गई और वो लड़खड़ा के गिरने को हुए, लेकिन तत्काल उन्होंने हाथ में पकड़ी लकड़ी से, छड़ी से संभाल लिया अपने आप को।
1: अच्छा।
0: तो बस एक बिजली की तरह एक विचार को औंधा कि जिससे ठोकर लगी वो भी लकड़ी,
1: जी
0: और
1: जी
0: जिसने सहारा दिया संभाला वो भी लकड़ी।
1: क्या बात है।
0: तो बस

0: ऐसा लगा कि लकड़ी पर क्यों ना कुछ लिखा जाए।
1: जी
0: तो जब यादों को टटोलने लगी, अपने शब्दों के संग्रह को, तो जब अभिव्यक्ति वो डायरी में आई पन्नों पर, तो मुझे लगा कि बचपन से लेकर के जीवन के अंत तक लकड़ी आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा रहती है।
1: सही बात है, बिल्कुल।
0: तो इस तरह से ये दुनिया काठ की का अस्तित्व आया सबके सामने।
1: वो तो अंतिम संस्कार में भी लकड़ी
0: जी
1: का
0: जी
1: प्रयोग
0: जी
1: होता है,
0: बिल्कुल।
1: तो जन्म से मृत्यु
0: हाँ
1: तक।
0: जी, मैं इसकी पहली कविता सुनाती हूँ पहले आपको,
1: जी
0: जिसका शीर्षक है पलना। गर्भ में मुलायम तरल में बहता शिशु बाहर आते ही माँ की हथेलियों में आ जाता है।
1: क्या बात है,
0: जो तरल तो नहीं, लेकिन ममत्व उसे मुलायम ही बनाता है।
1: वाह।
0: देखिए, क्योंकि गर्भ में एकदम तरल है और फिर वहाँ से हथेलियों में आता है, लेकिन हथेलियाँ भी मुलायम है। लेकिन चंद पलों बाद ही लकड़ी का पलना उस शिशु का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है
1: जी
0: अगले चंद माहों के लिए।
1: वाह।
0: तरलता कोमलता के पश्चात कठोरता जन्म लेते ही पाठ पढ़ा देती है कि आने वाले जीवन की कठोरता से।
1: क्या बात है।
0: तरलता कोमलता के पश्चात कठोरता जन्म लेते ही पाठ पढ़ा देती है आने वाले जीवन की कठोरता से लड़ने की ताकत देने का।
1: वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया
0: लकड़ी का पलना ऐसा होता है।
1: जी, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ एक गाना सुनते हैं, फिर हम आगे और बातें करते हैं। बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
0: गीत तो देखिए मुझे बहुत सारे पसंद है, क्योंकि मुझे संगीत पसंद है, गीत पसंद है, गुनगुनाना अच्छा लगता है।
1: जी
0: मैं आपको बता दूं कि एक बार ताम्रकर सर ने मुझे एक छोटा सा ट्रांजिस्टर दिया था जब मेरी पहली पुस्तक का विमोचन हुआ था,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: वो किचन में रख के विविध भारती सुनना मेरा प्रिय शगल रहा
1: क्या
0: है।
1: बात है।
0: तो यहाँ पर मुझे दरअसल ज़िंदगी में मुझे लगता है सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी मैं ब्लड ग्रुप से भी बी पॉजिटिव हूँ। तो मुझे हमराज का एक गीत मुझे बहुत पसंद है, सुनील दत्त साहब की मूवी थी, और गीत के बोल है, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो,
1: क्या बात है,
0: गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के
1: मुस्कुरा
0: जियो।
1: के जियो।
0: जी
1: हमराज
0: जी
1: फिल्म का ये गाना
0: हाँ जी
1: सुनते हैं
0: जी
1: यही।

0: हमराज फिल्म के गाने के बाद हमें बताइए कि ये नज़र बट्टू क्या है। वैसे हमें पता है कि कहानी संग्रह नज़र बट्टू, भोरवेला और सेतु, और नज़र बट्टू पर शोध भी किया गया ऐसा कहीं हमने सुना और पढ़ा है,
1: जी
0: तो इसके बारे में बताइए क्या फिलाडेल्फिया में इसी के लिए यही
1: नहीं
0: शामिल हुआ था?
1: नहीं नहीं नहीं देखिए, फिलाडेल्फिया में जो मुझे सम्मान मिला था, मतलब मैं तो फिलाडेल्फिया नहीं गई, वहाँ की जो संस्था है वो वर्ष में एक बार भारत आती है और
0: अच्छा
1: विभिन्न शहरों में ये साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न काम करने वालों को, उनके समग्र साहित्य पर ये सम्मान प्रदान किया जाता है हिंदी में काम करने वालों के लिए। तो वो फिलाडेल्फिया वाला सम्मान अलग है, लेकिन नज़र बट्टू की जहाँ तक बात है, तो ये मॉरिशस की एक शिक्षिका है, वो इंदौर आई थी एक कार्यक्रम में, वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई। वो अपने साथ मेरी कुछ 3-4 किताबें ले गई। जब वे मॉरिशस गई तो वहाँ पर महात्मा गांधी हिंदी शोध संस्थान है, वहाँ पर वो पढ़ाती हैं। तो वहाँ की एक विद्यार्थी है श्रावणी बिहारी करके, उसने शोध प्रबंध लिखने के लिए उनसे कुछ विषय चाहे।
0: जी
1: तो जो मैम थी उन्होंने उन्हें मेरी नज़र बट्टू किताब दी और कहा कि तुम इसे पढ़कर देखो और फिर बात करते हैं। जब उस विद्यार्थी ने वो नज़र बट्टू किताब पढ़ी तो उसे मेरी जो कहानियाँ उनको बहुत पसंद आई, तो उन्होंने फिर मुझे मैसेज किया, अपना पूरा परिचय दिया और फिर ये जानना चाहा कि मैडम नज़र बट्टू किताब तो बहुत अच्छी है लेकिन नज़र बट्टू का मतलब क्या है। तो मैंने उसे बताया कि नज़र बट्टू यानी कि जो नज़र से बचा है वो, तो जो नज़र बट्टू होता है वो नींबू मिर्ची भी होते हैं जो कि कई बार बड़े बड़े ट्रकों पर लगे रहते हैं, है
0: बिल्कुल,
1: ना,
0: गाड़ियों में
1: तो
0: लगे रहते
1: गाड़ियों
0: हैं,
1: में।
0: स्कूटर
1: ये
0: बाइक
1: बात
0: पे।
1: अलग है कि उनसे ब्रेक नहीं लगता लेकिन
0: बिल्कुल
1: एक आस्था होती है इसलिए वो
0: हाँ
1: नज़र बट्टू गाड़ी पर
0: हाँ
1: टंगाया
0: और
1: जाता है,
0: खेतों
1: और
0: में किसान,
1: खेतों
0: कृषक
1: में
0: भाई भी
1: किसान।
0: लगाते हैं।
1: और जो एक और नज़र बट्टू है वो है काले धागे। तो जो मेरी जो नज़र बट्टू कहानी है, उस कहानी संग्रह की जो शीर्षक कहानी है नज़र बट्टू, वो काले धागे और नींबू मिर्च की थीम को लेकर ही वो कहानी है।
0: जी
1: और कुछ मार्मिक कहानी है और लोगों को, पाठकों को वो बहुत पसंद आती है। तो उन्होंने नज़र बट्टू की सारी कहानियों पर शोध प्रबंध किया। इस तरह मॉरिशस की जो विद्यार्थी है उसका शोध प्रबंध मेरी ये कहानी संग्रह नज़र बट्टू पर संपन्न हुआ है।
0: और फिलाडेल्फिया में जो आपका संग्रह गया था जो शोध के लिए, वो क्या कहानी है उसके बारे में बताइए।
1: वो समस्त समग्र साहित्य पर मिला है वो सम्मान मुझे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ हिंदी में कार्य करने वालों को ही वो दिया जाता है वो सम्मान।
0: तो
1: जी
0: कैसे वहाँ जुड़ी आप?
1: मुझे ना ममता जी एक चीज़ लगती है कि कोई अगर मेरी किताब चाहता है तो मैं हमेशा अपनी किताबें देना पसंद करती हूँ।
0: और ये तो बहुत अच्छी बात है,
1: जी
0: किताबें तोहफे में देना।
1: हाँ।
0: और

0: सबको ये सीखना चाहिए
1: जी
0: कि बड़े बड़े गिफ्ट की बजाय किताब तोहफे में
1: हाँ,
0: दें।
1: मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बताती हूँ। जब किताबों की भेंट की बात चली है तो मेरी एक कविता संग्रह है माँ बेटी, वो मैंने माँ बेटी, सिर्फ माँ और बेटी पर कविताएं हैं उसमें। इंदौर के कई प्रतिष्ठित परिवारों ने अपनी बेटियों की शादी में वो पुस्तक बारातियों को तोहफे में दी।
0: क्या बात है।
1: हाँ जी, मतलब 100-100 किताबें बल्क में खरीद कर और ये किताबें भेंट दिए। तो किताबें भेंट देना मुझे अच्छा लगता है। तो इसी तरह जब मैंने किसी को भेंट की और मुझे पता नहीं चला कि वो उनके किन रिश्तेदारों के माध्यम से वो किताब फिलाडेल्फिया पहुंच गई, और जब फिलाडेल्फिया पहुंची, 2 या 3 पुस्तकें थी कुल,
0: जी
1: फिर उनका मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पे। आजकल ये सुविधा बहुत हो गई, पहले तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने मेरा पूरा परिचय मांगा, मेरी बाकी किताबों की जानकारी ली, कुछ गूगल से प्रोफाइल लिया उन्होंने, और फिर इस तरह उन्होंने समग्र साहित्य का अध्ययन करके और फिर वो पुरस्कार मुझे प्रदान किया।
0: क्या बात है,
1: जी
0: बहुत बहुत बधाई हो इस बात के लिए और
1: जी
0: बहुत बढ़िया।
1: धन्यवाद।
0: और बात कविता की चली है, माँ बेटी कविता संग्रह, तो उस संग्रह से कुछ लाइनें सुनाएंगी हमारे श्रोताओं को,
1: हाँ जी, वो जो काव्य संग्रह है उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है।
0: कहानी है।
1: जिस समय मैंने अपने उम्र के 50 वर्ष पूरे किए, बच्चों ने मेरे को, मुझे दोनों बेटियों ने बड़े सरप्राइजेस दिए कि 7 दिन तक मम्मा का बर्थडे मनाएंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, खूब सरप्राइज दिए। तो मुझे लगा कि क्या किया जाए, तो मैंने माँ बेटी, चूंकि मेरी माँ भी हैं, माँ का आशीर्वाद भी है अभी, तो माँ और बेटी को लेकर के एक एक मैंने कविताएं रच दी। इस तरह से वो, चूंकि 50 साल की हुई थी तो 50 कविताएं आ गई माँ बेटी में। उसकी कुछ कविताएं हमारे परिचित हैं, उन्होंने अपनी बेटी की पत्रिका में वो कविताएं छपवाई हैं।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: जी,
1: और एक डॉक्टर साहब हैं वहाँ, डॉक्टर मोड़, उन्होंने तो अपनी बेटी की शादी के रिसेप्शन में उन कविताओं के बड़े बड़े पोस्टर बनवा के रिसेप्शन हॉल में लगवाए।
0: क्या बात है भाई,
1: हाँ जी,
0: वाह।
1: माँ कभी मंदिर नहीं जाती थी,
0: माँ कभी मंदिर नहीं
1: माँ
0: जाती
1: कभी
0: थी।
1: मंदिर नहीं जाती थी। बाद में समझ में आया कि उन्होंने घर को ही मंदिर बना रखा था, वो मंदिर जाती किसके लिए,
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: क्योंकि उनके लिए उनका कर्म ही उनकी पूजा थी। नजर से बचाने को माँ ने बांध दिए हाथ पैरों में काले धागे, मगर माँ नहीं जानती थी कि ताकत काले धागों में नहीं, माँ के हाथों में है।
0: वाह क्या बात है।
1: जी
0: मेरे हिस्से का आकाश, जिसका जिक्र भी किया, जेब में भरकर सपने सारे और चुस्कियाँ, तो ये सारी कविता संग्रह
1: जी जी
0: हैं, इनकी इनका भी जिक्र कीजिए। क्या इनके पीछे भी कोई प्रेरणा है, कोई
1: नहीं,
0: कहानी है, और कितने
1: दरअसल
0: कविता संग्रह आए ये भी बताइए।
1: हाँ, मेरे 5 कविता संग्रह आए हैं। लोगों के लेखन की अलग अलग शैली होती है।
0: जी
1: तो पहले तो मेरे हिस्से का आकाश कविता संग्रह की बात करूं, तो मैं हमेशा ये कहती थी कि हर स्त्री को अपना अस्तित्व, अपना आत्मबल बनाए रखना चाहिए। ठीक है, बेशक पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन स्त्रियों का अपना अस्तित्व है। स्त्रियों ने अपनी बेटियों को उनके बेटी होने के गर्व के साथ परवरिश देना चाहिए।
0: जी
1: मुझे हमेशा अपने स्त्री होने पर गर्व रहा, और मुझे लगता है कि अपने हिस्से का आकाश तो हमें ले ही लेना चाहिए। कोई कहता है एक मुट्ठी आसमान, भाई एक मुट्ठी आसमान क्यों, हमारे हिस्से का जितना आकाश है
0: सारा
1: पूरा
0: आकाश,
1: दीजिए
0: क्या
1: ना,
0: बात
1: है
0: है।
1: ना, सारा आकाश।
0: हाँ
1: तो मेरे हिस्से का आकाश ये कविता संग्रह था। मुझे लगता है कि अमूमन जो स्त्रियों की स्थिति है
0: जी
1: वो कैसी है, तो उसकी एक कविता है जाल,
0: जी जी
1: शीर्षक है जाल। मैं चहचहाती थी, मैं मुखर थी,
0: क्या बात है।
1: उसने कहा तुम वाचाल हो। मैं चुप रही, कुछ ना बोली, उसने कहा गुन्नी हो।
0: ओ
1: मैंने तिनका तिनका जोड़कर घर सजाना चाहा, उसने कहा खर्चीली हो। मैंने कुछ नहीं किया, उसने कहा निकम्मी हो।
0: ओहो
1: मैंने धरती चाही, उसने पिंजरा बना दिया। मैंने आकाश चाहा, उसने जाल बुन दिया।
0: क्या बात है,
1: तो क्या मेरा कुछ नहीं, तो क्या
0: मेरा
1: मेरा
0: कुछ
1: कुछ
0: नहीं।
1: नहीं,
0: जी
1: उसने उदारता दिखाई और मुझे क्षितिज दे दिया, कहा
0: वाह।
1: जा पूरा क्षितिज तेरा, जो दिखाई तो दिया मगर हाथ नहीं।

0: आया।
1: क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई। तो हम जरा विराम देते हैं
0: जी,
1: बातचीत को और एक गाना सुन लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं।
0: सोनू निगम का जो अग्निपथ वाला गाना है,
1: हाँ,
0: अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी
1: बाकी
0: है
1: है
0: जिंदगी,
1: जी,
0: वो वाला सुनवा दीजिए।
1: तो चलिए सुनते हैं ये
0: जी
1: गाना।

0: तो शरद जी की आपके लेखन की दुनिया में क्या भूमिका रही है?
1: शरद जी से भी जब कोई ये सवाल करते हैं तो बोलते हैं, अरे भाई मेरी भूमिका कुछ नहीं रही है, और इतनी भी नहीं है कि मैं उसका लिखा हुआ पढ़ता हूँ, वो लिखा हुआ भी नहीं पढ़ते हैं, टीका टिप्पणी भी नहीं, लेकिन जब भी समाचार पत्रों में कुछ आता है तो वो ज़रूर पढ़ते हैं, और कभी कभी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि बहुत अच्छा लिखा है और ऐसा सब। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कुछ करने के लिए उनकी इजाज़त लेना पड़ती है, मैं अपने कार्य करती हूँ, है ना, उनका अपना फील्ड अलग है, मेरा अलग है, लेकिन कभी उन्होंने किसी प्रकार की रोक ऐसी नहीं लगाई कि नहीं ये नहीं करो ये नहीं करो।
0: जी
1: और लेखन चूंकि मैं मुझे प्रिय रहा है और लेखन के लिए मैं हमेशा अपने आप को तैयार पाती हूँ, उनकी भूमिका इसलिए भी बहुत ज़्यादा नहीं होती,
0: कि उनकी
1: मेरा जो
0: अपनी
1: लेखन का वक्त है वो दोपहर का है,
0: अच्छा जी
1: कभी कभी सुबह भी होता है, ये कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अरे लेखन के लिए मुझे एकांत चाहिए। जैसे मेरे दिमाग में कोई चीज़ आई कि मुझे ये लिखना है, तो अपने किचन में मैंने एक डायरी और पेन रखा हुआ है, वो फिक्स है,
0: बढ़िया।
1: कभी कभी काम करते करते कोई विचार आया
0: तो नोट कर
1: तो
0: लेते हैं।
1: आटा गूंद रहे हैं और फटाक से हाथ धोए और पहले उसके चार बिंदु लिख लिए
0: वाह क्या बात है।
1: जी, और फिर उसको विस्तार दे देती हूँ, क्योंकि कई बार कोई बिंदु आपके दिमाग में आता है वो छिटक जाता है कई बार, तो वो लिख लेती हूँ, तो मुझे ये शिकायत कभी नहीं रही कि अरे मुझे
0: लिखने का वक्त नहीं
1: एकांत
0: मिलता।
1: नहीं मिला या लिखने का वक्त नहीं मिला। वक्त तो चुराना पड़ता है किसी भी काम के लिए, और वो वक्त चुराने में मुझे लगता है कि मैं माहिर हूँ, चुरा लेती
0: जी तो ये
1: हूँ
0: बहुत बढ़िया बात है।
1: जी
0: तो ये आपकी जो प्रेम कहानी है कैसे शुरू हुई और कहाँ मुलाकात हुई वो एक दृश्य भी बताती चलिए।
1: मुलाकात हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी, वो डॉक्टर थी, अनफॉर्चुनेटली वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो हम उनके उनके यहाँ मिले, उस वक्त मैं पढ़ रही थी, बीए कर रही थी, और शरद जी भी वहाँ आए अपने मित्र के साथ, तो बाद में उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि मुझे तो ना इस लड़की से शादी करनी है, ये जो येलो फ्रॉक वाली
0: अरे
1: लड़की से। फिर उसके बाद हम काफ़ी समय तक नहीं मिले, लेकिन फिर इनकी एक और मित्र हैं, उनकी पत्नी के पड़ोस में हम रहने चले गए किराए
0: जी
1: से, तो जैसे उसने मुझे देखा तो उससे जाके पीसीओ से, वो एसटीडी पीसीओ होते थे उस समय, वहाँ से इनको फ़ोन किया कि अरे आप जिस लड़की को ढूंढ रहे थे वो हमारे घर के बाजू में रहने आई है। तो शरद जी वहाँ आ गए
0: हाँ
1: और हमारी दो चार मुलाकातें हुई, तब तक मुझे इस चीज़ का
0: अंदाजा नहीं था।
1: अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ इनके मन में है, फिर लेकिन इन्होंने होली वाले दिन जो है वो प्रपोज़ कर दिया,
0: होली के दिन
1: होली के दिन प्रपोज़ किया, रंगे पूते थे बिल्कुल,
0: हाँ
1: और पहले उस समय ग्रीन और पिंक कलर चला करता था, उसमें रंगे हुए थे, लेकिन
0: हाँ
1: तो मैं थोड़ा सा चौंक गई कि अरे एकदम अप्रत्याशित था वो, तो उस समय तो मैंने, और मेरी चूंकि एग्ज़ाम चल रही थी तो मुझे पूरा ध्यान उधर देना था, लेकिन पता नहीं फिर कुछ मेरे मन में भी कुछ तो अंकुरित हुआ होगा, तो फिर फाइनली हम लगभग 1 महीने के बाद में मेरी रजामंदी रही है।
0: ज्योति जी एक बार फिर हम आपके लेखन की दुनिया में लौटते
1: जी
0: हैं। आपकी जहाँ तक मुझे जानकारी है 17 किताबें हैं
1: जी
0: और बहुत सारी किताबों को पुरस्कृत किया गया।
1: जी
0: मध्य प्रदेश का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला।
1: जी
0: शब्द साधिका सम्मान से आपको
1: जी
0: सम्मानित किया गया।
1: जी
0: किस कृति के लिए मिला और वो कैसा था एक्सपीरियंस आपका?
1: ये जो साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार मुझे मिला है, ये मेरी पुस्तक यात्राओं का इंद्रधनुष के लिए मिला, इसमें मेरे सारे यात्राओं के वर्णन हैं,
0: जी
1: और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से अखिल भारतीय पुरस्कार मिलना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान
0: गौरव
1: की
0: की
1: बात
0: बात है।
1: थी,
0: बिल्कुल
1: गौरव की बात थी। यात्राओं के वृत्तांत का चलन अंग्रेजी में बहुत है, हिंदी में बहुत कम है,
0: जी
1: वो किताब जब चयनित हुई तो मुझे निश्चित रूप से प्रसन्नता होती है। हमको जब भी मैं यात्राएं करती हूँ तो आने के बाद में सब थक्के सो जाते हैं, लेकिन मेरी आदत चूंकि सुबह जल्दी उठने की है तो 5 बजे नींद खुलती है और मैं डायरी लेके पिछले दिन की तमाम बातें नोट कर लेती हूँ,
0: बढ़िया।
1: तो जब हम यात्रा वृत्तांत लिखने लगते हैं तो वो सारी चीज़ें काम आती हैं, तो मैं जब भी बाहर से आती हूँ सारे यात्राओं के वृत्तांत लिखती हूँ। तो जब बात पहाड़ों की हो रही थी, तो जितने भी कठिन यात्राएं हैं हम कर चुके हैं,
0: जी जी
1: जिसमें सिक्किम के लेह लद्दाख के ये सब तो थे ही। इसके अलावा जो हमारी एक प्रमुख यात्रा है वो है कैलाश मानसरोवर की। वो अद्भुत यात्रा है। कैलाश मानसरोवर तो है ही, कैलाश पर्वत में एक चुंबकीय आकर्षण है। मुझे लगता है वो हमको अपनी ओर खींचता है। जब हम 3.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए जब कैलाश के चरण स्पर्श को जाते हैं,
0: जी
1: तो मेरा अनुभव तो ये था कि मैं वहाँ से लौटना ही नहीं चाहती थी।
0: वाह क्या बात है।
1: और मुझे मालूम नहीं ये आस्था है क्या है, कुछ तो स्पिरिचुअल है। और वहाँ मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। ये भाव वहाँ पर आते हैं। और कठिन यात्राओं में 2 बार मैंने स्कूबा डाइविंग किया है, क्योंकि मुझे मछलियों की तरह तैरना अच्छा लगता है।
0: कहाँ पर की है?

0: स्कूबा
1: स्कूबा
0: डाइविंग?
1: डाइविंग मैंने एक तो मालवण में की है, और दूसरा स्कूबा डाइविंग मैंने किया लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप वाला थोड़ा गहरे पानी में किया है, पर वो भी अद्भुत अनुभव रहा।
0: जी,
1: और इसी तरह मैंने हवाई जहाज से कूदी मारी, स्काई डाइविंग हमने की दुबई में,
0: हाँ,
1: और उसमें भी जो चिड़ियाओं की तरह उड़ने वाला था वो पैरासेलिंग और स्काई डाइविंग से पूरा हो गया सपना।
0: हाँ, तो चलिए इस खुशी के नाम एक गाना सुनते हैं।
1: शान की आवाज़ में हम एक गाना सुन लेते हैं, चांद सिफारिश जो करता हमारी।

0: इस गाने के बाद अब आपके एक और हुनर की बात हमें याद आ रही है, वो है कला, मांडना आर्ट,
1: जी
0: जिसमें भी आप माहिर हैं। तो ये कहाँ से सीखा, कहाँ से इसका बीज पड़ा आपके मन में?
1: तो दरअसल मेरा बचपन जहाँ बीता वहाँ पर बाड़ा होता था, एक गुआड़ी बोलते थे उसको मालवा में।
0: जी।
1: तो 16-17 घर थे और हर घर के आगे एक कच्चा ओटला हुआ करता था। वो ओटले का बनावट ऐसी होती थी, चौकोर होता था वो, हर घर के आगे एक ओटला। तो ओटला कैसा होता था कि वो पीली मिट्टी और गोबर से लीप के उसको बनाया जाता था।
0: जी।
1: एक छोटा सा, समझ लीजिए, सिर्फ एक एक सीढ़ी ऊंचा होता था वो। तो जब उस

0: पर पीली मिट्टी और गोबर का लेप हो जाता था, तो बिल्कुल प्लेन होता। और चूंकि मालवा की संस्कृति है मांडना, तो उस पर गेरू और खड़िया यानी सफ़ेद और लाल रंग से डिज़ाइन बनाई जाती थी
1: जी।
0: वो जो पुरानी परंपराएं हैं वही डिज़ाइन होती थी। तो ये हमने हमारी दादी से, बुआ से, अड़ोस पड़ोस की महिलाओं से, चाची भाभी, पहले तो ये रिश्ते होते थे ना, आंटी अंकल तो होते नहीं थे, तो कोई भाभी चाची काकी मामी बुआ जी मामी जी ऐसे होता था। तो वो लोग चूंकि माँ नौकरी करती थी, तो जब सब महिलाएं मांडने बनाती थी तो चूंकि माँ नहीं है तो चलो भाई माँ की बेटी को पकड़ो, है ना। तो मुझे कहते चलो गुड्डी, गुड्डी मेरा बचपन का नाम था, गुड्डी चलो आजा, तू भी आजा, तू भी आजा मांडनो बनाई ले, मालवी बोली में बोलते थे हमारे, आजा तू भी। तो मैं अपना खेरू गड़िया कटोरी में लेके बैठ जाती थी खड़िया, और उनके देखा देखी कुछ कुछ टिपकी लगा के गोला बनाया, ऐसे करके मैंने शुरू किया। तो बीज जो था वो वहां पड़ गया, फिर वो बनाती रही, फिर शादी होकर आए तो रंगोली बनाना घर में, घर के आगे ऐसे सब। उन दिनों हमारे यहाँ फर्नीचर का काम चल रहा था, तो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े थे, चूंकि मांडना प्रेम था, और मेरा कॉलेज में बीए में मेरा एक सब्जेक्ट पेंटिंग था
1: जी जी
0: तो हाथ चलते थे, ब्रश चलता था, तो मैंने उसको टेराकोटा से पेंट करके और उस पर रेड वाइट कलर से अपना बना दिया, मरून कलर से उसको पोत लिया और वाइट कलर से उस पर डिज़ाइन बना ली, कुछ मिरर चिपका दिए छोटे छोटे ऐसे करके। तो मेरी जो छोटी बेटी है चानी, उससे बोला मम्मी बहुत सुंदर बना है, आप थोड़े ज़्यादा बनाओ ना, अपन एग्जीबिशन करते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ जी। तो वो क्या है, थोड़ा बिजनेस फैमिली वाली है ना, तो चूंकि तो शरद जी बिजनेस में, तो उसके भी दिमाग में बिजनेस के आइडियाज़ आते रहते हैं, तो उसने बोला मम्मी एग्जीबिशन करते हैं। तो मैंने जो पहले जो मांडने बनाए वो करीब 300 के करीब मांडने बनाए मैंने।
1: वाह क्या बात है।
0: वो फिर लकड़ियाँ प्लाई लिया ऐसे करके, और आप यकीन मानिए कि मेरी जो पहली एग्जीबिशन थी उसमें सिर्फ 8 मांडने वापस घर आए, बाकी सारे बिक गए।
1: वाह क्या बात है।
0: तो इस तरह से अलग अलग होटल्स में वहाँ पर एग्जीबिशन होती थी, तो वो की। और उस वक्त तो सबको बना बना के गिफ्ट में भी यही दे दिया, कभी किताब कभी मांडना, ऐसा हस्तलिखित या हाथ की चीज का की वैल्यू अलग होती है, उसकी वो अनमोल होती है दरअसल।
1: अब लघु कथाओं की बात करते हैं, लघु कथाएं भी आपने लिखी हैं और संग्रह आए, कुल कितने लघु कथाओं के संग्रह आए और किसी लघु कथा का जिक्र कीजिए यहाँ पर।
0: जी, मेरे पहला लघु कथा संग्रह था मेरा जलतरंग, दूसरा था बीजू का, तीसरा था 99 का फेर, और जो चौथा लघु कथा संग्रह है मेरा वो है गोद भराई, और वो मैंने मालवी में लिखा है। मतलब मालवी हमारे यहाँ की बोली है।
1: जी जी।
0: मैं चूंकि हिंदी लिखती हूँ, हिंदी ही मेरा विषय रहा है, लेकिन जिस परिवेश में आप रहते हैं जहाँ बोलियाँ होती हैं, तो मुझे लगता है कि बोलियाँ बचाना भी बोलियों वालों का दायित्व है।
1: जी जी।
0: तो चूंकि मैं मालवा से हूँ, तो मैंने एक पुस्तक मेरी मालवी बोली में मैंने निकाली है, तो एक लघु कथा संग्रह वो है, और मेरा जो पांचवा लघु कथा संग्रह है वो मेरे ख्याल से अगले महीने मेरे हाथ में आ जाएगा।
1: अच्छा।
0: जो षष्ठी पूर्ति के नाम से आ रहा है, क्योंकि जब मैं, मुझे लगा 60 बरस हुए तो 60 बरस में 60 लघु कथाएं तो होनी चाहिए,
1: क्या
0: तो
1: बात है।
0: काफी समय से लिख रही थी और इस तरह से वो, तो मेरे कुल जमा अभी 5 लघु कथा संग्रह है।
1: बढ़िया।
0: तो मैं, आप कहें तो एक लघु कथा यहाँ पर सुनाऊं मैं।
1: जी।
0: दरअसल लघु कथा का शीर्षक है ढक्कन।
1: जी।
0: ढक्कन। विष्णु जी और सरला जी दोनों ही उस सुबह अपने दैनंदिनी कार्यों में व्यस्त थे। जीवन की सांध्य बेला में भी उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते थे। विष्णु जी दिन भर में 5-10 दफा कोस लेते थे। उस दिन सुबह भी शहद की बरनी का ढक्कन खोलने का निरर्थक प्रयास करते हुए बड़बड़ा रहे थे। इस उम्र में आकर भी अकेलापन।
1: जी।
0: अकेलापन कहाँ, उनसे 2 ही बरस छोटी सरला जी ने उनके हाथ से बरनी लेते हुए हंसकर कहा, मैं इतनी बड़ी दिखाई नहीं देती आपको, अनजान मत बनो, तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ। बच्चों की परवरिश, उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी क्या इसी दिन के लिए, उनके स्वर में नाराजगी थी। सरला जी ने मन ही मन सोचा, क्या सारी गलती बच्चों की ही है, क्योंकि वे अपने पति का स्वभाव भी जानती थी, लेकिन प्रत्यक्ष में बोली, यह लीजिए, पतले कपड़े की सहायता से ढक्कन खुल गया है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगली बार थोड़ा ढीला छोड़ना होगा, ढक्कन को भी और रिश्तों को भी।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये तो एक मुकम्मल लघु कथा आपने सुनाई।
0: लघु कथा

0: की विशेषता ही यह है
1: हाँ
0: कि उसके अंत में एक पंच होता है,
1: जी, बहुत
0: और वो
1: बढ़िया
0: पंच जो है वो पूरी लघु कथा का सार होता है।
1: जी।
0: जी
1: ज्योति जी, लेखन की दुनिया में
0: जी
1: बहुत तरह के बदलाव आए हैं,
0: जी
1: लेकिन स्त्री लेखन आज कहाँ पर है? स्त्री लेखन में किस तरह के बदलाव आप महसूस करती हैं? किस तरह की चुनौतियाँ आज अभी भी कायम है?
0: चुनौतियां तो हैं।
1: जी
0: जब हम पुरुष प्रधान समाज में हैं तो चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन स्त्री लेखन में एक जो बदलाव मुझे दिखाई दे रहा है वो है खुलापन अधिक हो गया है। मैं उससे सहमत नहीं होती हूँ,
1: जी
0: क्योंकि मैं मालती जोशी की कहानियों को पढ़कर बड़ी हुई हूँ।
1: जी जी
0: उनकी कहानियों की नायिका स्वाभिमानी होती थी, लेकिन उनके लेखन में खुलापन कभी नहीं रहा। उनकी नायिकाएं दबी कुचली नहीं होती थी,
1: जी
0: उनकी नायिकाएं षड्यंत्रकारी भी नहीं होती थी, लेकिन अब खुलापन भी आ गया है और महिलाओं को षड्यंत्रकारी बनाकर प्रस्तुत किया जाता है कई जगह। तो
1: जी
0: मुझे लगता है वो आवश्यक नहीं है। कई बार मुझे कुछ लेखिकाएं कहती भी हैं कि तुम्हारे लेखन में इतनी सात्विकता की क्या जरूरत है। मेरा पैटर्न यही है, मैं ऐसे ही लिखती हूँ
1: जी
0: और उससे मुझे सुख मिलता है। जब आप कोई काम कर रहे हैं, आप लेखन कर रहे हैं, उससे आप सुख मिलता है और संतुष्ट हैं, तब तो आपका लेखन सार्थक है।
1: जी
0: तो बदलाव आया है। दूसरा ये कि कई बार ऐसा सुनने में आता है और देखने में भी कि महिलाओं को, महिला लेखिकाओं को मतलब, संघर्ष अधिक करना पड़ता है।
1: जी
0: एक मुकम्मल स्थान उनको कई बार वो नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम अपना लेखन ईमानदारी पूर्वक करते रहें
1: जी बिल्कुल सही कह रही हूँ।
0: और अपने प्रयासों को जारी रखें तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपना स्थान बनाने से कोई रोक सकेगा।
1: बिल्कुल, हमें ये बताइए कि इतनी सारी किताबें हैं, तकरीबन 17 किताबें आपकी आ गई हैं,
0: जी
1: तो आपके मुख्य मूल रूप से विषय कहाँ से उठाती हैं, कौन से विषय होते हैं?
0: विषय आसमान से नहीं आते है ना, विषय हमारे चारों तरफ होते हैं। मैं यहाँ इसको ईश्वर का आशीर्वाद मानती हूँ, क्योंकि देखते तो सभी हैं लेकिन उन्हें पकड़ने की और फिर अभिव्यक्ति की जो ताकत है वो मैं मानती हूँ कि वो ईश्वर प्रदत्त है, जिसे लोग गॉड गिफ्ट कहते हैं। एक अखबार में खबर आई थी, एक बच्चे को, कोई शिशु था, वो झाड़ी में फेंक के कोई चला गया, नवजात शिशु।
1: जी
0: अब नवजात शिशु झाड़ी में फेंक के गया तो पता चला कि वो तो लड़का है। तो एक कोई अम्मा ने बोला, अरे लड़क छोरो फेंक गई, छोरी होती तो बात थी।
1: ओ
0: मतलब देखिए
1: हाँ
0: समाज की मानसिकता कैसी है कि अगर लड़की को फेंक दिया होता तो बात समझ में आती, लड़के को क्यों
1: क्यों
0: फेंका।
1: फीका?
0: तो ये बीज हो गया, अब इसको विस्तार दे करके कथा का रूप हो गया। एक बार मैं अपने एक्टिवा पे जा रही थी और पीछे से गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है, तो मैंने बोला कि भाई रेड लाइट है, तो मैंने ऐसे इशारा किया कि ऊपर से निकल जा। हाँ ऊपर
1: अच्छा
0: से निकल जा भाई, तेरे को
1: हाँ
0: जल्दी।
1: जल्दी है तो
0: लेकिन वहाँ उस उन 39 सेकेंड में खड़े खड़े दिमाग में आया, तो मैंने जाकर के एक व्यंग लिखा कि हवाई जहाज में चढ़कर हम जाएंगे दफ्तर,
1: क्या बात
0: है ना।
1: है
0: तो इस तरह से विषय कब आ जाते हैं, और इन सब विषयों के साथ साथ जनरली सामान्यतः लोग बोलते हैं कि राजनीति महिलाओं का विषय नहीं है, राजनीति पर महिलाएं नहीं लिखती। मन्नू भंडारी जी की महाभोज की हम बात करें तो बहुत कम है जिन्होंने, महिलाओं ने राजनीति पर लिखा है। तो मेरा एक उपन्यास है पार्थ तुम्हें जीना होगा, वो पूरा राजनीति पर है उपन्यास, और उसकी नींव ही ये पड़ी कि मुझे, मैं उन दिनों राजनीतिक परिदृश्य से बहुत विचलित थी और मुझे लगता था कि ऐसा कोई युवा और ईमानदार नेता होना चाहिए जिस पर जनता भरोसा करे, जो ईमानदार है, युवा है और अपने कार्य के प्रति समर्पित है।
1: जी
0: तो वो अर्जुन के रूप में मेरे सम्मुख आकर के खड़ा हो गया। तो मैंने बस उसके बिंदु लिखे कि ये उपन्यास मुझे लिखना है, और वो मैंने लिखा। और हमारे आसपास जो सामाजिक विसंगतियां होती हैं वो

0: आपको लिखने के लिए प्रेरित करती हैं।
1: जी।
0: और माँ के लिए ही बस दो लाइनें कहूँगी कि गरीबी में भी उसने कभी मेरी फ्रॉक नहीं फटने दी,
1: वाह,
0: गरीबी में भी उसने कभी मेरी फ्रॉक नहीं फटने दी, संस्कारों का धागा जो था माँ के पास।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई। अब चलते चलते कोई एक कविता और सुनाना चाहेंगी?
0: मैं अंतिम, इसकी अंतिम तो नहीं, अंतिम से एक पहले वाली
1: कविता
0: कविता
1: सुना
0: सुनाती
1: चाहते हैं।
0: हूँ। उसका शीर्षक है अर्थी। पूर्ण हुआ है जीवन, अब तो विदा की बेला आई है, बांसों का ताना बाना बुन अर्थी आज सजाई है, जीते जी जो मिल ना पाए कांधे सारे आज मिले हैं, चला चली की इस बेला में किसी से भी ना शिकवे गिले हैं, जीवन भर जो इर्द गिर्द रही उसी काष्ठ की अर्थी सजी है, नया जन्म पाने को ही तो आत्मा ने यह देह तजी है। इसका शीर्षक है खिड़की। यह भी कविता है दुनिया काठ की किताब से ली है।
1: जी
0: वह लकड़ी की खिड़की शीशा भी नहीं है जिसमें जब खुलती है तो भीतर आ जाते हैं सपने, हवा के साथ कभी कभी ले आती है मोगरे की सुगंध भी, और जब रहती है बंद तब भी रात में निकला चांद महसूस कर लेते हैं सपने सारे।
1: क्या बात है, बढ़िया कविता, बहुत ही दिलचस्प बातें आपने साझा की ज्योति जी।
0: जी
1: आपका
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: मुझे
1: नमस्कार।
0: भी आपसे मिलकर यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे लेखिका ज्योति जैन से ममता सिंह की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग मिला योगिता जाधव से, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। आज के मेहमान कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।
3: आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार
6: रिलीज जाएंगे। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा दायित्व को बढ़ावा देना और विचार विमर्श से सुशासन और सेवा वितरण में सुधार लाना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के महासागर दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में सेशल्स एक महत्वपूर्ण साझेदार है। नई दिल्ली में सेशल्स के संसद के अध्यक्ष अजरेल अनेस्टा के साथ बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि भारत और सेशल्स वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत

0: करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निरंतर संसदीय संवाद से दोनों देशों की साझेदारी को नई गति मिलेगी तथा दीर्घकालिक संबंध और मजबूत होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारत की बदलती विकास गति पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने विश्लेषण क्षमता मजबूत करने, सुदृढ़ व्यापक आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने और वैश्विक आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए भारत और IMF के बीच निरंतर सहयोग के महत्व पर बल दिया। भारत से राहत सामग्री लेकर पांचवा विमान आज नेपाल पहुंचा। इसमें 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष उपकरण और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। लगभग 4000 लोग अभी भी लापता हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं मिलेंगी। ये दिव्यांगजनों के लिए सुगम प्रवेश और नागरिकों के लिए सुविधाजनक प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था भी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि अब करगिल और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती का एक नया रेट कार्ड तय आधार पर की जा रही है।
1: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
0: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन लिस्टिंग और बिक्री के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस सत्यापन, खरीदार पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी खुलासे के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग सुविधा दी जा रही थी। प्राधिकरण ने कंपनी को विस्फोटक के रूप में वर्गीकृत किसी भी अन्य पदार्थ की लिस्टिंग, होस्टिंग, विज्ञापन या बिक्री पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। नौसेना का नौकायान प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी अपने समुद्री अभियान लोकायान 26 के अंतर्गत स्पेन के बार्सिलोना पहुंचा। बार्सिलोना में पोत स्पेन की नौसेना के साथ पेशेवर और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल आगंतुक शुक्रवार को पोत को देखने जा सकेंगे। ये भारत की समुद्री विरासत को देखने का अवसर प्रदान करेगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना है। किदाम्बी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शोटी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये श्रोताओ, भक्ति वह दीप है जो मन में विश्वास का प्रकाश करता है। भक्ति वह भाव है जो हमें अहंकार से दूर करता है। तो आइए इस भक्तिमय संध्या में प्रभु को याद करें और उनके चरणों में मन को समर्पित करें।

0: डायबिटीज यानी मधुमेह या शुगर रोग एक खतरनाक बीमारी है।
1: इसमें बार बार पेशाब आना, थकावट महसूस होना, ज्यादा भूख लगना इत्यादि इसके लक्षण हैं। इसका शुरुआत में ही पता लगाना बहुत जरूरी है।
2: प्रदेश के हर स्वास्थ्य उपकेंद्रों में शुगर की मुफ्त जांच का प्रावधान है, अतः आप तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी शुगर की जांच करवाएं और अपनी आंखों और गुर्दे की गंभीर बीमारी होने से बचाएं।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: डॉक्टर साहब,

नरेंद्र चंचल के गाए इसी भजन के साथ थे। आज का ये भक्तिमय कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं युवाओं का कार्यक्रम युवा मंच।

युवा मंच सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार, गुड इवनिंग। जी हाँ युवा साथियों, आज फिर एक नया दिन, एक नई शाम के साथ कह रहा है हमें अलविदा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या कुछ नया किया हमने आज के इस पूरे दिन में? क्या कोई नई बात सीखी? क्या कोई नया टास्क पूरा किया? क्या कुछ नया सीखा? जो भी हमारे गोल्स हैं, हमारे एम्स हैं, क्या उनकी तरफ एक कदम बढ़ाया हमने? या फिर यूं कहें कि व्यर्थ की बातों में ही अपना पूरा दिन बिता दिया? जी हाँ, सोचने वाली बात तो है, क्योंकि हम जितना हार्डवर्क आज करेंगे, हमारा आने वाला कल उतना ही बेहतर बनेगा। खासकर हमारा यूथ, जिनका एक एक पल कीमती है, आज की मेहनत कल रंग लाएगी।

जी युवा दोस्तों, हमारी हर छोटी सी कोशिश हमें सफलता की ओर ले जाएगी। तो फोकस्ड रहिए, हार्ड वर्क कीजिए और सबसे बड़ी बात, सपने देखिए और उन्हें पूरा भी कीजिए। तो इसी मोटिवेशन के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और अब हम भी बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, युवा मंच कार्यक्रम में आगे क्या कुछ है। आज है श्रोताओं बुधवार और आज बात स्पोर्ट्स बीट्स भी, क्या कुछ चल रहा है खेल जगत की दुनिया में, कौन हारा कौन जीता, किसने अपना बेहतर प्रदर्शन किया और अपने देश का नाम रोशन किया, सब जानेंगे। किसने टीम में जगह बनाई और कौन रह गया इससे थोड़ा सा दूर। लेकिन पहले ये म्यूजिकल ब्रेक सभी युवा दोस्तों के लिए।

आप सुन रहे हैं युवा मंच आकाशवाणी धर्मशाला के संग, और आज बात हो रही है स्पोर्ट्स बीट्स पर। सबसे पहले बात करते हैं श्रोताओं अपने राष्ट्रीय खेल हॉकी की। जी हाँ, हॉकी विश्व कप 2026 के समापन के बाद नई रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें भारतीय पुरुष टीम 8वें स्थान पर बरकरार है, जबकि महिला टीम ने लंबी छलांग लगाकर 8वां स्थान हासिल किया है। आपको बता दें, जर्मनी पुरुष हॉकी टीम ने विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। बात करें भारतीय फुटबॉल टीम की, तो ब्राजील, उरुग्वे और पनामा के खिलाफ होने वाले मैत्री मैचों के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। पनामा के खिलाफ मैच 26 सितंबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा। और अब बात सबके फेवरेट खेल क्रिकेट की, तो अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी T20 सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन की वापसी से भारतीय टीम काफी मजबूत नजर आ रही है, जबकि हार्दिक पांड्या चोट के कारण अभी भी टीम से बाहर ही हैं। बात करें युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की, तो उनको अफगानिस्तान के खिलाफ T20 टीम में जगह मिली है। तो आज की खेल जगत की खबरें अभी यहीं पर नहीं रुकेंगी, बल्कि अब हम रुकेंगे एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए। श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ, और आप सुन रहे हैं युवा मंच आकाशवाणी धर्मशाला के संग।

0: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
1: इसे एनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कड़ाई में बनाकर खिलाओ, और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
0: जी डॉक्टर साहब,
1: सिर्फ इसे नहीं सभी को एनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
2: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

कार्यक्रम चल रहा है युवा मंच, और युवा मंच में आज बात हो रही है स्पोर्ट्स बीट्स की। अब बात कर लेते हैं एशियाई खेलों की। जी हाँ, एशियाई खेल जापान में होने वाले हैं, और इस बार 43 खेलों और 469 पदक स्पर्धाओं का आयोजन वहां होगा, और भारत भी वहां हिस्सा जरूर लेगा। बात करें बैडमिंटन की, तो नॉर्थ जोन इंटरस्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप 2 से 6 सितंबर तक भीलवाड़ा में हो रहे हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश के सहित कई उत्तर भारतीय राज्य भाग ले रहे हैं। इसी के साथ बात करें महिला एशिया कप की, तो भारत और पाकिस्तान की महिला टीमें 5 सितंबर को दुबई में होंगी आमने सामने। एशियाई गेम्स के लिए भारत के 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी।

गई है, जिसमें 265 पुरुष खिलाड़ी और 227 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। भारतीय एथलीट बेंगलुरु में एशियन गेम्स की तैयारी कर रहे हैं और प्रशिक्षण आधुनिक स्मार्ट ट्रैक तकनीक का इस्तेमाल वहां किया जा रहा है। दोस्तों, हैदराबाद में अभी मैराथन हुई, जहां उसमें हरमनजोत सिंह ने हाफ मैराथन और उसमें उन्होंने पहला स्थान हासिल किया, जबकि भागीरथी विष्ट ने इलीट महिला वर्ग में दूसरा स्थान प्राप्त किया।

जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवा मंच कार्यक्रम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट एंड दोस्त सीमा आपके साथ थे। खेल जगत की दुनिया की बहुत सारी बातें आज के इस कार्यक्रम में हमने शामिल की। तो हमारे खिलाड़ी यूं ही आगे बढ़ते रहें, खेलते रहें और हर दिन नए रिकॉर्ड बनाते रहें, बस यही आशा, यही अभिलाषा है हम सभी की। साथ ही महिला खिलाड़ियों की बात करें तो बहुत बढ़ चढ़ कर खेलों में भाग ले रहे हैं हमारे महिला खिलाड़ी, तो हम सभी के लिए प्रेरणा है और हर परिस्थिति को पार करके आज ये सब खिलाड़ी इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो युवा दोस्तों, हमें गर्व है हमारे इन खिलाड़ियों पर जो देश को सबसे ऊपर रखकर अपना जी जान लगा देते हैं, अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपने देश का नाम ऊंचा करते हैं। साथ ही प्रेरित करते हैं हमारे सभी युवाओं को भी, ताकि वो भी इन खिलाड़ियों की राह पर चल सकें और अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सकें।

स्वराज के इस युवा मंच कार्यक्रम में बस इतना ही। बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें दिया सुरेंद्र कपूर ने। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर जतेंद्र पाल सिंह। अब लेते हैं इस कार्यक्रम से अनुमति। युवा दोस्तों, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:55 हुए हैं, आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज शेष प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी, साथ ही कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ। 6:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां। 7:10 पर किसान और बागवान भाई बहनों का कार्यक्रम खेतीबाड़ी प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 8:00 विधानसभा समीक्षा आकाशवाणी शिमला से रिले की जाएगी। 8:15 पर सुनिएगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। 8:30 पर देशभक्ति गीत सुनवाए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार पेश किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में सुनिएगा गीतकार अनजान के लिखे कुछ गीत।

रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। 10 बजे आप सुनेंगे रूपक। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे पुराने गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आकाशवाणी शिमला से शाम 6 बजे शाम 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से ही 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 रिले किए जाएंगे। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। कल सुबह 7:10 पर कार्यक्रम होगा सुबह सुहानी, जिसमें आप सुनेंगे सुविचार के साथ इतिहास में 3 अगस्त की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी। साथ ही साथ ताजा तरीन समाचारों के साथ बात होगी मौसम के मिजाज पर। दिन में महिलाओं का कार्यक्रम होगा मिंजरा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज शिमला में प्रदेश राजपूत कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 3.5 वर्षों में सरकार ने अनेक योजनाएं बनाकर धरातल पर उतारी हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस वर्ष 2 अक्टूबर से प्रदेश में मुख्यमंत्री का अपना परिवार सुखी परिवार योजना आरंभ की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके तहत करीब 2 लाख गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने हमीरपुर में पूर्व सैनिकों से भेंट कर उनके कल्याण व हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों की जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व सैनिकों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों व समस्याओं को राज्य सरकार के समक्ष उचित कार्रवाई के लिए प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। राज्यपाल ने हमीरपुर में शहीदी स्मारक के निर्माण के लिए 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की। हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन और खनन सामग्री के अवैध परिवहन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान आज प्रश्न

0: काल में विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के लिखित जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 3 वर्षों के दौरान इस वर्ष 1 अगस्त तक खनन विभाग ने अवैध खनन और परिवहन के कुल 13,082 मामले दर्ज किए हैं। इनमें से 10,152 मामलों में दोषियों से जुर्माने के रूप में 8,79,25,770 रुपये की राशि वसूली गई है। उद्योग मंत्री ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न नदी नालों में कुल 305 खनन पट्टे प्रदान किए गए हैं। इन खनन पट्टों से 1 अगस्त 2026 तक सरकार को 302,88,63,938 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। विधायक विनोद सुल्तानपुरी के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि कसौली में जायका प्रोजेक्ट के तहत चल रही 6 सिंचाई योजनाओं के काम में कमी पाए जाने पर जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को इन योजनाओं के काम की रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर देने के निर्देश भी दिए। विधानसभा में आज विपक्षी दल भाजपा के विरोध के बावजूद हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इससे विश्वविद्यालयों की सरकारी नौकरियों की भर्तियों में पारदर्शिता आएगी। इस संशोधन विधेयक में प्रावधान किया गया है कि विश्वविद्यालयों की वित्त समिति की अध्यक्षता प्रदेश सरकार के वित्त सचिव करेंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालय प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति ही कर पाएंगे। अन्य सभी नियुक्तियां लोक सेवा आयोग और चयन आयोग के जरिए होगी। राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारी, इंजीनियर और पेंशनरों ने ओपीएस बहाल सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज शिमला के चौड़ा मैदान में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर बिजली बोर्ड ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने बोर्ड में 15 मई 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाल कर दी थी, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारी इससे वंचित है। हीरालाल वर्मा ने बिजली बोर्ड में खाली पड़े पदों को भरने की भी सरकार से मांग की।
1: बिजली बोर्ड का कर्मचारी 3.5 सालों से पुरानी पेंशन से वंचित है। देश के सरकार के जो कर्मचारी, उनको पुरानी पेंशन लागू हो गई है, लेकिन बिजली बोर्ड का कर्मचारी उससे वंचित है। देरी करके कर्मचारियों में बड़ा संशय है और इस करके आज हजार कर्मचारी यहाँ आए। मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से प्रदेश सरकार और आए यहां जो पुरानी पेंशन बड़े समय से लंबित है उसकी घोषणा करें। अगर स्वाभाविक है प्रदेश सरकार ओपीएस बिजली बोर्ड में लागू नहीं करेगी तो एक लंबा आंदोलन उसको लेकर के प्रदेश में लड़ा जाएगा। आज आप देख रहे हो बिजली बोर्ड में कभी 43,000 कर्मचारी हुआ करते थे, आज आपके कर्मचारी मात्र 13,000 रह गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1/3 आपके कर्मचारी रह गए। इससे सिस्टम के ढांचे को चलाना मुश्किल हो गया। लगभग 11,600 पद खाली है। तो वो भी आज हमारी मुख्य मांग है कि अगर प्रदेश के ढांचे को सही तरीके से चलाना है, प्रदेश के कंज्यूमर्स को आपने बेहतर सेवाएं देनी है, तो आपको बिजली बोर्ड में भर्ती करनी होगी।
0: पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। वे आज ऊना में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र प्रायोजित विभिन्न विकास योजनाओं की गहन समीक्षा भी की। अनुराग ठाकुर ने उपलब्ध धनराशि का समयबद्ध व प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने एपीपी लेड के तहत लंबित कार्य 15 अक्टूबर तक पूरा करने को भी कहा। अनुराग ठाकुर ने ऊना के मलाहत में निर्माणाधीन पीजीआई सेटेलाइट सेंटर के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।

0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:06 हुए हैं। आइए सुनते हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सुरमई सांझ।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

वारिस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इस गीत को गाया था मनमोहन सिंह और लता मंगेशकर ने। उत्तम जगदीश का संगीत था और बोल थे वर्मा मलिक के। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति लीजिए, सुनिए हीरा पन्ना फिल्म से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

हीरा पन्ना। इस फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुरमई सांझ अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां।

0: जी तो फिर तो जरा सा सारे टियाले पर स्वागत है कार्यक्रम में। मौजा ग्राई दियाँ ने जी
1: जी
0: कहने देखा ग्राई बिच तो मौजा लगी रहनियाँ। अजकल मौजा लगी हैं कि बरसात लगी है पूरी मौजा पर कने खूब जड़ी जिसी अह बोलते ना चौं तरफा जिसी अह बोलते ना नाल खोल भी जड़े से पूरे जिसी बोलते ना
1: गीत
0: पूरे
1: संगीत
0: हाँ
1: सुना दे ना
0: पूरे
1: जी।
0: गीता गा करते हाँ। तो देखा जी अजकल जितने भी अहाँ दे ग्रां बिच आस पड़ोस जितने नदी नाले छोटे नालू जड़े से खोलू सब भी दिखा जिसे बोलते ना फुल जवानियां पर चल रहे हो ना।
1: जी कहीं
0: हाँ
1: असी सोगी सोगी किसान मित्र जी दिखा बे ग्राएं च दिखा संजदी हुन दिखा ए टियाले बक्के दिखा रुखे पर क्या ट्री ट्री है भाई हो ना
0: हाँ
1: कने बरसाती दिखा तो हाँ अलग तरह तरह दे जीव जंतु दी आवाज सुनी लिया तो ग्राएं च कने पर
0: हाँ
1: जालू जी तू पेड़ पौधे नहीं होने कीटाणु हो जाना घर ही घर होने तिथि ते जीव नहीं सुमी पाद है ना
0: हाँ जी
1: कनु दिखा साढ़े बखे टियाले पर किया भाई हो ना
0: हाँ जी
1: कने दिखा कने हूँ जड़ी साड़ी फसल है धाना दी
0: हाँ
1: है ना जी
0: जी
1: मुख्य फसल है जी अह लाई हुई है
0: हाँ जी
1: तो अहाँ अपने किसाना ये भी गलाना चाहते भाई हूँ अगली फसल कणका की तैयारी करनी पे साढ़े किसाना
0: हाँ जी
1: तो उन्हीं साढ़े किसान जड़े से थोड़ी बहुत तैयारी करना जो शुरू करी दे भाई कि क्या क्या करना कुण दे बी लैने ने क्या करना है ना
0: हाँ
1: जी
0: सोगी दिखा बीज रखे होंगे बरसाती क्या होंगे कई बार अनाजे कीड़े वगैरह लगी जाता है ना तो
1: जी
0: सभी थोड़ा समय निकाली के बीज वगैरह भी दिखी लेना है अगर इस बीच कुछ जी ऐसा कोई कीटनाशक वगैरह अगर पानी की जरूरत है क्योंकि तल्लू अगर अहाँ इसी कम में कर गए तो कई बार अहाँ दिखते हैं ना बीज तो सारा खाई हड़े होंगे कीड़ू में है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: कहने
0: हाँ
1: एक काम और करना असा जेड़ा साड़ा किसान क्रेडिट कार्ड है से असा बनवाना
0: जी हाँ
1: है ना
0: जी
1: जी
0: हाँ जी
1: क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा शुरू की एक योजना है कहने जिसका मुख्य उद्देश्य किसान जो खेती कने कृषि कने जुड़ी गतिविधियां ताई समय पर कने सस्ती ब्याज दर पर जेड़ा ऋण है से उपलब्ध करवाना है ना जी
0: हाँ जी
1: कहने भाई किसान क्रेडिट कार्ड का कितना ज़्यादा फायदा है दिखा बिकता का किसान इस कार्डे पर ऋण लैंदा है लोन लैंदा है इस पर एक तो देखो भाई बिना गारंटी लोन मिली आंदा 1,60,000 तक का लोन जेड़ा ऐसे किसान जो बिना गारंटी ते मिली आंदा है ना जी
0: हाँ
1: कोई उसी
0: जी
1: अपना मकान या अपनी भूमि कोई भी जेड़ा ऐसे बैंक वाल गिरवी जेड़ा ऐसे नहीं रखना पौंदी है ना जी
0: हाँ जी
1: कहीं दूजी गल की जेड़ा भी साढ़े किसान ऋण लैना है इस पर जेड़ा ब्याज है सह 7% जेड़ा ऐसा लगता है पर जलू अहाँ ऋण सफलतापूर्वक भरी देने तो इसके बाद 3% जोड़ा है हाँ जो वापस हो जाता है यानी कि 4% ब्याज जोड़ा है सह ही साढ़े किसान इस क्रेडिट कार्ड के ऋण पर लगता है ना जी
0: हाँ जी
1: कने कितनी मतलब अच्छी योजना है क्योंकि अगर इं तो 1,50,000 रुपये भी अगर लोन लेना चाहेंगे तो 3600 तरह दियाँ फॉर्मेलिटी होंगे इसे बैंक
0: बिल्कुल
1: के
0: हाँ
1: जाके
0: जी
1: करना
0: हाँ
1: पौंदी है
0: कई
1: ना
0: दिन
1: जी
0: इस जड़े से लगी जाते ना समय भी बर्बाद होता है ना। अगर अहाँ वाले किसान क्रेडिट कार्ड अगर है तो देखा इतनी की जरूरत लगभग अहाँ दे किसान साथी अगर पे भी आती है तो इस जड़ी से कोई ज़्यादा धारा भी नहीं ना आसानी है ना जड़ा से कर्जा मिल जाना है ना।
1: जी कने देखा किसान क्रेडिट दी कार्ड दी जड़ी वैधता है सह 5 साल होंगी 5 साल के बाद ही हाँ अपना कार्ड जड़ा है सह रिन्यू कराना पौंदा है ना जी
0: हाँ जी
1: कने दूजी गल है कि इस ऋण का उपयोग जड़ा साढ़े किसान हैं सह बीज खाद कीटनाशक कृषि उपकरण फसल कटाई के बाद जड़ा कोई खर्च है या कोई और काम आ कृषि का करना है तो जिस वास्ते जड़ा है सह किसान करी सकता हूँ सोचना भी नहीं पौना किसान ने यो
0: हाँ जी
1: कि इन ऋण लेना हो तो कैश पर लीए है ना जी
0: हाँ जी
1: तो एक ये कार्ड जड़ा सा बहुत ही अच्छा साढ़े किसान वास्ते है ना जी
0: बिल्कुल हाँ जी देर दवाई दिखा जानकारी कोई भी है कोई भी योजना है ये अहाँ लोगों के कल्याण दाइया सरकार चलाइया ने ना।
1: जी
0: कहना अगर ग्राएं बिच कुछ नहीं भी पता लगा करता या करना तो अहाँ का फर्ज बनता कि अहाँ अगर इस योजना कन्नै जुड़े हो तो अहाँ जड़े चार लोग होर पात्र इस च होने वाले अहाँ के किसान हैं तिन्हें भी अहाँ समझाइए तिन्हें जो पूरी जानकारी दिए कने हो सके तो तिन्हें तो थोड़ा बहुत इस बीच मदद भी करवाइए कि जल्द अहाँ वाल दिया कागज अहाँ पता कर देने भी कुतू क्या दिक्कत हुआ कर दी तो अहाँ काम का नहीं हुआ करता है ना।
1: जी
0: क्योंकि जड़ा सा कार्यक्रम का ना ही मौजा ग्राएं दियाँ कने ये सारिया ही गल्ला बातें जड़ियाँ सह इक्की दूए की मदद करना इक्की दूए का साथ देना सहयोग करना ये ग्राएं बिच ही अहाँ जो देखने मिलता है ना।
1: जी कने किसान मित्र जी यहाँ टियाले पर शामिल कर दे एक और लोग ही थे ना
0: हाँ
1: जी
0: जी जी जरूर।

0: इस प्यारे दे लोक गीत दे बाद हाँ किसान मित्र जी दिखा भाई मैं जालू लगी है ना टियाले होना
1: हाँ
0: ता दिखा उत्थू रस्ते च मेरा प्यार गया फिसले में ओ
1: हाँ
0: कहना मुझे लगी बैठी गोडले च
1: बिल्कुल
0: कहना मैं
1: हाँ
0: सोचे मैं टियाले जाना ता भाई का इन्हें नगा पलानी है भाई इंजन इंजन होया कने भई असां तां कोशिश करन गां कि भई ये जड़ा साढ़े अखे बखे जड़ा घा पत्तरा लुंगे ना बरसाती बड़ा भरी
1: हाँ जी हाँ
0: कने फिसलन होई हो बड़ी भरी
1: बड़ी
0: रस्ते
1: भारी
0: च।
1: दिखा जेड़े लगभग जियां इत दिखा अहां दे टियाले आला रस्ता था जेड़ा सा दिखा एक कुआल है पत्थरां दा बनया पूरा है ना।
0: हां जी
1: कने जियां हां जो भी कई बारी जेड़ा सा जियां पंचायत आलियां या होरना भी कोनी जियां बोलिया कि इसी जेड़ा सा
0: पक्का
1: हां
0: करेंगे
1: वधिया बनाई
0: ना
1: दिंदे, लेकिन दिखा अहां दे जेड़े टियाले दे साथी हैं जियां लंबरदार होई गए जियां आए बड़का चाचू ने या जियां टियाले दी मासी या ए नहीं मनदे बोलदे नहीं वे यहाँ टियाला भी जड़ा सा बिल्कुल अपना वधिया बांका जड़ा सा कच्चा ही रखिया ना। कहने रस्ता भी कहना दिखा ये सारे ही जड़े से लोग हैं ना इन्हें सोगी मिली के कहना टियाले दे जितने भी साथी हैं आपू ही जड़ा सा टियाले का कोई भी जलू जलू रस्ते का कोई पत्थर निकलता चल चलू ही गैंती फोड़ा लेके तुम बनाना लगी जाते हैं ना। कहे कि दिखा चलू भूमि कटाव होंगे जियाँ बरखा होगा करती दिखा हाँ रस्ते का पहला एक पत्थर निकलना फिर दो निकलने फिर चार फिर तो जरा सा पूरा एक नाल ही बनी जाता है ना। कहना
0: जी
1: इसते सोगी जियाँ तुह दसा करते हैं कि जियाँ तुह ढेई भी हो अजे तो दिखा भाई तिदा जो चफरोड़ है एक पक्के रस्ते भी दिखा कच्चिया च पक्या च दिखा भी चौं तरफा जियाँ जिसी बोलते जितू उतराई जी लौना पवा दी ना जियाँ जिसी बोलते ना कि इं शीतले पवा कि लोहाइया कि लौंगे है ना।
0: जी कहना दिखा
1: हाँ
0: भाई ज्यादा जेडे अहाँ टियाले का रस्ता जे अहाँ रखे ना दिखा भाई इस पत्थर ता भाई
1: हाँ
0: इतू थोड़ा ठीक है मैं
1: हाँ
0: साइकिल में पचा ना जितू पाया सीमेंट दे ना कहना
1: हाँ
0: रस्ते च पाया सीमेंट के लगी सवाल
1: हाँ
0: कहना मेरा तो पैर गया फिसली तो मैं
1: ओ
0: बोले ए पाइया खरा है ता ये खरिया रौनका ने तम इन अड्डे गोडे बने देने है ना
1: बिल्कुल दिखा अजकल जियाँ हाँ कुछ जियाँ डॉक्टर आले या अस्पताल च भी दिखा करते तो बड़े सारे जियाँ इस यो दे भी वो अगर जियाँ ढेई भी होगा ना कुछ बाहें लगी गई लत्ता लगी गई है ना। कहने
0: जी
1: कई बार तो जड़ी ऐसी ऐसी चोट भी जड़ी सा लगी जाती कि कई कई दिन भी सधोने लगी जा करते हैं ना।
0: जी तहां
1: हाँ
0: ये करना भाई दिखा अखे बक्के जे तू साड़े पक्के रस्ते हैं ना या घा लुंगे बड़ा भरी कई बारी तक घा च पैर फंसी के पलटोई याद है ना जी
1: हाँ
0: तहां भाई इदी जड़ा साफ सफाई है से हुन शुरू करे देनी
1: हाँ
0: है ना
1: बिल्कुल
0: जी।
1: हाँ जी दिखा भी रास्ता अहाँ का दिखा हर घरे तक तो दिखा सड़क है नहीं है ना। अहाँ दूर दराज के इलाके भी हैं जो तो कई कई किलोमीटर हैं या कुछ मीटर हैं या कितनी दिन की दूरी है तो सड़क तक जड़ा अहाँ का पुजने का एक रास्ता जिन च अहाँ रोज़ आना जाना है अहाँ के जड़े से जो पशुआं जड़े से बने लीने का रास्ता है अहाँ दियाँ बोड़ियाँ कुएं पर जाने वाला जड़ा रस्ते हैं सह बिल्कुल पधरे होना चाहिए जिससे कि क्या होंगे कि जड़ा भी कोई जंगली जानवर है सह भी दिखा सावधान हो जाते कि सामने तो कोई ओवा करता है ना।
0: जी
1: कन्नै अहाँ की नज़र भी जड़ी सै वार पार बराबर पौंदी है कि रस्ते च जड़ा सा कुछ भी ऐसा हानि पहुँचाने वाला कोई कीट जीव नहीं है ना।
0: जी बिल्कुल कहने दिखा भाई सावधानी यहाँ रख गए ताई हाँ बचाव जड़ा से अपना करी सकते हैं ना जी।
1: हाँ दिखा कई बार जियाँ जलू सचों वह फुलनू होना घा होना पिल जड़ा सा पैर पर लाई जाता जियाँ ना तो दिखा ये तो जानवर है ना भी अपनी रक्षा करने का जियाँ जड़ा सा प्रहार तो करना ही है ना।
0: जी
1: कहना जियाँ अगर बिल्कुल बढ़िया रस्ते होना हाँ कंटाई छंटाई बिल्कुल साफ सुथरे हो तो जंगली जानवर जड़ा भी ऐसा तो खुद जड़े से अहाँ डरते हैं नठी जाते हैं ना।
0: जी कहने दिखा भी अजकल तो हाँ पट्टियां दे अखे बक्के जड़े बाड़छा साड़ियां बड़ी भरी चढ़ी जाता तो तू दिखा सूर कई पट्टियां जिता सूर है ना कहने
1: हाँ
0: इं
1: छलियाँ दिखा भी हाँ छलियाँ तो भी बड़ा नुकसान अहाँ दें किसान साथियों का जड़ा सा होया ना
0: जी
1: जिंगी छलियाँ भनने आईया थोड़े दाने लगे था सह किसान साथी तो कई कई जगह था तिन्हें जड़ा सा एक एक गुल्ली भी छलियाँ थी जी सह नहीं नसीब हुई है ना। तो दिखा इसी ये तो इन्हें करना था जड़ा सा हाँ क्या कर सकते दिखा जिसी हाँ बोलिए ना कि जी जी जंगलों के कटान होआ करते दिए दिए जंगली जानवर भी जड़े सा हूँ अहाँ के घर आने पास दौड़ा करते हैं ना।
0: जी तो उस वास्ते यहाँ ये कि यहाँ जेड़ा अपना खेत है तिसियो अच्छी बाड़बंदी करन
1: हाँ
0: ताकि हमारी फसल जेड़ी है से सुरक्षित रहे है ना जी।
1: जी हाँ जी
0: कने किसान मित्र जी भाई मैं थोड़े हथे का सारा समझी ए कि भाई तू बोले ताई बस करे हुण ते गलांदिया रहना
1: हाँ
0: कने हुण कोई गीते दी झनकार जेड़ी है से
1: बिल्कुल
0: सुनाई
1: होना
0: दे
1: चाहिए
0: ना
1: दिखा
0: जी।
1: हाँ जे किसान साथी भी जड़े से थके होंगे ना पूरे दिन कम कमाई के
0: हाँ जी
1: कने सुन दे जड़ा सा एक लोक गीत
0: जी।

किसान साथियों, इसी लोकगीत कन्ने कार्यक्रम का समय इतों ही संपन्न होने जो है। तकनीकी सहयोग आज दिता सुरेंद्र कपूर ने, कने कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह, उन्हां दुनिया दी अनुमति। अच्छा जी, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजने को है। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा दायित्व को बढ़ावा देना और विचार विमर्श से सुशासन और सेवा वितरण में सुधार लाना है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई। सीईओ ट्रस्ट के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख और राम मंदिर परिसर से संबंधित मुख्य परिचालन जिम्मेदारियों को संभालेंगे। ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की जानकारी दी है। इनमें अयोध्या के वरिष्ठ अधिवक्ता मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भगचंद का और शेखोहाबाद की सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य निर्मला यादव शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉ. सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

0: श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों को इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिनों के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के महासागर दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में सेशल्स एक महत्वपूर्ण साझेदार है। नई दिल्ली में सेशल संसद के अध्यक्ष अजारेल अर्नेस्टा के साथ बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि भारत और सेशल्स विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत से राहत सामग्री लेकर 5वां विमान दल आज नेपाल पहुंचा। इसमें 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष उपकरण और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेट कार्ड के आधार पर किए जा रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंगपिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
0: सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की है। बलजीत कौर और स्कालजेंग रिगजिन को भू साहसिक अभियानों, रिमो साह को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ची यू जेन को और तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनीषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। बंबई शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi participated in the valedictory session of the departmental summit of the Minister of Jal Shakti in New Delhi today. The two-day departmental summit was the first in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen the spirit of Team India, deepen cooperative federalism, and foster collective ownership of national priorities through closer collaboration between the centre and the states. The initiative provided a structured platform to jointly deliberate on critical sectoral priorities and accelerate implementation and outcomes. In Uttar Pradesh, former commander of the Western Air Command, retired Air Marshal Jitendra Mishra, is appointed as the first CEO of the Sri Ram Janmabhoomi Kshetra Trust in Ayodhya today. The appointment was announced after the meeting of a trust held at Maniram Das Chhawani in Ayodhya under the chairmanship of Trust President Mahant Nritya Gopal Das. The CEO will be responsible for overseeing the administrative functioning of the trust and handling key operational responsibilities related to the Sri Ram Temple Complex. Trust Interim General Secretary Krishna Mohan informed about the appointment of 3 new members, which include Madan Mohan Pandey, a senior advocate from Ayodhya, Mahesh Bhagchandka of Delhi, and retired principal Dr. Nirmala Yadav from Shukohabad. India continues to extend all possible assistance to Nepal in the ongoing rescue and relief efforts. The 15 Indian aircraft carrying relief and rescue assistance has reached Nepal. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar said the aircraft carried 11-member rescue team with specialized equipment along with 5.5 tons of essential medicines. A 19-member Indian forensic team has begun analyzing DNA samples alongside forensic experts to assist in identifying people affected by the recent flash floods in Nepal. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal has risen to 1,127, with nearly 4,000

0: एक बारी फिर ते सारे सुनने वाले किसान बागवान भाई भैन सारे श्रोतियों का टियाले पर स्वागत करते हैं। जिन जिन अपने रेडियो सैट होनी उन कितने दिन दस दी है कि मैं हूँ खेतीबाड़ी कार्यक्रम है टियाले पर किसान मित्र कहना मेरे सोगी अज हैं देरो ताई ताई जी ता चलते ने फिर ते जो जानकारियां आए पास है ना
1: जी कने कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुना करते सारे ही श्रोते हैं जो किसान बागवान साथी हैं जो मेरी तरफा ते भी राम राम कने किसान मित्र जी तुसा जो भी एक बारी फिर ते राम राम है ना जी।
0: हाँ जी जी दिखा कार्यक्रम मैं खेती बाड़ी है ना
1: जी
0: अहाँ ठहरे किसान कने दिखा अहाँ दादा काम ही ये है कि देखा चलो प्यागा ते लेके संझा तक जड़ा सा किसान अपने खेती दा अपना पशु पालन दा काम सोगी दिखा अहाँ दिया किसान भैन और भी अपने खेतीबाड़ी दे कम्मे करने कोई सिलाई दा काम कताई बुनाई दा काम पे जिस ये बोलते ना राती सुपने च भी किसान ने जड़ा सा खेती नज़र आँदी भी अज ये कम रही जगह कई बार किसान राती सुपने च कि सुपने पे होंगे कि अज मैं फसल कट्टना लग गया अज मैं इतू गया हा खेते इतू तो कुल मिलाई गया हाँ का पेशा ही जड़ा सा खेती है ना।
1: जी
0: हाँ
1: कहने भाई हूँ इस महीने तो हूँ खेती सब्जी जड़ी लगानी है हाँ
0: हाँ
1: तैयारियां जड़ी हैं साढ़े साढ़े किसान
0: आगामी
1: भाई
0: जड़ियाँ अगेतियाँ बिल्कुल
1: जी
0: दिखा भी बरसाती जियाँ इन दिनों दिखा देर ताई जी सब्जी के दाम काफ़ी बरसाती उच्चे हे है ना
1: जी
0: कहना अगर दुए बहाँ गल करिए अहाँ के ग्राम बच्चे सब्जियों की कमी कोई नहीं ही है ना हर कुसी के घर है घीए काकड़ियाँ डानियाँ कोई भिंडियाँ करेले खूब लगे कहना ग्राएं बिच्च खूब इक्की दुए जड़ा सा बंडा करते ये जड़ियाँ महसूस रही अगर कुसी हो तो शहरां च आलें होया कि सब्जियां बड़ियां महंगियां ने कहना दुए बहाँ ग्राएं बिच्च तो देना बंडी बंडी सब्जियां दी ना होई है ना।
1: जी कने
0: हाँ
1: घरे दे न्याणे बोलदे बाहर साहे वो नहीं खाना होने ए नहीं खानी भिंडियां नहीं खानियां तो हम
0: हाँ
1: त्रिये दिन भिंडियां बना दे है
0: हाँ
1: ना
0: जी हाँ
1: ते घरे होनी तक

0: किसान साथियों कार्यक्रम किसान वाणी भेड़ वार्ता दी कड़ी विच जियां कि तुहां जो पता कि हर दिन एक नित नवीं ते नवीं जानकारी आहां तुहां तक पहुंचांदे हन, चाहे ओ आहां दे कृषि विज्ञानिकां द्वारा दित्ती गई जानकारी होवे या फिर आहां दे उन्नत किसान बागवान साथियां सोगी कीती गई गलबात होवे। तां उसी कड़ी विच अज एक उन्नत किसान मेरे सोगी जुड़ा करदे हन, करदे ने इहनां कन्ने गलबात। राम राम जी।
1: राम राम जी।
0: जी तुहां दा नां क्या जी?
1: मेरा नाम सतपाल है जी, उर्फ सत्य।
0: अच्छा जी, कने घर तुहां दे?
1: मेरे घर आर चक्के हैं।
0: अच्छा, ते तहसील भी आर चक्के ही है ना?
1: आर चक्के हैं, डाखरना तहसील।
0: अच्छा, कने ब्लॉक तुहां दा?
1: ब्लॉक रहत।
0: सतपाल जी ता खेती बाड़ी करदे है ना?
1: हाँ जी करदे जी।
0: किन्नी की जमीन है तुहां वाल?
1: मेरे हाथ 3 एकड़ जमीन है।
0: 3 एकड़ जमीन तो बड़ी भारी होंगी, ये सारी खेती करने काबिल है?
1: बंजर भी है कार।
0: अच्छा, 78 वगैरह है ना? तुहां दसी कि 3 एकड़ जमीन है तुहां वाल, ता इस चे अलवेंद कितनी की है?
1: अलवेंद है 17 एकड़।
0: अच्छा, ता क्या क्या बंद है 17 एकड़ विच?
1: अजकल तो छड़ियां कने धान ही नवायो, कने तिल नवायो।
0: तिल वाये सोगी माह वगैरह नहीं बंद है?
1: माह नहीं वाये जी, तिल ही नवाये।
0: अच्छा, बी कुतु ले है तुहां? ये
1: बी प्राइवेट ही इथो दुकान खुली हुई है।
0: अच्छा, हां जी।
1: इना तेल है।
0: अच्छा, हाइब्रिड बीज भाई है ना?
1: हाइब्रिड।
0: कुछ नहीं पता भी है कौन किस्म है बीज दी? कुछ है
1: 100 नंबर।
0: 100 नंबर धान। अच्छा, अकल
1: जेड़ी है देसी भाई।
0: घरे दा हा बीज छलियां दा?
1: घरे दा ही।
0: चिटियां की लाल?
1: चिटियां।
0: ते जी तुहां दस्या कि 100 नंबर तुहां जेड़ा एक किस्म है धान दी सह लगाई होवे, ये पहले भी लगाया कदी 100 नंबर की? पहली बारी?
1: तीसरी बारी लगा दुकान।
0: अच्छा, यानी कि वधिया पैदावार हुंदी तां तुहां जो विश्वास होई है कि 100 नंबर जेड़ा सह ठीक?
1: हां
0: जी। कि आहां सुने भी है कि ये जेड़ा सह घट पानी दी इसकी जरूरत होंदी है 100 नंबर जो?
1: हां जी,
0: जल्दी पकी जांदा है। पनीरी पाई ही पहले धाना दी?
1: पनीरी पाई।
0: अच्छा, ऊर लगांदे भी रहना?
1: ऊर लगा दिता है।
0: अच्छा, तुहां दा जेड़ा इलाका है हार चक्या सारा जी, इस च पानी कि लगांदे तुहां खेतां है?
1: बरखा है पानी पर भी मैं पंप लाया, मोटर लाई हुई है।
0: अच्छा
1: कुछ ले लंदा।
0: अच्छा अच्छा, देखा भाई जिया बरखा भरी ये इलाका पूरा जिया खेती ताइये निर्भर है। देखा बरसात बरखा खूब हो कर दी है ना, कदे ही फसल है धाना दी
1: ठीक ही है।
0: अच्छा, इस ते बाद गल आउंदी है खाद दी, खाद कौन तो हां प्रयोग चलांदे जद खेती करदे ता?
1: खाद साड़ी देसी हो जांदी।
0: अच्छा, घरे दी मैल है ना? देखा भाई देसी खाद कन्ने तैयार कीती गई जेड़ी भी फसल है, जेड़ा भी उत्पादन है ओदी जेड़ी से कोई रीस नहीं है, रंग रूप कने दी जेड़ी एक गल करिए ना पौष्टिकता दी ता भरपूर है ना। बाकी नी यूरिया वगैरह घट ही पांदे है ना?
1: घट पांदे ने जी, देसी हो जांदी का।
0: और इस्ते सोगी जियां सब्जी वगैरह भी लगांदे?
1: सब्जी भी लगांदे जी।
0: क्या क्या सब्जी लगांदे?
1: जियां भिंडियां ने, करेले ने।
0: हां जी।
1: बाकी कंडोलियां वगैरह ने, डानिया ने।
0: हां जी,
1: सब कुछ बांदे जी।
0: अच्छा, ते जियां तुहां दस्सिया कि बेल आलियां सब्जियां जियां लगांदे ते इस ताईयां जियां कुछ तन वगैरह बनाए हुंदे?
1: हां जी, बिना तन्ने होनी जी।
0: कदे फसल है इबे सब्जियां दी बरसाती?
1: इबे तो कमजोर ही है।
0: अच्छा, ये सब्जियां के बीज भी इतो लिए तुहां लोकल ही दुकाना है?
1: ना, हाइब्रिड दे ले।
0: अच्छा अच्छा, हार चक्कियां से मिली जांदे है ना?
1: हां, दुकान खुली
0: है। इब है क्या थोड़ी सब्जी पैदावार थोड़ी घट हो करदी है?
1: हां जी,
0: यानी कि बरखा बड़ी हो दी?
1: बरखा भी ज्यादा हो आईयां का ना, कीट पतंगे खाई जाए।
0: तुहां जो जियां इतो नेड़े कौन दफ्तर पौंदा जियां कृषि ब्लॉक तुहां दा रहत है ना, तो ओ तो नहीं तुहां कदी जियां ओथो जियां हॉर्टिकल्चर आले ने तुहां कदी जियां संपर्क नहीं बनाया जना कन्ने जियां गलबात नहीं कीती जियां सब्जियां कोई जियां फसल कोई बीमारी होवा करती है?
1: गल है जी, दफ्तर बड़ी दूर है ना इथो ते।
0: हां जी,
1: संपर्क करिए भी ता कदी जाइए भी ता पता नहीं तेना अफसर मिलना।
0: हां, दूर ता बड़ी है ना।
1: हां जी,
0: तेना दा फोन नंबर पर भी तोहां जेड़ी से जानकारी ले सकदे हन। अपने खेतां ते तोहां फोन करिए भी ना विभाग आले जी कृषि विज्ञान केंद्र हां दा कांगड़े है, तोहां कांगड़े भी गल कर सकदे ने कि फसल जो ए कीड़ा लगा करदा ए सब्जी च बीमारी है, ता तितु ते भी तोहां जो जेड़ा से पूरी मदद जेड़ी से मिलनी है। सतपाल जी, घर कितने पशु रखे तो? हाँ, डंगरे कितने ने?
1: दो गाय।
0: दोनों दूध दिनी है?
1: दिनी है।
0: किन्ना के दूध होई जंदा?
1: होई जंदा 2-5 किलो डंगे।
0: अच्छा, यानी कि दिने दा होई 10 किलो है ना? तो देखा 10 किलो दूध बड़ा हुंदा, ता क्या करते भी 10 किलो दूध दिया तो बेचींदे?
1: बेचींदे जे कोई मिली आगा तां कहना, नहीं तो फिर घर ही बच्चे रहंदे।
0: अच्छा, जी कोई खोआ पनीर वगैरह छाह छू छोड़ लैंदे होने ना?
1: छाह छोड़ लैंदे जी।
0: अच्छा, तभी कि वो भी बेच लेंदे होने।
1: क्यों होता बेची लेंदे होने अजकल गाह की कोई नहीं।
0: अच्छा देखा भाई, देसी जेड़ा गाय का घी होवे ओदी तो बड़ी बड़ी जड़ी से मांग है। जेड़ा गाय का घी होवे इससे बड़ी बड़ी हां बोलिए ना आयुर्वेदिक बड़ी इससे गुण है ना।
1: गुण तो बड़े जी पर दुकाना सस्ता मिली जा है, पता नहीं कदिया।
0: हां
1: साड़े होंगे महंगे तो है नहीं लोग।
0: अच्छा क्या भाव यानी कि बेच दिया अगर बेचना होगा तो? हां
1: 700-750।
0: देखा भाई बड़ा घट जेड़ा सा रेट है कने अहां दे सुनने आने तकर भी जड़ी से तोहां दी जड़ी से गल पूजी यही है कने। देखा भाई अगर कुसी भी क्यों अगर चाहे होगा तो ये तू हार चक्या एक अहां दे पशु पालक किसान भाई है ना सतपाल हो रहा इना वाल जितना मर्जी तो हां आई के गाय दा एक बढ़िया देसी घ्यो तो हां खरीद सकते हैं ना। जिंगे तो हां दसे खोआ वगैरह भी बनांदे?
1: नहीं खोआ नहीं।
0: पनीर वगैरह?
1: पनीर वगैरह बनाइए भी तो अपना गुजारा बनांदे।
0: हाँ। जी तुम दसिया कि दो गाय रखी 10 लीटर दिन का जेड़ा सा दुध हो जाता था गाय की क्या इन्हों की क्या तुहा सेवा वगैरह क्या करते क्या घा घू खवादे ने दाना दोना क्या दें
1: खेतां दे।
0: हाँ जी
1: जी
0: चरी वगैरह बाजरा
1: बाजरा बाजरा
0: अच्छा
1: वो पाई दे।
0: हाँ जी
1: बाकी गाय फीड
0: अच्छा
1: उस कैल्शियम पाई दे।
0: हाँ जी
1: यही गाय दें।
0: अच्छा जी खल वगैरह नहीं दें?
1: खल मतलब मिक्स करी दें दरड़े च।
0: हाँ जी हाँ जी
1: फीड वगैरह आटा पाईता खल पाईती।
0: हाँ। हाँ, क्योंकि इतना दूध अगर लेना था हांजो भी जड़ा से पशु पहले कुछ ना कुछ जड़ा से खुआना पौना है।
1: हाँ,
0: पाल जी तो हाँ अपनी जमीन च कुछ पौधे वगैरह भी लगाए हो जी फलदार?
1: हाँ जी पौधे लाए।
0: क्या क्या लगाया?
1: अंब अनार नींबू।
0: अच्छा
1: हाँ।
0: यानी कि तकरीबन थोड़े थोड़े बूटे तो हाँ
1: नाशपतियां
0: सारे लगाए हुए ने।
1: हाँ,
0: कई बार जी विभाग द्वारा ऐसी ट्रेनिंग चलती है कोई कैंप चलते खेती की जेड़ी चीज सिखलाई मिलती है तो हाँ कोई ट्रेनिंग वगैरह ऐसी की तजुर्बा जेड़ा पीढ़ी दर पीढ़ी जेड़ा करदे आए है ना
1: उसने
0: किन्नी उम्र होई जी तुहां दी?
1: मेरी होई 79 साल।
0: देखा कना इस उम्र दे इतने तकाजे विच भी जेड़ा सा तुहां इतनी जमीन बाई हो कना इतनी खेती जेड़ा सा करा करदे ने इससे पहले तुहां नी नौकरी वगैरह करते होने ना?
1: हां जी।
0: अच्छा कुछ विभाग च कीती नौकरी?
1: मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट।
0: अच्छा
1: रिटायर्ड टीचर।
0: अच्छा अच्छा देखा भाई बड़ी खुशी हुंदी कि सेवा निवृत्ति दे बाद भी जेड़ा सा अहां दे जेड़े किसान भाई हैं सा करे बिल नहीं बोंदे एक तिना विच एक लगन होना चाहिए एक प्रेरणा होना चाहिए कि जा कुछ तरीके कने जेड़ा सा अपने खेतीबाड़ी दे कम्मे जो अगे बधाई सकन। सतपाल जी अहां दी जेड़ी नौजवान युवा पीढ़ी है ना जिन्हां वाल देखा अपनियां खरियां खुलियां जमीनां भी जेड़ियां सा काफी है ना उस नौजवान युवा पीढ़ी जो तुहां क्या संदेश देना चाहंगे?
1: बच्चियां चाहिदा जी ते जिम्मेदारी इंटरेस्ट लैन।
0: हां जी
1: अजकल तुहानू पता ही है बेरोजगारी ते बड़ी है।
0: जी जी
1: सरकारी नौकरियां इतनी मिलनियां नहीं।
0: हां जी
1: अपनी जिम्मेदारी है जी सा दिलचस्पी लैन तो कोई घाटा नहीं आई।
0: हां जी
1: सा जिम्मेदारी करन तो इस चीज से अपना गुजारा बड़ा अच्छा कर सकते अपने परिवार भी पाली सकते।
0: जी सतपाल जी तुहां अपने खेती बाड़ी दे अनुभव अहां कन्ने सांझा कीते अपना कीमती समय तुहां अहां जो दिता तुहां दा बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो यह तो थे उन्नत किसान इन्हों कने की गई जी से गलबात कने अहाँ चलो एक दूए के खेती के अनुभव अहाँ भी सुनते हैं या अहाँ दिखते हैं तो अहाँ के अंदर भी एक प्रेरणा जी से जागती है कि देखा अगर ये काम काज ये करा करते हैं तो अहाँ भी कुछ योद है जरा सा ऐसा करिए ना
2: जी।
0: कने इसके बाद जरा सा मौसम दे जड़े से अहां जो देरोताई जी दसा करदे हैं कि कुदू कुदू जड़ा सा तापमान जड़ा सा किन्ना किन्ना क्या रहा है ना
2: जी। सारे ते पहले गल करदे हैं ना जिला चंबा दी ता चंबा च जड़ा घट ते घट तापमान रहा सह रहा 17 डिग्री सेल्सियस कने ज्यादा ते ज्यादा रहा 23 डिग्री सेल्सियस कने।
0: हां जी
2: दिन भर जड़ी अज ज्यादातर धुप रही चंबा च कने कल्ले दी गल करन ता ज्यादातर जड़ी है बदल होने दी संभावना जड़ी उस है।
0: हाँ जी
2: कने सुंदरनगर की गल करें तो सुंदरनगर का घटते घट तापमान रहा 21 डिग्री सेल्सियस कने ज्यादा तो ज्यादा 26 डिग्री सेल्सियस कने इत्थू अज दिने बरखा रही।

0: कने कल भी हल्की वर्खा होने की संभावना है। कने कुल्लू का घटते घट तापमान रहा 17 डिग्री सैलसीयस, कने ज़्यादा तो ज़्यादा 21 डिग्री सैलसीयस। कने कुल्लू बिच भी अजे हल्की बारिश रही, कने कल जेड़ा है सै थोड़ी धुप कने थोड़ा बदल होने की संभावना है। कने ऊना की गल करने तो ऊना का घटते घट तापमान रहा 25 डिग्री सैलसीयस, कने ज़्यादा तो ज़्यादा रहा 31 डिग्री सैलसीयस। कने अज ऊने काफ़ी अच्छी धूप थी, कने कल भी खिली धूप होने की संभावना जी है सै है
1: जी।
0: कने इस दे बाद अहां चलते हैं किसान मित्र जी जी कांगड़ा सब्जी मंडी है
1: हाँ जी
0: जितू साढ़े सब्जी कने फलों के जो थोक भान से क्या रहे हैं
1: जी।
0: आलू की गल करें तो आलू का रहा 10 ते 20 रुपये प्रति किलो, प्याज रहा 52 ते 55 रुपये, टमाटर रहे 22 ते 32 रुपये, लहसुन रहे 180 ते 200 रुपये, अदरक 120 ते 130 रुपये, शिमला मिर्च 55 ते 65 रुपये, अरबी 30 ते 32 रुपये, खीरा रहा 25 ते 35 रुपये, मटर रहे 120 ते 130 रुपये, फुलगोभी 40 ते 55, बंद गोभी 30 ते 32 रुपये, बैंगन रहे 20 ते 22, कद्दू रहा 15 ते 18 रुपये, मूली रहे 12 ते 20 रुपये, पालक रहे 35 ते 40 रुपये, हरी मिर्च 40 ते 45, धनिया रहे 140 ते 150 रुपये, कने तोरी रही 20 ते 30 रुपये, भिंडी 25 ते 30 रुपये, घिया जड़ा सै 25 ते 30 रुपये, करेला 15 ते 20 रुपये, फ्रांस बीन 58 ते 60 रुपये, गाजर 25 ते 30 रुपये, मशरूम 180 ते 190 रुपये। कने फलों की गल कर सारे तो पहले सेबा की गल कर सेब रहा 40 ते 180 रुपये, केला रहा 40 ते 50 रुपये प्रति दर्जन, अनार रहा 100 ते 110 रुपये प्रति किलो, अनानास 40 ते 45 रुपये, अमरूद 90 ते 100 रुपये, मौसमी रही 40 ते 50 रुपये, पपीता भी 40 ते 50 रुपये प्रति किलो। कने नींबू की गल कर नींबू रहा 100 ते 120 रुपये, नाशपाती 65 ते 85 रुपये, कने कीवी 35 ते 40 रुपये एक पीस जड़ा सै मिला करता अज दे
1: जी। तो देखा देर ताई जी मंडी भाव जलू अहाँ के किसान साथियों जो पता चलते हैं तो देखा अजकल तो अहाँ का जड़ा किसान है बागवान है सह पूरा जड़ा था जिसी अहाँ बोलते ना अपनी मर्जी कने जितू तेना जो लगा करता कि कुसा मंडी बिच क्या भाव मिला करते हैं वह तुसें अपना उत्पादन भेजने जो जड़ा सह तेना पर कोई भी जड़ी सह रोक टोक नहीं है जितू अहाँ जो ठीक लगा करता तितू जहाँ अपना जड़ा भी अनाज है उत्पादन है उसी भेजी सकते हैं ना
0: जी। कने दिखा इस जानकारी वास्ते जड़े साढ़े मोबाइल है ना
1: तो हाँ।
0: काफ़ी ज़्यादा इस भूमिका रहती है
1: हाँ।
0: दिखा मोबाइल ते हर चीज़ा के दो पहलू होंगे एक खरा होंगे एक बुरा होंगे है ना जी,
1: जी हाँ
0: मोबाइल तो खरे कमे वास्ते इस्तेमाल करें तो फायदा कने जे बुरे कमे वास्ते इस्तेमाल करें तो इसका नुकसान है ना जी
1: हाँ जी।
0: कने तो अगर अपना मतलब कारोबार बधाने वास्ते कर अपनी जानकारी बधाने वास्ते मोबाइल का इस्तेमाल करें तो मोबाइल च बड़ी अच्छी तो एक जगह बैठी के जानकारी जेड़ा से ले सकते हैं ना जी
1: बिल्कुल हाँ जी। तो दिखा भाई इसते बाद अगर हाँ हूँ गल करिए तो देर ताई जी अगली गल ए है कि जड़ा से फ्री ते जड़ा से अहाँ दे किसान साथियों जो जड़ा से हूँ निहाल पै कि कुछ मनोरंजन जड़ा से होना जरूरी है
0: जी
1: तो चलते नहीं एक होर लोग की तरफ है ना
0: जी।

0: जी हाँ सुनिया लोक गीत कन्नै दिक्खा देवताई जी लोक गीत जेह्ड़े बी हैन ना हर एक लोक गीत बिच कोई ना कोई कविता कहानी अहां दे इलाके दी गाथा जेह्ड़ी सा जरूर जुड़ी होवे ना
1: जी
0: कन्नै इन्हां गीतां ते हां जो अपनी मिट्टी दी जेह्ड़ी सा खुशबू भी आउंदी है ना इसी
1: जी
0: कन्नै ही दिक्खा कार्यक्रम दा समय इत्थों ही संपन्न होने जो है तकनीकी सहयोग अहां दित्ता सुरेंद्र कपूर ने कन्नै कार्यक्रम दे प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह हुण हां जो दुनिया दी अनुमति। अच्छा
1: अच्छा जी
0: जी जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद।

अभी आप सुन रहे थे किसान व बागवान भाई बहनों का कार्यक्रम खेतीबाड़ी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:45 होने को है। थोड़ी देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रिले के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: नौ आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार हिमाचल। प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना 2027 का द्वितीय चरण जनसंख्या गणना 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान आपके घर आने वाले प्रगणक आपसे आधिकारिक रूप से प्रकाशित कुल 40 प्रश्न पूछेंगे। आपका हर एक सही उत्तर आने वाले कल की बेहतर नीतियों का आधार बनेगा। अपने घर आए प्रगणकों का सहयोग करें और पूर्णतः सही एवं सटीक जानकारी दर्ज कराएं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में पीपीपी मोड पर रोपवे परियोजनाएं बनाएगी सरकार। विधानसभा के मॉनसून सत्र में अधिकांश सवालों के जवाब न मिलने पर विपक्ष ने जताई नाराजगी। महत्वपूर्ण जानकारियां देने से बचने का सरकार पर लगाया आरोप। भाजपा के विरोध के बावजूद हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक विधानसभा में ध्वनिमत से पारित। और राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों व पेंशनरों ने ओपीएस बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर शिमला में किया प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल में पीपीपी व ईएपी मोड पर रोपवे परियोजनाएं बनाने के लिए सरकार तैयार है और इसमें निजी निवेशकों का स्वागत किया जाएगा। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक संजय अवस्थी के मूल सवाल और विधायक हंसराज, राकेश कालिया, केवल सिंह पठानिया व सुधीर शर्मा के रोपवे संबंधी अनुपूरक सवालों के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोपवे परियोजनाओं की लागत अधिक होने के कारण कई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में परेशानी आ रही है। उन्होंने कहा कि शिमला में रोपवे लगाने के लिए टेंडर के आकलन में इसकी लागत करीब 2700 करोड़ रुपए आई और अधिक लागत के कारण इस परियोजना को रद्द कर दिया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था करने पर विचार कर रही है जिसमें रोपवे के पीपीपी मोड की अवधि 30 से 35 साल तक सीमित की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पास करीब 1200 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है और निजी निवेशकों को शिमला आने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि रोपवे के माध्यम से प्रदेश के उन क्षेत्रों को जोड़ा जाए जहां अभी पहुंच सीमित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दुनिया के कई हिस्सों की तुलना में बड़ा स्नोबाउंड क्षेत्र है और यदि वन संरक्षण अधिनियम यानी एफसीए की मंजूरी के कारण परियोजनाओं में देरी हो रही है तो सरकार इस प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास करेगी। इससे पहले मूल सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्राप्त ऋण और मदद से प्रदेश में कोई रोपवे परियोजना स्वीकृत या निर्माणाधीन नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पीपीपी मोड के तहत 6 रोपवे परियोजनाएं हैं। विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के लिखित जवाब में उद्योग मंत्री ने बताया कि प्रदेश में पिछले 3 वर्षों के दौरान इस वर्ष 1 अगस्त तक खनन विभाग ने अवैध खनन और खनन सामग्री के अवैध परिवहन के कुल 13,082 मामले दर्ज किए हैं। इनमें से 10,152 मामलों में दोषियों से जुर्माने के रूप में 8,79,25,770 रुपये की राशि वसूल की गई। विधायक विनोद सुल्तानपुरी के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि कसौली में जायका प्रोजेक्ट के तहत चल रही 6 सिंचाई योजनाओं के काम में कमी पाए जाने पर जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान सरकार से अधिकांश सवालों के जवाब न मिलने पर विपक्षी भाजपा सदस्यों ने नाराजगी जताई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार महत्वपूर्ण जानकारियां देने से बच रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सवालों के जवाब न मिलने पर विपक्ष के विधायक नाराज दिखे। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा और विपिन परमार द्वारा राज्य चयन आयोग से जुड़े सवाल पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि इस सवाल से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है। इस पर सुधीर शर्मा ने कहा कि ये सवाल पिछले 3 सत्रों से लगाया जा रहा है और हर बार जवाब में यही कहा जाता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। भाजपा विधायक विपिन परमार ने भी इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य चयन आयोग बनने से पहले कई धांधलियां हुई थी। उन्होंने कहा कि इस मामले से जुड़ी सभी प्रकार की सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जानकारी इस साल दिसंबर में होने वाले अगले सत्र या अगले साल मार्च में होने वाले बजट सत्र में उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके बाद भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने मुख्यमंत्री की ओर से पिछले 3 वर्षों में प्रदेश में किए गए शिलान्यास और उद्घाटनों से जुड़ा सवाल उठाया। इस सवाल के जवाब में भी सरकार की ओर से कहा गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार जवाब देने से क्यों कतरा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री की हर गतिविधि और यात्रा का रिकॉर्ड रखा जाता है, इसके बावजूद जानकारी नहीं दी जा रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोई तथ्य या सूचना नहीं छिपाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कई भवनों का निर्माण अभी चल रहा है और सवाल से जुड़ी पूरी जानकारी मार्च 2027 में उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि कांग्रेस सरकार ने जहां पूर्व भाजपा सरकार की तुलना में अधिक नौकरियां दी, वहीं बजट का प्रावधान कर करते हुए अधिक शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस अंतराल के बाद।
2: डायबिटीज यानी मधुमेह या शुगर रोग एक खतरनाक बीमारी है। इसमें बार बार पेशाब आना, थकावट महसूस होना, ज्यादा भूख लगना इत्यादि इसके लक्षण हैं। इसका शुरुआत में ही पता लगाना बहुत जरूरी है।
3: प्रदेश के हर स्वास्थ्य उपकेंद्रों में शुगर की मुफ्त जांच का प्रावधान है, अतः आप तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी शुगर की जाँच करवाएं और अपनी आँखों और गुर्दे की गंभीर बीमारी होने से बचाएं।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बाकी के समाचार। विधानसभा में आज विपक्षी दल भाजपा के विरोध के बावजूद हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विपक्षी दल भाजपा ने इसे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में दखल बताते हुए इसका विरोध किया, जबकि सरकार ने कहा कि संशोधन से भर्ती और वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता के साथ युवाओं को मेरिट आधार पर अवसर मिलेंगे। प्रदेश में 6 विश्वविद्यालय इस संशोधन विधेयक के दायरे में आएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस संशोधन से विश्वविद्यालयों की सरकारी नौकरियों की भर्तियों में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सहायक आचार्य की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी, जबकि सह आचार्य और आचार्य की नियुक्ति विश्वविद्यालय अपने स्तर पर करेगा।
4: ये जो बिल है ये उन पढ़े लिखे युवा साथियों की आवाज़ है जिनकी कोई आवाज़ नहीं। वो मेरिट पर थे, यूनिवर्सिटी में लगना चाहते थे, नेट सेट क्वालिफाई था, पीएचडी कर ली गई थी, मेरिट थ्रू आउट लाइफ मेरिट में रहे और उनको यूनिवर्सिटी में नौकरी करने का जो मौका मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। जो युवा जीवन में मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद उसने कोई सपना देखा होता है और जब उसका सपना इसलिए पूरा नहीं होता, उनके साथ जो अन्याय हो रहा था ये बिल उस अन्याय को दूर करेगा।
0: प्रदेश सरकार द्वारा लॉटरी शुरू करने के फैसले के खिलाफ आज भाजपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत

0: में कहा कि सरकार का ये फैसला प्रदेश की नई पीढ़ी को बर्बाद करेगा और इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर राजस्व के नाम पर नए कर लगा रही है और अब लॉटरी भी शुरू कर दी है।
1: हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुत बेतुका तर्क जो है वो हमारे सामने रखा है कि हिमाचल आर्थिक कठिनाई के दौर में से गुजर रहा है, ऐसे में हमको अपने रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़े। पहले टैक्सेस का दौर शुरू हुआ, लेकिन एक फैसला और बहुत अटपटा फैसला लिया गया, वो फैसला कि हिमाचल प्रदेश में हम लॉटरी शुरू करेंगे और लॉटरी के लिए तर्क ये दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इससे किसी को आदत नहीं पड़ेगी, ये तो भाग्य का खेल। और सब लोग इस बात को लेकर के हैरान है कि मुख्यमंत्री जो तर्क दे रहे हैं, इससे बड़ी मजाक की बात कोई और हो नहीं सकती। नई जनरेशन को बर्बाद करने की दिशा में यह कदम साबित होगा।
0: प्रतिपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि कर्मचारी हितैषी होने का दावा करने वाली सुक्कू सरकार के कर्मचारी और पेंशनर प्रतिदिन धरने पर बैठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की कारगुजारी और नीतियों से हर वर्ग निराश है।
1: सुक्कू जी कह रहे हैं कि हम कर्मचारी हितैषी हैं, हर रोज कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, ओपीएस पर बहुत सारी बातें कही, आज ओपीएस के बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो अभी तक ओपीएस से वंचित है, उनके बारे में क्या फैसला लिया, अभी तक सारी चीज को लेकर के मुख्यमंत्री बताने की स्थिति में नहीं हो पा रहे। कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी, हिमाचल प्रदेश का पूर्व कर्मचारी सड़कों पर है, चौराहे पर है, हर जगह है, नारे लगा रहा है, और ऐसी सूरत में मैं यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार से, मुख्यमंत्री सुक्कू जी के कामकाज से कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है, निराश है, हताश है, रोष है, आक्रोश।
0: राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारी, इंजीनियर और पेंशनरों ने ओपीएस बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज शिमला के चौड़ा मैदान में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर बिजली बोर्ड ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने बोर्ड में 15 मई 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाल कर दी थी, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारी इससे वंचित है। हीरालाल वर्मा ने कहा कि बिजली बोर्ड में खाली पड़े पदों को भरने की भी सरकार से मांग की गई।
2: बिजली बोर्ड का कर्मचारी 3.5 सालों से पुरानी पेंशन से वंचित है। देश के सरकार के जो कर्मचारी उनको पुरानी पेंशन लागू हो गई है, लेकिन बिजली बोर्ड का कर्मचारी को उससे वंचित है। देरी करके कर्मचारियों में बड़ा संशय है और इस करके आज हजार कर्मचारी यहाँ आए। मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से, प्रदेश सरकार और आए यहां, जो पुरानी पेंशन बड़े समय से लंबित है उसकी घोषणा करें। अगर स्वाभाविक है प्रदेश सरकार बिजली बोर्ड में लागू नहीं करेगी तो एक लंबा आंदोलन को लेकर प्रदेश में लड़ा जाएगा। आज आप देख रहे होंगे बिजली बोर्ड में कभी 43,000 कर्मचारी हुआ करते थे, आज आपके कर्मचारी मात्र 13,000 रह गए हैं। तो हम कह सकते कि 1/3 आपके कर्मचारी रह गए, इससे सिस्टम के ढांचे को चलाना मुश्किल हो गया। लगभग 11,600 पद खाली है। तो वो भी आज हमारी मुखिया मांग है कि अगर प्रदेश के ढांचे को सही तरीके से चलाना है, प्रदेश के कंज्यूमर्स को आपने बेहतर सेवाएं देनी है, तो आप और बिजली बोर्ड में भर्ती करनी होगी।
0: मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने जनसंपर्क अभियान के तहत हमीरपुर जिला की नेरी पंचायत के कमलाह गांव का आज दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं व क्षेत्र के विकास को लेकर लोगों से विचार विमर्श किया। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि कमलाह की सिंचाई परियोजना के तहत चैम्बर बनाए जाएंगे और बारिश के कारण क्षतिग्रस्त रास्तों की मरम्मत के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में पीपीपी मोड पर रोप वे परियोजनाएं बनाएगी सरकार। विधानसभा के मॉनसून सत्र में अधिकांश सवालों के जवाब न मिलने पर विपक्ष ने जताई नाराजगी। महत्वपूर्ण जानकारियां देने से बचने का सरकार पर लगाया आरोप। भाजपा के विरोध के बावजूद हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक विधानसभा में ध्वनिमत से पारित। और राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों व पेंशनरों ने ओपीएस बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर शिमला में किया प्रदर्शन। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
4: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
3: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
4: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
3: जानकारी लें, अधिकार जाने।
4: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं देश का अंत।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से विधानसभा समीक्षा।
1: लेखक हैं लुकिंदर बेगटा, ब्यूरो प्रमुख आज समाज शिमला, वाचक स्वर हैं राजकुमारी चंदेल।
2: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज की कार्यवाही शांत माहौल में शुरू हुई और दिन भर सदस्यों ने कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान सदन में रोपवे से लेकर शिक्षकों की कमी तक का मामला गूंजा और युवाओं को रोजगार देने को लेकर भी पक्ष विपक्ष में तीखे तंज चले। सदन में आज हिमाचल प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय संबंधी विधियों में संशोधन को लेकर लाए गए संशोधन विधेयक पर भी लंबी चर्चा हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक भी हुई, लेकिन लंबी चर्चा के बाद इस विधेयक को सदन में ध्वनिमत से पारित किया गया। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक संजय अवस्थी के मूल प्रश्न और विधायक सुधीर शर्मा, केवल सिंह पठानिया, हंसराज, राकेश कालिया और रणधीर शर्मा के प्रतिपूरक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि यदि कोई निवेशक निजी क्षेत्र में पीपीपी मोड पर रोपवे लगाने के लिए आगे आता है तो उसका स्वागत है, लेकिन बायबिलिटी गैप फंडिंग सरकार के मुश्किल है। हालांकि सरकार निजी क्षेत्र में रोपवे लगाने वाले किसी भी व्यक्ति को सरकारी स्तर पर औपचारिकताएं पूरी करने में मदद जरूर करेगी। विधायक डॉक्टर हंसराज के चंबा में खजियार से चंबा चौगान तक प्रस्तावित रोपवे और 84 टेंपल से भरमाणी तक रोपवे के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो रोपवे प्रस्तावित हैं वे प्रस्तावित ही हैं और उन पर आगे कुछ नहीं हुआ है। विधायक राकेश कालिया के प्रतिपूरक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक ने जो सुझाव दिया है वो स्वागत योग्य है, सरकार खुले मंच से सभी निवेशकों का स्वागत करेगी। विधायक केवल सिंह पठानिया के नड्डी जीप लाइन में रोपवे लगाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो योजनाएं फॉरेस्ट क्लियरेंस पर हैं उनमें तेजी लाई जाएगी। सदन में आज स्थगित प्रश्नों का मॉनसून सत्र में जवाब न मिलने पर विपक्ष बिफर गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आखिर सरकार सवालों के जवाब देने से क्यों कतरा रही है। उन्होंने कहा कि विधायकों को सूचना से वंचित रखना भी अपराध है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री के उद्घाटन शिलान्यास के कार्यक्रम का पूरा रिकॉर्ड होता है और इसकी सूचना एकत्र करना महज 5 मिनट का काम है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विधायकों को जब सदन में सूचना नहीं मिलेगी तो वे कहां से सूचना प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार कोई भी सूचना छिपाना नहीं चाहती और शीतकालीन या फिर मार्च में बजट सत्र में सारी जानकारी उपलब्ध करवा देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पूर्व सरकार से अधिक नौकरियां भी दी हैं और शिलान्यास व उद्घाटन भी किए हैं। इस बीच कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने विधायक विनोद सुल्तानपुरी के सवाल के जवाब में कहा कि कसौली विधानसभा क्षेत्र में जायका के तहत कुहलों के निर्माण में बरती गई कोताही की जाँच होगी और विभाग से 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें देखा जाएगा कि इसमें कहां पर निम्न स्तर का काम हुआ है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उधर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधायक बलवीर वर्मा के सवाल के जवाब में कहा कि नई पंचायतों के लिए 50,000 रुपए प्रति पंचायत स्वीकृत किया है। विधायक भी अपने विधायक निधि से 50,000 रुपए की राशि पंचायत घरों में फर्नीचर खरीदने के लिए दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत घरों के निर्माण के लिए कम से कम 10 बिस्वा जमीन विभाग के नाम होना अनिवार्य किया है। इस बीच कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने विधायक विनोद सुल्तानपुरी के सवाल के जवाब में कहा कि कसौली विधानसभा क्षेत्र में जायका के तहत कुहलों के निर्माण में बरती गई कोताही की जांच होगी और विभाग से 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी जाएगी। विधायक बलवीर वर्मा, विक्रम ठाकुर, चंद्रशेखर, सुखराम चौधरी और हरदीप सिंह बाबा ने भी अपने अपने सवाल पूछे। इस बीच सदन में आज शिक्षकों के बगैर व एक शिक्षक के सहारे चल रहे स्कूलों का मुद्दा भी गूंजा। भाजपा विधायक रीना कश्यप ने शून्यकाल के दौरान सदन में अपने चुनाव क्षेत्र पच्छाद में शिक्षकों की कमी के साथ साथ बगैर शिक्षकों के चल रहे स्कूलों का मामला उठाते हुए सरकार से इन हलकों में शिक्षकों की नियुक्ति का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात देश में सर्वाधिक 1:10 है, फिर भी दुर्गम क्षेत्र क्षेत्रों में स्टाफ की कमी है। उन्होंने कहा कि सरकार युक्तिकरण के माध्यम से इन इलाकों में खाली पदों को भरने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अब तक रिकॉर्ड 9000 शिक्षकों के पदों को भरा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में 150 स्कूल बिना शिक्षक के चल रहे हैं और 3500 स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक ही शिक्षक तैनात है। इस बीच मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सिंगल टीचर स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नीति बना रही है। शून्यकाल के दौरान विधायक रणधीर शर्मा, सतपाल सिंह सत्ती, आशीष शर्मा, चंद्रशेखर और केवल सिंह पठानिया ने भी अपने अपने मामले उठाए। उधर सदन में आज 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आए। इस दौरान विधायक चंद्रशेखर द्वारा लाए गए मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के पर्यावरण को बचाए रखने के लिए जल्द ही 1000 नई इलेक्ट्रिक और 200 हाइड्रोजन बसें खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने पहले ही बजट में घोषणा की थी कि राज्य के पर्यावरण को बचाए रखने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देगी। इसी नीति के तहत सरकार इलेक्ट्रिक बसों की खरीद कर रही है और प्रदेश में चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाया जा रहा है। इससे पूर्व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि धर्मपुर बस डिपो की मौजूदा स्थिति का आकलन करने के लिए परिवहन निगम की एक उच्च स्तरीय टीम धर्मपुर भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि धर्मपुर और सरकाघाट बस डिपो में बसों की कमी को दूर करने के लिए दूसरे डिपो से डीजल बसें भेजी जाएंगी। वहीं पवन कुमार काजल के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांगड़ा जिले में नाबार्ड के ग्रामीण आधारभूत ढांचा विकास कोष के तहत सड़क और पुल निर्माण की 45 परियोजनाएं स्वीकृत हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत करीब 302 करोड़ 26 लाख रुपए है। इनमें से 4 कार्य पूरे हो चुके हैं जबकि 38 परियोजनाओं पर निर्माण कार्य जारी है। 3 कार्यों की निविदा प्रक्रिया चल रही है। विधानसभा में आज हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित हो गया। विधेयक के पारित होने के बाद अब हिमाचल प्रदेश के सभी 6 सरकारी विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर अन्य भर्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य चयन आयोग के माध्यम से करवाने का रास्ता साफ हो गया है। अलबत्ता एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती विश्वविद्यालय ही करेंगे। विधेयक के पारित होने के बाद सभी 6 विश्वविद्यालयों की वित्त कमेटी के अध्यक्ष राज्य सरकार के वित्त सचिव होंगे। कार्यकारी परिषद को वित्तीय मामलों में वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिशों को मानना होगा। सदन में लंबी चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने विधेयक को पारण के लिए सदन में प्रस्तुत किया। इस मौके पर चर्चा का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को सोचना चाहिए कि विधानसभा व उच्च न्यायालय में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती भी राज्य चयन आयोग या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से करवाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार निजी विश्वविद्यालयों की परीक्षा भी एक

0: बिल को पारित होने के बाद यूजीसी से मिलने वाली अनुदान राशि का क्या होगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का ये बिल कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाएगा। इससे पहले भी सरकार के कई बिल अदालत से निरस्त हो चुके हैं। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे एक दो बिल अदालत से निरस्त हुए हैं, आधे बिल राज्यपाल के पास हैं, लेकिन पूर्व सरकार के वक्त कितने बिल निरस्त हुए ये भूल रहे हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच पेपर लीक समेत कुछ और मुद्दों पर भी नोकझोंक हुई। इस चर्चा में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, विधायक विपिन सिंह परमार, त्रिलोक जम्वाल, हरीश जनार्था और सुरेश कुमार ने भी हिस्सा लिया। सदन में आज शिमला की सड़कों का उपयोग करने तथा पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए 2007 के कानून में संशोधन को भी ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक भी पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने इन दोनों विधेयकों को अलग अलग सदन में पारित करने के लिए प्रस्तुत किया और सदन ने इन्हें ध्वनिमत से पारित कर दिया। सदन में आज मुख्यमंत्री ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक विशेष वक्तव्य भी दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल पुरुष व महिला भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर आवेदन की अंतिम तिथि आगे बढ़ाई जाती है तो आगामी सर्दियों के कारण भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में दिक्कत आ सकती है और इसमें करीब 6 माह की अतिरिक्त देरी हो सकती है, इसलिए 5 सितम्बर के बाद आवेदन की तारीख बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर राज्य लोक सेवा आयोग के पास 1 सितंबर तक 98,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। इसी के साथ विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।
1: सुन रहे थे, लेखक थे लोकिंदर बेगटा, ब्यूरो प्रमुख आज समाज शिमला, पर थे राजकुमारी चंदेल।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:10 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस।

विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला के संग, और ये रहा कार्यक्रम का अगला नगमा।

जी श्रोताओ, संगीत वो मधुर भाषा जो हर दिल को छू जाती है, कभी आंखों में नमी तो कभी चेहरे पर मुस्कान ले आती है। तो आज के सुरमई सफर को आगे बढ़ाते हैं और संगीत के विविध रूपों के कार्यक्रम में अगला गीत ये रहा।

जोश बरार और साथियों का गाया ये पंजाबी गीत अभी आपने सुना। और अब ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति जिसे गाया है गुरु रंधावा और साथियों ने।

गुरु रंधावा के गाए इसी पंजाबी गीत के साथ विविध संगीत का ये कार्यक्रम सबरस अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 8:30 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

काबुलीवाला। इस फिल्म से ये देशभक्ति गीत अभी आपने सुना। आवाज थी मनडे और साथियों की, सलिल चौधरी का संगीत था और गीतकार प्रेम धवन।

अनजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और 9 बजे News@9 रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1100 से अधिक हुई। लगभग 5000 लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा, अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की मेजबानी करेगा। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंच गया। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1127 हो गई है, जबकि लगभग 4900 लोग अब भी लापता हैं। बचावकर्मी मूसलाधार वर्षा और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने आज संसद में बताया कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु खतरों की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभावों को कम करने की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। श्री शाह ने विनाशकारी बाढ़ के प्रति भारत की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को एफसीएनआरबी जमा, ईसीबी और ओएफसीबी के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की थी। रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित ये सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब एफसीएनआरबी जमा के लिए ये योजना बंद कर दी गई है, जबकि ईसीबी और ओएफसीबी के लिए ये सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने कहा है कि भारत में 7 से 8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बांगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अलनीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में श्री बांगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूत

0: दर्शाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी आंकड़ों पर सवाल उठाने वालों की कड़ी आलोचना की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की जीडीपी वृद्धि ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।
1: जब आप सच्चाई को तोड़ मोड़ करके लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप विश्वासघात कर रहे हैं जनता के साथ। आखिर ये जो 7.8% का पाथ ब्रेकिंग रिकॉर्ड ग्रोथ दुनिया में और कोई देश नहीं दिखा पा रहा है, ऐसा तेजी से आर्थिक प्रगति ये कोई सरकार नहीं कर रही है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं, ये देश के 140 करोड़ भारतवासियों का सामर्थ्य है।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज रात 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर श्री वेवर भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। एक रिपोर्ट।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। उनके भारत डायमंड बोर्स के प्रस्तावित दौरे से द्विपक्षीय संबंधों में हीरा व्यापार के महत्व और इस क्षेत्र में आगे सहयोग की संभावनाओं को बल मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंद का और शिकोहाबाद की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। ट्रस्ट के अंतरिम जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने बताया कि ट्रस्ट के नए सीईओ एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई थी। वे 30 अप्रैल 2026 को रिटायर हुए। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। श्री राम मंदिर में दान की चोरी के आरोपों के बाद सीईओ के चयन के लिए 6 जुलाई को 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। सीईओ के पद के लिए 5,500 से ज्यादा आवेदन मिले थे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए। 2 दिन का यह सम्मेलन प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का पहला सम्मेलन था। इसका उद्देश्य देश की टीम भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को प्रगाढ़ बनाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना है। इस पहल ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने और कार्यान्वयन तथा परिणामों में तेजी लाने के लिए मंच प्रदान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया।

0: नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों की इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिन के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेट कार्ड के आधार पर की जा रही है।
1: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कल तेज वर्षा होगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले दो दिनों में तेज वर्षा की आशंका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बिगड़ रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई है।
2: बिहार में गंगा नदी का पानी भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, पटना, बक्सर, भोजपुर और वैशाली समेत कई जिलों में निचले इलाकों में फैल गया है। भागलपुर जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि जिले में बाढ़ की स्थिति खतरनाक होने के बावजूद नियंत्रण में है। पटना के भद्रघाट, नौजर घाट और महावीर घाट पर गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: झारखंड में H1N1 स्वाइन फ्लू संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 30 दिन में राज्य भर में कुल 36 रोगी मिले हैं। इनमें 18 बच्चे और किशोर शामिल हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: झारखंड में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने और संदिग्ध मरीजों की तत्काल जांच और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रांची के रिम्स और जमशेदपुर के MGM अस्पताल में H1N1 और H3N2 की जाँच की आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। रिम्स के क्रिटिकल केयर विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: बंबई उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का आदेश दिया है। न्यायालय ने 6 वर्ष तक प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायालय की पीठ ने आज कहा कि उचित और ठोस जांच के लिए मामला CBI को सौंपना आवश्यक है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस सत्यापन, खरीदार पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी जानकारी के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग सुविधा दी जा रही थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 141 अंक फिसलकर 23,914 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर के मुकाबले 94.98 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बलजीत कौर और स्काल जेंग रिगजिंग को भू साहसिक अभियानों, रिमो साहा को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने

0: 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। किदंबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ची यू जेन को और तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हुई। लगभग 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. New Delhi sends 5th tranche of emergency material to flood hit Nepal. Death toll rises to over 1200 with over 4000 people still missing. RBI says special US dollar Indian rupee forex swap facility generated over 136 billion US dollar inflows till August 31st. Shri Ram Janmabhoomi Kshetra Trust appoints retired Air Marshal Jitendra Mishra as its first CEO. Belgian Prime Minister Max de Wever to arrive in New Delhi tonight on a 3-day visit to India. Talks on trade, defense, technology, energy and connectivity high on agenda. Heavy to very heavy rainfall likely in East Madhya Pradesh, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Vidarbh and West Uttar Pradesh tomorrow. And India to stage inaugural Women's Champions Trophy in 2027 after Sri Lanka dropped as hosts. India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering the 5th tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the 5th Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation this afternoon. The aircraft carried an 11-member rescue team equipped with specialized tunnel rescue equipment, along with 5.5 tons of essential medicines. The flash floods triggered by the collapse or avalanche of ice and rock near the Nepal-Tibet border devastated towns and villages in northern and central Nepal on the 26th of last month. The Indian Air Force has carried out several sorties to transport essential supplies to affected areas. India has also offered specialized search and rescue support. Indian teams have been involved in operations around hydropower tunnels and in forensic efforts to identify victims amid the high number of casualties and missing people. Meanwhile, Nepal Prime Minister Barendra Shah, while speaking in Parliament today, thanked India for its quick response to the devastating flash floods as rescue teams continue searching for survivors and missing people in some of the worst affected areas. The death toll from devastating flash floods in the Himalayan nation has risen to 1,200, with over 4,000 people still missing as rescuers battled rain and debris. Addressing the House of Representatives, Mr. Shah acknowledged the emergency assistance provided by India and China, including relief supplies, technical support, and rescue personnel. The Prime Minister said the devastation caused by the flash floods stands as a stark warning of escalating climate risks in the Himalayan region and called on the international community to share responsibility for mitigating its impacts. Prime Minister Narendra Modi participated.